हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: देवी दर्शन का एक और बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मासूम, बहुत ही महकते हुए प्रोग्राम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ जो प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं वो हैं शैलजा गांगुली मैम। मैं शैलजा गांगुली मैम का स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शैलजा मैम प्लीज हमारे सभी सुबह सुबह सुनने वालों को, जो भी आज बैठे हैं दिव्य दर्शन को सुनने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, उन्हें थोड़ा बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करती हैं आप, कौन हैं आप मैम?
2: नमस्ते दिव्य दर्शन के सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं क्या क्या नहीं करती है पूछना।
1: That is very interesting। ये अच्छा है, ये अच्छा है।
2: क्योंकि वैसे मैं अगर से आप प्रोफेशनली पूछें तो मैं जर्नलिस्ट रही हूँ, अभी भी लिखती हूँ, आई एम अ राइटर। ऊपर से मैंने विविध भारती के लिए, आकाशवाणी के लिए, दूरदर्शन जब भी पहले मुंबई में पहुंचा था ब्लैक एंड व्हाइट अवतार में, उसके लिए बहुत काम किया। और फिर मैं स्टेज कंपेयरिंग भी करती हूँ सूत्रधारा के हिसाब से, ज्यादातर क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस। और मेरा ये नसीब रहा है कि मैं हमारे देश के, भारत के सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हों, वोकलिस्ट हों, डांसर्स हों, सबके लिए मैंने माइक पकड़ी है और उनको इंट्रोड्यूस किया है उनके लिसनर्स, व्यूअर्स। ये छोटी सी पहचान भी मेरे काम की। वैसे आई एम अ वेरी हैप्पी इंडियन, वेरी हैप्पी टू बी इन्वॉल्व्ड इन अ लॉट ऑफ सोशल प्रोजेक्ट्स दैट माय स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद, जहां पे वुमन एम्पावरमेंट है, एजुकेशन है, एंड pulling people out from below the poverty level, उनके लिए भी हमारे संस्था की तरफ से बहुत ही अच्छे schemes हैं जो कि 100% successful हुए। ये मेरी छोटी सी पहचान।
1: बहुत खूब, amazing। जैसा कि दोस्तों आपने सुना कि शैलजा मैम एक जर्नलिस्ट हैं, वो लिखती भी थी और लिखती भी हैं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया, उनके साथ इंटरैक्ट किया टेलीविजन के ऊपर भी, उस जमाने में जिस वक्त वो सिर्फ श्वेत शाम हुआ करता था। बहुत खूब। और आज जिस वजह से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं मैम, उस बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ एक नॉर्मल रूटीन कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जो कुछ भी अपने जीवन के बारे में समझना चाहता हो, हम बातचीत करें। जो हमने समझा है इसके लिए कोई बहुत ज्यादा कोई गुरु बनने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है। एक साधारण इंसान भी अगर पवित्र हो तो वो ईश्वर के नजदीक होता है। तो गांगुली मैम, सबसे पहली बात हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी, धर्म, अपने आप को पवित्र करना, अपने आप को प्रभु के नजदीक ले जाना, इन सब की बातें बहुत होती हैं, लेकिन हम इनको समझते कितना है, थोड़ा वो बताइए ना, आपकी समझ से बताइए मैम। देखिए, आपने दुनिया देखी है और आप अभी भी लगातार बिजी हैं, लगातार प्रोडक्टिव कामों में लगे हुए हैं, तो कुछ तो समझा है आपने, ऐसी बात तो नहीं है। तो अध्यात्म आपकी निगाहों में क्या चीज है?
2: मेरे हिसाब से जो भी काम हो, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, जिस काम को हम लगन से, दिल से, मेहनत से

0: एक समय था जब मैं चेंबूर में रहा करती थी और वहां गोवंडी स्टेशन एक था छोटा सा, और वहां से मुझे ट्रेन पकड़कर बीटी जाना पड़ता था क्योंकि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती थी। तभी वहां पे लेडीज का फर्स्ट क्लास जो आता था उसके सामने एक मोची बैठा करता था, ठीक है,
1: कॉबलर, कॉबलर,
0: हाँ जी, कॉबलर, कॉबलर,
1: राइट।
0: और मैं सच बताऊं, जब भी जल्दी पहुंचती ना, मेरी निगाह उससे हटती नहीं थी, इसलिए कि वो उसकी नजर हर एक के पैरों की तरफ ही रहती थी, कभी उसने ऊपर ताक के मेरी तरफ देखा नहीं है। मैं बहुतों दिन उनके पास खड़ी होकर उनको देखा करती थी, और जिस लगन से, जिस आई वुड से पैशन, यू नो, जैसे एक स्कल्प्टर होता है, एक आर्टिस्ट होता है, उस तरह से वो हर जूती को पॉलिश कर रहे हो या तो फिर उसमें कोई सिलाई कर रहे हो, इतने प्रेम से वो करते थे ना, मेरे ख्याल से उनके लिए वही श्रद्धा थी, वही पूजा थी, और उनसे मैंने बहुत सीखा। ऐसी बात है कि द मेन थिंग इज एज अ जर्नलिस्ट, एज अ राइटर, आपकी निगाह हर तरफ होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू ऑब्जर्व द स्पिरिचुअल इन द रियल, इन द नॉर्मल। स्पिरिचुअल एक कुछ अलग, समथिंग स्पेक्टेक्युलर, समथिंग डिफरेंट नहीं है। अपनी जिंदगी को ढंग से जीना इज द बिगेस्ट स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू मी। एक्सेप्टिंग वेयर यू आर, गिविंग इट योर बेस्ट, एंड नॉट लूजिंग फेथ एंड होप दैट टुमारो विल बी बिगर, ब्राइटर, बेटर।
1: राइट, ब्यूटिफुल। दोस्तों, आपने गौर किया किस तरीके से गांगुली मैम ने एक एग्जाम्पल लेके, कॉबलर का, एक मोची का एग्जाम्पल लेके हमें समझाया है अध्यात्म क्या होता है। इससे ज्यादा रिलेटेबल, इससे ज्यादा समझा के बताने की भाषा शायद मुश्किल से मिलेगी। बहुत खूब गांगुली मैम, बहुत बहुत आभार है आपका। चलिए, इस बारे में जब तक हमारे मित्र, हमारे दोस्त सुनने वाले विचार करें कि क्या कहा आपने, क्या उनकी भी जिंदगी में कुछ इस तरीके के व्यक्ति दिखाई दिए थे, तब तक हम एक प्यारा सा भजन सुनते हैं और फिर हम वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर भजन। और गांगुली मैम, आगे बढ़कर पूछना चाहूंगा, ये बात आध्यात्म की हो गई, धर्म क्या होता है आपकी निगाह में, हमें समझाइए।
1: देखिए, धर्म जो चीज है इज पार्ट ऑफ योर वैल्यू सिस्टम, इन द सेंस कि आप बचपन में माँ बाप से या तो घर में रहने वाले बुजुर्गों से जो सीख लेकर आगे बढ़ते हो, इसी छोटे छोटे नियम में धर्म छुपा रहता है। जैसे कि हम जब छोटे थे, नियम ये था कि आप घर आओ तो पहले हाथ पैर धो लो, उसके बाद भगवान के वहां दिया जला हुआ रहता था, वहां खड़े होकर छोटी सी प्रार्थना जो भी है वो करो। और हमेशा मुझे ये बात अच्छी लगी कि उस प्रार्थना में सिर्फ स्वार्थ नहीं था, मतलब दो तीन श्लोक हम बोला करते थे। एक तो शाम का आगमन हुआ है तो शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिर नमोस्तुते। शत्रु बुद्धि विनाशाय, मेरे अंदर जो भी किसी के प्रति कटु भाव हो, दुश्मनी हो, उसका विनाश करने के लिए मेरे घर में दीप जलता है। अब देखिए, छोटी सी प्रार्थना है लेकिन उसमें कितनी बड़ी समझ छिपी हुई है। उसी तरह से हमेशा सबके कल्याण के लिए एक श्लोक हम छोटे से बचपन से ही बोलते आए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। सब अच्छा ही देखें, सब विपद से बीमारी से मुक्त हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किसी को कोई किसी प्रकार का दुख ना आए। इस तरह से जब हम जुड़ते हैं धर्म से, मतलब के समाज में जितने लोग हैं अच्छे बुरे सब रहते हैं, लेकिन हर एक की तरफ हमारी नजर में कटुता न हो, दुश्मनी न, हम उन्हें समझने की कोशिश करें। जैसे कि जर्नलिज्म में द फर्स्ट थिंग वी हैड टू लर्न ऑन जॉब वाज टू बी एबल टू वॉक अक्रॉस द फ्लोर, स्टैंड इन द अदर पर्सन शूज एंड सी द वर्ल्ड फ्रॉम हिज और हर पर्सपेक्टिव। अब एक भूखा बच्चा मिठाई के दुकान से मिठाई लेकर क्यों भागता है? भूख अगर आपने महसूस नहीं की हो, आप समझ भी नहीं पाओगे, है ना? ठीक उसी तरह से हर चीज को समझ के फिर आगे बढ़ना। मेरे ख्याल से संसारी रूप में धर्म वही है। देयर आर ऑफ कोर्स धर्म के मोर यू नो आई वुड से ऑर्गेनाइज्ड धर्म जो है, मतलब जो कि नित्य नेम होते हैं सुप्रभात से लेकर मंगल गीत तक हर मंदिर में हर मठ में, या तो घर में पूजा हवन होता है, वो एक अलग प्रकार की चीज है। लेकिन इवन इन दैट, जैसे एक पूजा जो है उसमें अगर आप ठीक तरह से देखो तो 16 उपचार होते हैं, 16 उपचार मिलाकर पूजा बनती है, एक पूजा का रिचुअल जिसको बोलते हैं। लेकिन हर रिचुअल में, हर उसमें, उसके हर प्रोसीजर में धर्म छिपा हुआ है। किस तरह से, मतलब के बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं समझाने के लिए। जैसे कि आप जो दीप जलाते हो भगवान के सामने, उसमें तेल वैराग्य का हो, उसमें जो ज्योत जलती है वो श्रद्धा की हो, यू नो। इस तरह से मेरे हिसाब से आई ट्राई टू ब्रेक डाउन धर्म फ्रॉम द कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स इनटू प्रिंसिपल्स विच इम्प्रूव अवर वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ एंड लिविंग इट टू अवर बेस्ट। मेरे लिए यही धर्म है।
0: वाओ, बहुत खूब, थैंक यू सो मच गांगुली मैम। सिंपल भाषा में साधारणतया समझने वाली चीज शैलजा मैम ने हमें समझाई है, आध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, एक नया पर्सपेक्टिव। एक नया तरीका देखने का। और ये सब क्यों? अब इसी बारे में गांगुली मैम आगे बढ़ते हुए मैं एक सवाल मेरे दिमाग में कौंध रहा है, आई जस्ट कम बैक टू यू। पर एक छोटा सा भजन आत्म की शुद्धि के लिए, आपकी बातों को अपने दिमाग में निसार करने के लिए थोड़ा सा रुकते हैं और एक भजन सुनकर वापस आए।
1: जी बिल्कुल।

0: जी, बहुत बहुत प्यारा सा भजन और बहुत सीधी सीधी सी बातें। चल जा मैम, जो दिमाग में मेरे सवाल उठा था वो ये कि ये आध्यात्म हो गया, ये धर्म हो गया, और आपने एग्जाम्पल देकर हमें इस चीज को समझाया भी, फिर भी बहुत, क्योंकि ये बड़ा गूढ़ सब्जेक्ट है, ये इतना आराम से हमारे अस्तित्व में उतर जाने वाली चीज नहीं है, तो इसको एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आध्यात्म और धर्म भला हम इंसानों को क्यों चाहिए? व्हाई डू वी नीड दिस? क्या जरूरत क्या है इसकी? चल तो रही है जिंदगी, बच्चे थे, बड़े हो गए, मर गए, ओवर एंड आउट, लेकिन क्यों ये आध्यात्म, ये धर्म, क्या करें हम इनका मैम?
1: देखिए, पूरे दिन सुबह से लेकर रात को आंखें सोने के लिए जब बंद होती हैं, तब तक अगर हम दुनियादारी में ही फंसे रहें, तो फिर हमारे अंदर हर तरह की कुबुद्धि, जिसको बोलते हैं ईर्ष्या, जो है या तो और पाने के लिए बहुत बहुत चाहत है, या तो जो हमें नहीं मिलना चाहिए हमारे बाउंड्री के बाहर हो उसके लिए भी एक ग्रीड है, ऑल द षड रिपु जिसको बोलते हैं, यू नो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब हमें गिरकर पकड़ के लेते हैं। लेकिन अगर इसके बीच थोड़ा सा समय हम एक ऐसी एक्टिविटी के लिए, एक ऐसे काम के लिए रखें जहां पर हम हमारे स्वार्थ को, हमारी जरूरतों को नहीं आने देते हों, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारी परंपरा में, सनातन धर्म में चांटिंग जो है, इसी इष्ट देवता, जो देवता आपको पसंद है, गणपति है, कृष्ण है, राम है, जो भी है, उनके नाम का स्मरण करना, या तो फिर किसी तीर्थ क्षेत्र में जाना, क्षेत्र की अपनी महिमा होती है, वहां जाकर इंसान ज्यादातर अपनी वो छोटी छोटी जो मैं कहूँ ऑल द जंबल्स एंड मंबल्स दैट मेक अप द आई वुड से प्रॉब्लम्स ऑफ बीइंग स्टक इन सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी, वो सब मिट जाते हैं, यू बिकम वन विद द स्पिरिट ऑफ द प्लेस, वहां की जो शांति है, वहां की जो पूरी पवित्रता है, मंगलता है, उसमें खो जाने से मन को एक अनोखी शांति मिलती है, एक अनोखा सुकून मिलता है, जो कि जाति जिंदगी में कोई चीज बहुत बहुत चाहकर मिल जाने पर मिलता होगा, या बच्चे के अच्छे रिजल्ट्स पाने पर मिलता होगा, छोटी मोटी चीजों में मिलता है, लेकिन ये जो रहता है, ये जो शांति रहती है, वी कैन नॉट पिन इट टू एनी कॉज, इट इज द एटमॉस्फियर दैट ब्रिंग्स यू दैट पीस विच यू डिजर्व, क्योंकि हर महात्मा ने यही कहा है कि आप वो नहीं हो जो आप अपने आप को समझते हो, यू आर नॉट दैट लिमिटेड पर्सन, यू आर अनलिमिटेड सत चित आनंद, यही आपका असली स्वरूप है, हमेशा खुश रहना, हमेशा इन द मोमेंट रहना, और हमेशा उस चेतना को लेकर रहना कि हम में और आप में कोई अंतर है ही नहीं, क्योंकि आप भी और हम भी उसी दिव्य शक्ति का एक छोटा सा पुतला है, मैनिफेस्टेशन है। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम एक्टिविटी जो आपके मन को एक तरह की लॉन्डरिंग करती है, जैसे कि हम मंदिर जाते हैं तो बाहर हमारे स्लिपर्स शूज रखते हैं, उससे ही एक तरह से देयर इज अ फिजिकल गिविंग अप ऑफ द डर्ट व्हिच अदरवाइज कोट्स अवर फुटवेयर, उसी तरह से अंदर जाते हैं, वहां खो जाते हैं उस पूजा पाठ में, उस इंसेंस, द ब्यूटिफुल मूर्तिज, द मार्बल, द प्रसाद, All that creates a certain quiet in you, एक स्थिरता, एक शांति. All these things are very important for us to get back our poise, our composure. क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं होता, तब तक हमारी सोच स्थिर नहीं होगी, सही नहीं होगी. ये मेरा मानना है। इसीलिए ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। और एक इन अ स्मॉलर वे घर में भी आपको जो अच्छा लगे, विच एवर गॉड यू लाइक, ऐसा नहीं है कि सनातन धर्मी होना चाहिए। मैंने अभी अभी जीवनी लिखी है हरिओम शरण महर्षि, भजन महर्षि कहा करते थे उनको, आप यूट्यूब पर देखिएगा, उनके हजारों भजन मिलेंगे विद मिलियन मिलियन व्यूज। तो उनका एक बहुत सुंदर भजन है जिसके बोल ऐसे हैं कि तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यसु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। नाम कोई भी हो, आपकी पूजा पाठ की जगह कोई भी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, जो भी हो, श्रद्धा भक्ति एक है। There is no difference. अब किसी को एक्सीडेंट के बाद एक रेयर ब्लड ग्रुप की जरूरत हो तो वो उसके जो रिलेटिव्स हैं वो नहीं देखेंगे कि ये हिंदू का है या मुसलमान का है या क्रिश्चियन का है।
0: Right.
1: वो देखेंगे ब्लड ग्रुप सही है क्या नहीं। इस तरह से अल्टीमेटली इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट कंपोजर फॉर सम टाइम इन द डे, और उसके लिए इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव अ सर्टन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रैक्टिस, जो मेडिटेशन हो, पूजा हो, पाठ हो, चांटिंग हो, जो भी हो, इट हैज टू बी पार्ट ऑफ द डे सो दैट यू डोंट गेट पोल्यूटेड ओनली बाय योर मटेरियल नीड्स।
0: राइट, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा गहराई में बहुत ज्यादा डूबने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। साफ साफ दिखाई देता है, धुंध छट जाती है, फॉग हट जाता है, क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू सो मच। चलिए मैम, आगे बढ़ते हुए एक प्यारा से भजन का आनंद उठाएं, थोड़ा सा मेडिटेट करें और वापस आएं।
1: जी जी

0: बहुत सुंदर, बात आध्यात्म की हो गई, बात धर्म की हो गई और बात हमारी जरूरत की हो गई। व्हाई नॉट, धर्म और आध्यात्म हमारे लिए क्यों है, क्यों नहीं है। अब एक और इसी से जुड़ी हुई श्रृंखला है जिसके बारे में समझ लेते हैं, जब हम आध्यात्म की प्रैक्टिस करने बैठते हैं। अब चलिए, आध्यात्म किसी किताब में कहीं लिखा हुआ कोई चैप्टर नहीं है, धर्म भी किसी किताब में कोई चैप्टर नहीं है, एक बड़ी चीज है, इट्स मच मच बिगर देन ऑल ऑफ अस। लेकिन इसको कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, क्या करें, मतलब जी चलो, मैं मेरे को लगा शैलजा मैम ने आज समझाया, और जी मैं आध्यात्मिक होना चाहता हूं आज से, और धर्म भी, धर्म का पालन भी करूंगा। वेरी नाइस। सो अब मैं तो बड़ा समझदार हूं ना, तो शर्म आती है शैलजा मैम से पूछने में। तो मैंने अपने मन में डिसाइड किया कि मैं कुछ करता हूं। कुछ करने में सबसे सिंपल तरीका है, प्रार्थना करने बैठ गया और ध्यान लगा लिया। तो मैम जरा प्रार्थना को और ध्यान को भी समझाइए। अब सच्चाई यह है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट शुड आई डू, क्या करूं, कैसे लगाऊं ध्यान और प्रार्थना।
1: देखिए, सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक ऐसा वक्त निकालें, चाहे हम 10 मिनट से शुरू करें, लेकिन ऐसा वक्त निकालें जब हमारे ऊपर बाहर की चीजों का, बाहर के लोगों का कोई दबाव ना हो। आई एम नॉट गोइंग टू बी इंटरप्टेड, ये सबसे पहला रूल मेरे हिसाब से। इफ यू वॉन्ट टू एंटर इन टू योर ओन इनर वर्ल्ड, ओके, तो सबसे पहले आई विल डिसाइड कि हाँ, मेरी दिनचर्या में सुबह सबके आगे, अगर हम औरों के साथ रहते हो तो सबसे आगे मैं आधा घंटा आगे उठ के थोड़ा साफ सफाई कर ले, और चाय पीनी है तो एक कप चाय भी पी लीजिए, और फिर 10-15 मिनट यू आर नॉट गोइंग टू बी इंटरप्टेड, ऐसा पहले समय का एक स्लाइस, मैं कहूंगी एक छोटी सी यू नो क्वांटिटी आप अपने लिए संभाल के निकाल लें, और धीरे धीरे सबको समझ आएगी कि अगर कोई और उठे भी कि दिस टाइम इज नॉट फॉर डिस्टर्बिंग दिस पर्सन, यू कैन नॉट इंटरप्ट, यू कैन नॉट ट्रेसपास। तो पहले समय निकाल लिया, फिर मुझे बैठना कहाँ है, ये जगह भी आप खुद ठीक करें, इट कैन बी अ कॉर्नर ऑफ योर रूम, पर उस जगह को आप साफ रखना अपनी जिम्मेदारी समझें। वहां पे आप जिस देवता का, मतलब रूप आपको अच्छा लगे, उसी को इष्ट देवता कहते हैं, जिसका रूप जिसका नाम आपके मन को भाता है उसी को इष्ट देवता कहते हैं। तो आपके इष्ट देवता जो भी हो, उनकी एक तस्वीर या मूर्ति वहां पर रखें, एक थोड़ा अगरबत्ती या तो इंसेंस, धूप जिसको बोलते हैं
0: जी,
1: उसको जलाने के लिए व्यवस्था करें, जब भी हो सके थोड़े फूल लाकर वहां रखें। इस तरह से आप एक अपने लिए छोटा सा, उसको आप अपना मंदिर ही समझ लें, एक्सक्लूसिव जगह, जहां पर जिसके पास जाते जाते ही आप देखेंगे कि आपके मन की अवस्था बदल जाएगी, क्योंकि आप उस तरफ जा रहे हो जहां आपके इष्ट देवता है, आप अपने ही देवता के निकट जा रहे हो, तो आपको लगने लगेगा उस टाइम पर, उन 15 मिनटों में, कि बाकी सब जो भी चीजें हैं वो दुनियादारी के हैं, वो आई विल मैनेज, पहले मैं यहां से शक्ति बटोर लूं। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात, आजकल तो यूट्यूब के जरिए, गूगल जी के जरिए जितने श्लोक, छोटी बड़ी प्रार्थनाएं आपको मिल जाएंगी, आपके अपने इष्ट देवता के जो भी आपको या तो याद होगा, या तो किसी पंडित जी से, या तो फिर अपने ही बुजुर्गों से, या तो फिर मंदिर से, या तो फिर गूगल से, यूट्यूब से, आपको मिल ही जाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, एक प्रार्थना सबके कल्याण के लिए हो, इससे क्या होता है, मन थोड़ा खुल जाता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, स्पिरिचुअल होने का जो आप पूछ रहे थे कि मुझे कुछ करना है, सभी महात्माओं ने कहा है कि स्पिरिचुअल होने के तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक हुआ सुमिरन, जो मैंने जिसका मैंने तरीका आपको बताया कि उन पंद्रह मिनटों में मैं सुमिरन करूं, धीरे धीरे उन प्रार्थनाओं को मैं समझूं, धीरे धीरे उनका पाठ मैं अपने आप बिना पुस्तक की ओर देखे कर पाऊं, धीरे धीरे मेरी उस तरफ श्रद्धा, उस तरफ लगन बढ़ने लगेगी ऑटोमेटिकली। लेकिन इसके लिए द डिसिप्लिन ऑफ रेगुलरिटी, एंड बिकॉज इट इज योर ओन, सो ओनली यू कैन गिव इट दैट इम्पोर्टेंस। कोई और आपको नहीं बोलने वाला, अरे 5:30 बज गए, आप अभी तक यहाँ पर हो, अपने मंदिर पर नहीं गए, इस तरफ कोई नहीं पूछने वाला। ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपने निर्णय लिया है कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग। तो ये हुई, सो सुमिरन एक हुआ, साधना उसके बाद में आती है, क्योंकि ये मेडिटेशन, द वर्ड हैज बीन टोटली अब्यूज्ड एंड ओवरयूज्ड, इतना आसान नहीं है। मेडिटेशन करना इज टू मेक योर माइंड फ्री ऑफ ऑल थॉट्स। आप एक एक्सपेरिमेंट हिसाब से, आप कहीं सफर कर रहे हो, आंख बंद करके देखिए फॉर हाउ लॉन्ग योर माइंड रिमेन्स लाइक अ ब्लैंक बोर्ड, नॉट इवन अ माइक्रोसेकेंड। अरे वो करना भूल गए, अरे इसको फोन करना था, उसकी चिट्ठी आनी थी, उसको मेल भेजना, ये सब एक के बाद एक आते रहेंगे। सो फर्स्ट वो स्थिरता, एक जगह जाके 15 मिनट विदाउट मूविंग बैठना, वहां के वो नियमित रिचुअल्स छोटे छोटे अपने आप बनाए हुए करना, वो प्रार्थना करना, और फिर वहां बैठ के अपने ही देवता से कहना कि अभी मुझे जरा स्थिर होकर आपके ही विचार में खोने की क्षमता दो
0: जी।
1: तब जाकर शायद एक मिनट के लिए ऐसा होगा कि आप और कुछ नहीं सोच रहे हो, और एक तरह से फिजिकली, जैसे टीचर डस्टर लेकर ब्लैक बोर्ड साफ किया करते थे, उस तरह से आपको सोचना है कि मेरा मन एक ब्लैक बोर्ड है, जो विचार यहाँ पे जगह उनकी नहीं है, अगर आते हैं तो मैं उनको इमेजिनरी विजुअल, यू विजुअलाइजेशन इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग टू मेडिटेट, तो विजुअलाइजेशन करके मैं हाथ में एक डस्टर लेके उस विचार को निकाल देता हूँ दरवाजे के बाहर, आप वहां रुको, मैं जब बाहर आऊंगा या आऊंगी तब आई विल डील विथ यू। इस तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, और तीसरा सुमिरन हुआ, साधना या मेडिटेशन कम्स लेटर, सुमिरन से शुरुआत, और वेरी इंपॉर्टेंट इज सेवा। सो द 3 S's, यू नो, सेवा, सुमिरन, साधना। सेवा मतलब क्या, आप कहीं भी किसी भी संस्था से, इट कैन बी एन ऑर्फनेज, इट कैन बी एन ओल्ड एज होम, इट कैन बी अ पीडियाट्रिक वार्ड ऑफ कैंसर चिल्ड्रन एफ्लिक्टेड विद कैंसर, कहीं भी आप वॉलंटियरिंग करना शुरू करो, महीने में एक बार करो, लेकिन शुरू करो कि एक घंटा आप ऐसे लोगों को दे रहे हो जिनकी बेबसी आपसे कई गुण ज्यादा है। एक बार वो करने लगो तो धीरे धीरे आपको ही लगेगा कि मेरे प्रॉब्लम इतने बड़े तो नहीं है, दुनिया में कितना कष्ट है, कितना दुख है। दिस सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने गुरुद्वारा में तो देखा ही होगा
0: जी हाँ, जी
1: किस तरह से लोग करते हैं, और हमारे हमारे बहुत सारे मठों में भी चप्पल स्टैंड मैनेज करना, फॉर एग्जांपल, दूसरों के जूते एक सही जगह पर रखना, उनको वापस, इसमें जो अंदर से एक तरह की ह्यूमिलिटी आती है ना, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि टूडे with fewer children, more money in hand, the ego has a free walk, you know, और उससे क्या होता है, अध्यात्म में इंटरेस्ट या तो होता ही नहीं, और जो भी रहता है छोटे बचपन में सीखा हुआ वो सब हट जाता है, that is not going to help you, क्योंकि एक प्रमोशन नहीं मिला, एक जगह से नौकरी से आप ले ऑफ हो गए, आपको लगेगा मैं छत से कूदूं. सुइसाइड्स आर रिजल्ट ऑफ दीज थिंग्स, द डेस्परेशन दैट कम्स वेर यू फील यू डोंट बिलोंग एनीवेयर. लेकिन अगर आप अध्यात्म से जुड़े रहते हो, आपको पता है कि जो भी हो अच्छे के लिए हो रहा है, इसके आगे सकारात्मक मैं क्या सोचूं, तब जाकर आपको उसके भीतर से निकलने की राह मिलेगी. सो सेवा, साधना, सुमिरन, इस इन तीनों को अपनी जिंदगी में जगह देने पर यू कैन मूव अहेड इन योर डिसीशन टू मैं कुछ करना चाहता हूं.
0: राइट मैम, बहुत ही प्यारे ढंग से सरल भाषा में डिटेल में एक्सप्लेनेशन शैलजा मैम ने हमें दिया है. दोस्तों विचार कीजिए, मनन कीजिए, बैठ जाइए, थोड़ी देर अपने आप को स्थिर कीजिए. जैसा उन्होंने कहा ना, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके उस एरिया में जाइए जहां पर पहुंचकर आपको लगे कि आप उनके पास पहुंच गए. विचार कीजिए, तब तक हम पेश करते हैं ये प्यारा सा भजन और फिर हम वापस आते हैं.

0: बहुत सुंदर। शैलजा मैम, ये बातें बहुत क्लियर हो गई अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, और क्या करना चाहिए, क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, उनके बारे में भी बहुत क्लियर हो गया। अगर अब आज की बात हो रही है और मेरे को ऐसा लगता है कि हमें सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इन सारी बातों को हम आज की जनरेशन के साथ कनेक्ट करें, वरना ये सब हम मतलब बड़े बूढ़ों की बात होकर रह जाएगी क्या? लेकिन ये तो पूरे संसार की बात है। तो मैम, इसको मॉडर्नाइज्ड तरीके से ढाल के, उस लैंग्वेज में बता के आज की यंग जनरेशन के लिए एक संदेश दीजिए कि क्या धर्म, क्या अध्यात्म, क्या मेडिटेशन, क्या प्रैक्टिसेस उनको देंगी, जिससे कि वो उनकी जिंदगी बहुत बहुत खूबसूरत, क्योंकि वो लोग बेनिफिट में इंटरेस्टेड है ना, तो उनको उनका बेनिफिट दे दीजिए मैम, जिससे कि उनको लगे ऑल राइट, चल जाए, मैम ने कहा कि ये चीज हमको बेनिफिट करने वाली है, तो लेट्स डू इट। तो बस चलते चलते हमारे प्रोग्राम का जो तात्पर्य है, जो पर्पस है, वो यही है कि लोगों तक बात पहुंच जाए। तो बस मैम, यंग जनरेशन तक बात पहुंचा दीजिए।
1: मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं दक्षिण के श्री चित्रापुर मठ से जुड़ी हुई हूँ।
0: ऑल राइट।
1: और हाँ, उसकी 350 साल की गुरु परंपरा रही है।
0: ओ बाप।
1: और अब हाँ जी, अभी जो एकादश गुरु उनके हमारे मठ के हैं, वो जीवित हैं। और उन्होंने क्या किया है, ही बिलीव्स इन बॉडी माइंड स्पिरिट सिंक्रोनाइजेशन, यानी के दे से ना कि अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। तो सबसे पहले हमें हमारे युवा लोगों को, जो कि मतलब अनफॉर्चुनेटली जंक फूड, कोलाज, इन सब के आदि हो चुके हैं बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंस, उनको सबसे पहले दे हैव टू बिकम मोर केयरफुल अबाउट फिजिकल फिटनेस। इट इज ओनली व्हेन यू आर फिजिकली फिट दैट योर माइंड विल बी मोर अलर्ट एंड अवेक एंड विलिंग टू लर्न समथिंग न्यू। ये दिस इज समथिंग, इसके लिए हमारे मठ में इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ यंग पीपल 16 ऑनवर्ड्स, दिस ग्रुप इज कॉल्ड युवाधारा। युवाधारा के लिए अध्यात्म तो लाइक आई सेड कम्स इन

0: ग्रेजुअली उनके लिए उनकी पसंदीदा जो चीजें हैं, मतलब कि देर आर इंस्ट्रक्टर्स हु कम एंड टीच देम फिजिकल फिटनेस, हाउ टू फाइट अनप्लेजेंट, मतलब कि रेगुलर प्रोफेशनल मेथड्स, वर्ल्ड चैंपियंस को बुलाया जाता है इन बच्चों को सिखाने को, हाउ टू लर्न टू रिपेल एनी फॉर्म ऑफ अनप्लेजेंट फिजिकल अटैक, हाउ टू फिजिकली डू ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कनोइंग, ऑल द एक्टिविटीज दैट ब्रिंग अबाउट अ सी व्हेन यू आर फिजिकली फिट योर माइंड एंड स्पिरिट फील लाइटर. तो वी हैव गैजेट्स, वी हैव रिबाउंडर्स, वी हैव जिम बॉल्स इन एवरी ब्रांच ऑफ अवर मठ.
1: वाह
0: बिकॉज हाँ, स्वामी जी इज वेरी पर्टिकुलर कि आप मंदिर में नहीं जुड़े हो तो वहां जाके आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, यू नो.
1: वाह
0: हाँ, बिकॉज इट मेक्स यू फील गुड. यू विल सी, यू नो, एल्डरली वेमेन ऑल्सो इन सलवार कमीज डांसिंग ऑन द रिबाउंडर्स, यू
1: वाह
0: अंडरस्टैंड. हाँ, तो ये तो युवा के लिए पर्टिकुलरली ऑल दीज एक्टिविटीज आर द फिजिकल पार्ट ऑफ इट. ओके, इसके बाद स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स हु हैव यू नो रीच्ड टॉप लेवल्स आर इनवाइटेड टू गिव लेक्चर्स ऑन डिफरेंट थिंग्स लाइक आईटी हो, आर्किटेक्चर हो, स्टार्टअप्स हो, जो भी हो सब्जेक्ट, सो दैट द चिल्ड्रन आर मेड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग डायरेक्शन टू देयर इंटेलिजेंस. एंड देन दे आर ऑल्सो टॉट कि सुबह में जो सुप्रभात के लिए ठाकुर देवता को जगाने के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनका मायने, वॉट इज द गायत्री मंत्र, वॉट इज द मीनिंग. क्योंकि क्या होता है, ये मंत्र पढ़ना आप देखोगे ज्यादातर पूजा पाठ हो रहा है और यहाँ पे बातचीत चल रही है, या तो बच्चे तो बाहर अपनी मौज मना रहे हैं. वंस दे अंडरस्टैंड द मीनिंग दे गेट इन्वॉल्व, सो दैट इज अनदर पार्ट ऑफ इट. सो आफ्टर बींग एक्सपोज टू ऑल दीज एक्टिविटीज, जैसे कि हमारा फार्म है जहां पे द प्रोड्यूस फॉर द किचन इज क्रिएटेड, फार्म में काम करना, गौशाला में काम करना, ये भी उनके आइटिनरी, जो कि जब उनके लिए शिविर बनते हैं, तो ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड. दिस इज वन पार्ट ऑफ इट. आजकल आपने देखा सुना होगा कि सडनली बिकॉज ऑफ द हरे कृष्णा मूवमेंट ही बोलिए, या तो चैतन्य महाप्रभु का जो नगर संकीर्तन हुआ करता था, इसकी महिमा ही बोलिए, समहाउ द यंगस्टर्स हैव बिकम अवेयर दैट देर इज सम पावर रिजल्ट इन द चांटिंग ऑफ द डिवाइन नेम, एंड उससे उनके अंदर जो उनको एक अलग तरह की शांति मिलती है. मे बी इट इज डन इन अ रिदम जस्ट लाइक रॉक एंड पॉप म्यूजिक, बट भजन पॉप म्यूजिक, भजन रॉक म्यूजिक अभी बहुत चल रहा है इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, लाइक इवन इन बॉम्बे इन द बाबुलनाथ मंदिर के कॉम्प्लेक्स में हुआ, ऐसे कई जगह पर. एंड इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इस बारे में जिक्र भी किया था कि इट इज अ वेरी गुड थिंग कि द युवा पीढ़ी में भी इन चीजों में दिलचस्पी आ रही है. तो बात यह है कि हर घर में बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली संस्कार कम इसलिए होते जा रहे हैं कि किसी को समय नहीं है टू अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस और टू पास ऑन द राइट थिंग्स. पहले के जमाने में एक दादी माँ, नानी माँ, दादाजी, नाना जी रहा करते थे जिनके पास से बच्चों को अनायास ये शिक्षा मिलती थी, आजकल नहीं मिलती है. इसके लिए आई डेफिनेटली फील कि देर शुड बी अ कंपोनेंट, नॉट एनी पर्टिकुलर फेथ बेस्ड बट मॉरल साइंस जैसे हमारे जमाने में हुआ करता था. द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंपल हैबिट्स, जैसे कि हमारे भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान जी ने अर्जुन को बताया है कि सबसे प्यारा भक्त उनका कौन सा है, और उसमें एफिशिएंसी इन व्हाट यू डू इज वन थिंग, क्लेनलीनेस इज वन थिंग, बीइंग अ लिटिल डिटैच्ड फ्रॉम फ्रॉम वॉट एवर यू आर डूइंग एंड इट्स आउटकम इज वन थिंग. ये सब छोटी छोटी चीजें वंस द चिल्ड्रन लर्न एंड दे नो द सोर्सेज वॉट दे थॉट वॉज दिस इज फॉर माई ओल्ड एज नॉट फॉर नाउ. वेन दे रियलाइज दैट द नॉलेज गिवन इवन इन स्क्रिप्चर्स इज वेरी टाइमली, फिर ये समझाने के लिए ऐसे ब्रिजेस, ऐसे लोगों की जरूरत है जैसे आप आज कर रहे हो थ्रू पॉपुलर मीडिया टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड वाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू डिस्कवर द अमाउंट ऑफ इनर स्ट्रेंथ, आत्मबल जिसको बोलते हैं, विच कम्स फ्रॉम द स्टडी, फ्रॉम द चांटिंग और फ्रॉम दिस एक्टिविटी और विच इज नॉट कनेक्टेड विद टुमारोज टेस्ट और इंक्रीजिंग माई पे पैकेट. तो ये धीरे धीरे हो रहा है और भी हो, ये मेरी इच्छा रही.
1: बहुत खूब. ऑफकोर्स ये मैसेज गांगुली मैम का हमारी यंग जनरेशन के लिए है. यंग जनरेशन बहुत एंग्शियस होती है, जल्दी में होती है. थोड़ा सा ठहर कर ये बात को समझना जरूरी है, लेकिन वी आर होपफुल और लाइट दिख रही है कि लोगों को समझ में आ रहा है. यंग जनरेशन को भी अब ये चीज समझ में आ रही है. बहुत खूब गांगुली मैम, आपका बहुत बहुत आभार है. आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, लोगों को आध्यात्म के बारे में, अपनी जिंदगी को सही ढंग से जीने के बारे में हमें बताया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड आई होप दैट एटलीस्ट वन और टू लाइफ लेसन्स हैव बीन शेयर्ड थ्रू दिस प्रोग्राम. मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज लर्न टू एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट. Give your best to the present moment. The past is over. The future is yet to come. Give your best to the present moment and bhavishya aapka automatically sudhar jayega. Thank you so much. Namaskar.
1: Namaste, ma'am.
2: Om Bhaskaraya Namaha.
1: दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं. आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे. मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं. मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर.

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। पान सिर्फ चबाने की चीज नहीं, एक जिंदा रिवायत। दोस्तों, भारत में अगर आप कत्था, चूना, सुपारी इनका नाम लो, तो दिमाग में कौन सी तस्वीर उभर कर आती है, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, एक छोटी सी दुकान, ऊपर गोरी का मकान। नहीं, एक छोटी सी दुकान, कान के पीछे कलम लगाए हुए दुकानदार, चमकते स्टील के डब्बे, और बीच में हरा हरा पान। लेकिन सच बताऊं, पान सिर्फ खाया नहीं जाता, पान तो बनाया जाता है, और पान बनाना एक कला है। जी हाँ, भारत आके देखिए, आपने कभी गौर से देखा है नुक्कड़ पर बैठे वाले पान वाले को? वो सिर्फ बेच नहीं रहा होता, वो रचना कर रहा होता है। सबसे पहले हरा ताजा पत्ता, बिल्कुल साफ, बिल्कुल चमकदार, जैसे किसी ने बारिश के बाद पेड़ से तोड़ कर निकाला हो। फिर आता है चूना, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ना ज्यादा ना कम, उंगली की नरमी से लगाया जाता है बड़े प्यार से। फिर कत्थे की एक परत, लाल रंग धीरे धीरे पत्ते पर फैलता है। उसके बाद छोटी छोटे सुपारी के टुकड़े, इलायची, सौंफ, नारियल का कतरन, गुलकंद की मीठी सी लहर, कभी कभी थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, थोड़ी सी चेरी, और थोड़ा सा कचूरा। हर चीज हिसाब से, न ज्यादा न कम, हर चीज एक अंदाज से। और फिर पत्ता मोड़ दिया जाता है, तीन कोण का बनाया जाता है, कभी चांदी के वर्क में लपेट दिया जाता है। बस तैयारी पूरी। आपको लगता है ये बस पान है? नहीं, ये भारत की गलियों की खुशबू है, उनका स्वाद है, हर महफिल का अंतिम सुर है। जरा सोचिए, शादी में खाना खत्म, सब लोग हाथ धोकर बाहर निकलते हैं, और एक छोटा सा स्टॉल होता है, पान काउंटर। लोग कहते हैं, भैया एक मीठा पान बना दो, जरा सा ज्यादा गुलकंद, सुपारी कम रखना। पान सिर्फ मुंह मीठा नहीं करता, बातों को लंबा करता है, कॉन्वर्सेशंस क्रिएट करता है। अक्सर दोस्ती की बातें पान के साथ होती हैं, रात देर तक चलने वाली गुफ्तगू, और बीच बीच में एक और बना दो। अब जरा भारत के शहरों की तरफ चलते हैं। बनारस, वाराणसी का बनारसी पान, यहाँ पान एक शान है। शाम को घाट पर आरती के बाद अगर बनारसी पान ना खाया तो जैसे सफर अधूरा रह गया। पत्ता पतला, मीठा संतूर, और एक तहजीब जिसमें पान देना भी अदब से होता है। फिर चलिए कोलकाता। कोलकाता का पान थोड़ा अलग, यहाँ स्वाद गहरा होता है, कभी ज्यादा सुपारी, कभी ज्यादा मसाला, और लोग बड़े प्यार से कहते हैं, एक स्पेशल बना दो। और हैदराबाद, हैदराबाद का जाफरानी पान, थोड़ा नवाबी अंदाज, थोड़ा शाही एहसास। देखा आपने,
एक ही पान लेकिन हर शहर अपना ही रंग घोलता है उसमें, जैसे भारत खुद। पर दोस्तों, पान की कहानी सिर्फ स्वाद की नहीं, पूरे जमाने में पान मेहमान नवाजी का हिस्सा था। घर में मेहमान आए तो चाय के बाद पान, ये सम्मान था। राज दरबारों में भी पान दान होता था, सुंदर चांदी के डिब्बे, उसमें सारा सामान अलग अलग खाने में। पान देना एक इशारा था, हम आपको अपना समझते हैं। और फिल्मों में हीरो ने हीरोइन को पान दिया या हीरोइन ने शर्मा कर पान लिया तो वो एक रोमांटिक पल बन जाता था। लेकिन एक और बात, पान बनाना सबको नहीं आता, ये हाथ की सफाई मांगता है। चूना ज्यादा हो गया तो स्वाद खराब, कत्था कम हो गया तो रंग अधूरा, सुपारी ज्यादा हो गई तो कड़वाहट। बैलेंस, पान हमें बैलेंस सिखाता है। जिंदगी भी तो ऐसी ही है ना, थोड़ी मीठी, थोड़ी तीखी, थोड़ी कड़वी और थोड़ी सुगंधित। आप अपनी पसंद बताओ और जिंदगी आपको अपना पान बनाकर देती है। आजकल नए नए पान भी आ गए हैं भाई, चॉकलेट पान, फायर पान, आइस पान। लेकिन असली मजा तब है जब दुकानदार आंखों में देख कर पूछे, कौन सा बनाऊं, और आप मुस्कुरा कर

0: इसलिए जब अगली बार आप पान खाएं, बस चबाकर थूक मत देना, थोड़ा महसूस करना। ये पत्ता कहाँ से आया होगा, कितने हाथों से गुजरा होगा, कितनी रिवायत जोड़ी होगी इसमें। पान सिर्फ एक पत्ता नहीं, ये गलियों का गीत है, शादियों की हंसी है, दोस्ती का ठहराव है और भारत की एक जीती जागती परंपरा है। तो बताइए आप कौन सा पसंद करेंगे, बनारसी, कोलकाता वाला, हैदराबादी जाफरानी या बस एक सादा मीठा। जो भी हो, जिंदगी का स्वाद तभी आता है जब उसमें थोड़ा सा कत्था हो, थोड़ा सा चूना और बहुत सारा प्यार। चलिए दोस्तों, आज के पान का स्वाद यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं अगले मोड़ पर एक और कहानी के साथ।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: ऑनलाइन शॉपिंग रियलिटी। ऑनलाइन लिखा था इजी 7 डेज रिटर्न। इंडिया में उसका मतलब था 7 दिन तक तो आप रिटर्न करने की हिम्मत जोड़ो और 8वें दिन प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लो।

जब यश चोपड़ा ने दुनिया को कहा, सुर पर भरोसा रखो। कभी कभी इंडस्ट्री के बीच खड़े होकर भी इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है। साल 1980 के आसपास का दौर था, हिंदी सिनेमा बदल रहा था, डिस्को आ रहा था, तेज बीट्स, लाउड अरेंजमेंट्स, फ्लैशी रिदम्स, गाने चल तो रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं धुन की रूह बहुत धीमी पड़ गई थी। और एक आदमी था जो चैन से नहीं बैठ पा रहा था, उनका नाम था यश चोपड़ा। उनके लिए फिल्म सिर्फ कहानी नहीं होती थी, फिल्म एक एहसास होती थी और उस एहसास को महसूस करने के लिए संगीत बहुत जरूरी था। उन्होंने देखा कि सुर हल्का हो रहा है, गीत याद रहने की बजाय बैकग्राउंड स्कोर बन चुके हैं, बैकग्राउंड शोर बन चुके हैं। तब उन्होंने एक फैसला किया, रिस्क भरा, लोगों को पागलपन लगा, इंडस्ट्री ने मना भी किया। उन्होंने सोचा, क्या होगा अगर दो बड़े शास्त्रीय संगीत के उस्तादों को मैं कमर्शियल सिनेमा में संगीत गाने दूं? नाम सुनते ही लोगों ने हाथ जोड़ लिए। एक तरफ थे संतूर के जादूगर शिव कुमार शर्मा, दूसरी तरफ थे बांसुरी के देवता हरि प्रसाद चौरसिया। दोनों अपने आप में एक स्कूल थे, एक इंस्टीट्यूशन थे। एक महफिल सजा देते थे बिना माइक के और एक सुर को प्रार्थना बना देते थे। लोग बोले, ये फिल्म का काम नहीं कर पाएंगे, कमर्शियल सिनेमा क्लासिकल से नहीं चलता, ये बहुत भारी पड़ जाएगा। लेकिन यश जी ने कहा, मैं सुर पर भरोसा करता हूं। और इसी भरोसे से पैदा हुआ एक नाम, शिव हरि। दो अलग धाराएं, एक संतूर के मोती सी चंचल सी धुन, एक बांसुरी की गहरी बहते पानी सी सांस। और जब दोनों मिले तो जैसे हवा में रंग घुल गए। उनकी पहली बड़ी फिल्म थी सिलसिला। सोचिए, अमिताभ बच्चन, रेखा, जया जी, एक कहानी जो खुद जिंदगी से निकली थी। और उस पर जब ये कहां आ गए हम जैसे गीत बजे, तो सिर्फ गाना नहीं था, एक खामोश बात थी जो दो दिलों के बीच होने लगी। संतूर की हल्की सी झंकार, बांसुरी का लंबा सा सांस और बीच में लव्स जैसे धीरे धीरे खुल रहे हों। फिर आई चांदनी। उस वक्त लोग डिस्को में डूबे हुए थे, लेकिन मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं और शादी की महफिल बन गया। लगी आज सावन की ने बरसात को महसूस करवाना सिखाया। ये गाने सिर्फ बजते नहीं, ये रहते हैं। और फिर आई मेरी फेवरेट लम्हे। रिस्क और भी बड़ा, कहानी भी अलग, लेकिन संगीत दिल के अंदर तक उतर जाने वाला। मोरनी बागामा, लोक धुन और शास्त्रीय स्पर्श का एक संगम। मेघा रे मेघा, जैसे बादल सच में खिड़की पर आ गए हों। शिव हरि ने ये सब 8 फिल्मों में काम किया, सिर्फ 12 साल का साथ। लेकिन उन 12 सालों में उन्होंने सिनेमा को याद दिला दिया कि गीत शोर नहीं, याद बन सकता है। उन्होंने क्लासिकल को हल्का नहीं किया, उन्होंने सिनेमा को गहरा किया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये सब बिना दिखावा किए किया, ना कंट्रोवर्सी, ना पब्लिसिटी का शोर, सिर्फ काम। यश जी कहते थे, फिल्म में संगीत कपड़े जैसा नहीं होना चाहिए जो बदल दिया जाए, वो कहानी का एक हिस्सा होना चाहिए। शिव हरि ने वही किया। उनके संगीत में ना तेज ढोल की तनकार थी, ना सिंथेसाइजर का शोर, लेकिन एक चीज थी, सच्चाई। और सच्चाई कभी पुरानी नहीं होती दोस्तों। आज भी अगर आप उनके गाने शांत कमरे में सुनो तो महसूस होगा जैसे वक्त धीरे हो गया है, जैसे सुर हवा में लटक रही हो, जैसे आपके दिल को कोई हल्का सा छूकर चला गया हो।
ये सिर्फ टैलेंट नहीं था, ये हिम्मत थी। यश चोपड़ा की हिम्मत, जो सबके मना करने पर भी खुद की आवाज सुनकर आगे बढ़ी। शिव कुमार शर्मा जी और हरिप्रसाद चौरसिया जी की तपस्या, जो महफिल से निकलकर सिनेमा के पर्दे पर आए बिना अपनी पहचान खोए। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है जानते हैं? कभी कभी दुनिया आपसे कहती है सेफ खेलो, जो चल रहा है वही करो, लेकिन अगर आपका दिल कहता है ना कि ये सही है, तो सुर पर भरोसा रखो, क्योंकि जब नियत साफ हो तो संगीत अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेता है। शिव हरि का दौर छोटा था, लेकिन उनकी धुन बहुत लंबी थी। और जब तक शादियों में चूड़ियां बजती रहेंगी, जब तक बरसात में कोई खिड़की खोलकर खड़ा रहेगा, जब तक प्यार में कोई धीरे से कहेगा ये कहां आ गए हम, तब तक वो जिंदा रहेंगे। और शायद कहीं दूर यश जी मुस्कुराते होंगे, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया था, ट्रेंड बदलते रहते हैं लेकिन सुर अमर होते हैं।

इंडियन मॉम्स और थर्मामीटर। माँ का थर्मामीटर सिर्फ एक होता है, हाथ का पिछला हिस्सा। डॉक्टर बोले 99 फीवर है, माँ बोले नहीं सब ड्रामा है। डॉक्टर बोले 101 फीवर है, माँ बोले अब थोड़ा सा लग रहा है फीवर जैसा। अंधेरा, लाहौर और एक 13 साल का लड़का जिसका नाम था मोहम्मद रफी। जरा आंखें बंद कीजिए। साल 1937, लाहौर। गर्मी की एक शाम, हवा भरी है। एक पुराना सा टाउन हॉल, लकड़ी की कुर्सियां, पंखे धीरे धीरे घूम रहे हैं, लेकिन गर्मी कम नहीं हो रही है। आज शेल्टर में महफिल है। स्टेज पर आने वाले हैं उस दौर के सबसे बड़े सितारे, केएल सहगल साहब। उनका नाम ही काफी था। लोग गांव गांव से आए, कोई पगड़ी बांधकर, कोई कुर्ता संभालते हुए, कोई बच्चों को कंधे पर बिठाए। हॉल खचा खच भरा हुआ था। लोग बेचैन हैं। तालियां, सीटियां, आवाज का शोर और फिर बिजली चली जाती है। पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है। गर्मी और बढ़ जाती है। लोग गुस्से में बोलने लगते हैं। ऑर्गेनाइजर्स भाग रहे हैं, जनरेटर का कोई इंतजाम नहीं। और सुपरस्टार कहते हैं, रोशनी और आवाज के बिना मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगा। भीड़ का सब्र टूटने लगता है। इसी भीड़ के बीच बैठा है एक 13 साल का लड़का, पतला सा, सीधा सा, आंखों में शर्म भी है और सपने भी। उसका बड़ा भाई ऑर्गेनाइजर्स के पास जाता है और धीरे से कहता है, जब तक बिजली वापस आए मेरा छोटा भाई गा दे। ऑर्गेनाइजर्स सोचते हैं, चलो भीड़ को शांत रखने के लिए कुछ तो करना ही होगा। लड़का स्टेज पर जाता है। नीचे उसके 5 भाई बैठे हैं और सामने उसके पिताजी एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं। उनका मानना है कि गाना बजाना बेकार चीज है। उन्हें लगता है बेटा नाई का काम सीखे, काम की चीज सीखे। हॉल में शोर है, लोग बातें कर रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट वो 13 साल का लड़का स्टेज के बीचों बीच खड़ा है सपने लिए। ना माइक, ना साज, ना कोई रोशनी, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ आवाज। वो आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेता है और गाना शुरू करता है। पहले कुछ लोग हंसकर कहते हैं, अरे बच्चा है। फिर धीरे धीरे शोर कम होने लगता है, जैसे किसी ने हवा को हल्का सा रोक दिया हो। उसकी आवाज में ना नखरा है ना दिखावा, बस सच्चाई है, कोमल, साफ और सीधी। वो सिर्फ सुर नहीं गा रहा, वो अपना दिल गा रहा है। उस पल में वो हॉल गायब हो जाता है। गर्मी गायब, भीड़ गायब, सिर्फ गीत रह जाता है। कुछ मिनट बाद बिजली वापस आ जाती है, स्पॉटलाइट जलती है, आंखें चौंधिया जाती हैं और फिर तालियों का एक तूफान आ जाता है। लोग खड़े हो गए, सीटियां, शोर, उत्साह, सभी कुछ। उसके पिता हैरान, ये सब किसके लिए? तभी कंधे पर हाथ पड़ता है खुद केएल सहगल साहब का। वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा एक दिन तुम बहुत बड़े गायक बनोगे, नाम क्या है? लड़का कहता है, मोहम्मद रफी। हां जी, मोहम्मद रफी। उस अंधेरे की शाम में एक सितारा पैदा हुआ था। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। पार्टीशन आया, लाहौर छूट गया, शहर बदला, जिंदगी बदली, लेकिन आवाज वही रही। मुंबई आए, संघर्ष शुरू हुआ। रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर घंटों इंतजार, छोटे मौके, 2 लाइन का गाना, कभी नाम नहीं आता, कभी कुछ। लेकिन रफी साहब ने कभी शिकायत नहीं करी, उन्होंने हर सुर को इज्जत दी। वक्त के साथ उनकी आवाज हर हीरो की पहचान बन गई।
रोमांटिक गीत हो या देशभक्ति का जोश, भजन हो या कव्वाली, शरारत हो या दर्द, उनकी आवाज बदल जाती थी लेकिन उनका विनम्र स्वभाव कभी नहीं बदला। सफलता के बाद भी स्टूडियो में सबसे पहले पहुंचना, नए कलाकारों को हिम्मत देना, कभी अपनी महानता का शोर ना मचाना, और यही उनकी असली महानता थी, उनकी असली स्टारडम। सोचिए, अगर उस रात बिजली ना जाती, अगर भीड़ शांत रहती, और अगर उनके भाई हिम्मत ना करते। कभी कभी जिंदगी आपको स्टेज तब देती है जब सब कुछ अंधेरा हो, जब माइक नहीं होता, जब सहारा नहीं होता, जब आपको लगता है कि कोई सुन नहीं रहा। वही पल आपको पहचान देता है। रफी साहब ने सिखाया, मौका छोटा हो सकता है लेकिन पल बड़ा होगा। और जब आवाज सच्ची हो तो दुनिया खुद चुप हो जाती है। आज भी जब उनका गीत रेडियो पर बजता है तो लगता है लाहौर का वो हॉल फिर से रोशन हो गया हो। एक 13 साल का लड़का आंखें बंद किए दुनिया को अपना दिल सुना रहा है और शायद हमें याद दिला रहा है, कभी अपनी आवाज को छोटा या कम मत समझना। अंधेरा सिर्फ रोशनी के लिए जगह बनाता है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरणादायक गीतों के साथ, प्रेरणादायक बातों के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में। सपने देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बने रहिए आरजे समीर के साथ। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है और तब आप जीतते ही जीतते हैं दोस्तों।

अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें परियों की कहानियां सुनाएं। यदि आप उन्हें और भी बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें और ज्यादा परियों की कहानियां सुनाएं।

हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाएगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: अगर आपको सभी महिलाओं से डर लगता है तो जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर एक महिला से डर लगेगा और बाकी सारी अच्छी लगने लगेंगी।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा होता है दोस्तों। अगर ये विश्वास आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

दोस्तों, खुद की तुलना किसी और के साथ करना अब बंद कीजिए। आप सबसे बेहतर हैं।

करना है अब कर ले, कल की किसे खबर है। ढलता सूर

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: वैज्ञानिक चाहे जितनी खोज कर लें, ये बात कभी नहीं पता लगा पाएंगे कि लोग जब उदास हो जाते हैं तो व्हाट्सएप से अपना डिस्प्ले प्रोफाइल क्यों हटा लेते हैं।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। दोस्तों, हार यानी कि पराजय वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है, तो इसलिए हार से घबराएं।

0: तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आज इतना ही। भूलिएगा नहीं, सपने देखते रहिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
2: लुई पास्चर।
3: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पास्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
4: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पास्चर आई वुड बी नथिंग।
3: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
5: De Marseille, dans le sud de la France.
6: Ladies and gentlemen, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मोनसिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विचार

0: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है, उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
1: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
2: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
0: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
2: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
0: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
3: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
4: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
3: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
4: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
3: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
0: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
5: चलो, अरे
0: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
2: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
6: चलो,
7: लोहा गर्म हो रहा है।
8: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
0: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
2: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
0: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया।
2: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
0: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
2: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
0: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
6: लुई पाश्चर
1: सर,
6: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
1: कहिए सर।
6: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
1: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
6: ठीक है।
2: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
0: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है और अच्छी बात ये है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन हैं।
2: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
0: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
2: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
0: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
2: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
2: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया। और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
2: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
9: अरे आजा आजा आजा आज, ए, हाँ ए, इंजेक्शन लगा दूँ।
10: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगे और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
2: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
11: सर ये टेलीग्राम।
12: अच्छा लाओ दिखाओ।

0: 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
1: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
2: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
1: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
2: देखिए आप,
1: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
2: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
1: मेरा
2: अच्छा,
1: बेटा।
2: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
3: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
3: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
0: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
3: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
0: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
3: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
4: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
3: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वाज अ ह्यूमनिस्ट, always working towards the improvement of the human condition.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज,
1: विज्ञान गीत।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: बाबा आमटी

एक कहावत है, अंधेरे की शिकायत करते रहने की अपेक्षा एक दिया जलाना ज्यादा अच्छा है। हमारे समाज में बहुत से लोग असहाय हैं और उनमें से अनेक भिखारी का जीवन बिता रहे हैं। इन दुखी लोगों के बारे में सोचते तो सब हैं, पर कुछ लोग संकल्प कर लेते हैं कि उन्हें ऐसा काम करना है जिससे दूसरों का दुख कम हो। ऐसे ही एक कर्मवीर हैं बाबा आमटे, जिनकी करुणा का साकार रूप है आनंद वन। आनंद वन महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक बस्ती है। यहां कुष्ठ रोग से पीड़ित हजारों असहाय स्त्री पुरुष बाबा आमटे की सहायता से अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और सम्मान के साथ जीवन बिता रहे हैं। बाबा का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे है। पर इनकी मां इन्हें बाबा कहकर पुकारती थी। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में 26 दिसंबर 1914 को हुआ। इनके पिता देवीदास हरबाजी आमटे एक बड़े जमींदार होने के साथ साथ सरकारी अधिकारी भी थे। मुरलीधर की मां पढ़ी लिखी नहीं थी, पर थी बहुत बुद्धिमान। मां ने इन्हें चित्रकला सिखाई, प्रकृति और प्राणी जगत से इनका परिचय कराया। मां सिखाती, जो सुख लेने में है उससे ज्यादा सुख देने में है। बार बार की कोशिश से आदमी सफल होता है। हार न मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। मां के द्वारा दी गई सीख ही बाबा के जीवन में पग पग पर काम आई।

बालक मुरलीधर का ध्यान बचपन से ही निर्धन और असहाय लोगों के कष्टों की ओर जाता। जब कभी वो अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठ अपनी जमीन जायदाद को देखने निकलता, उसका ध्यान निर्धन मजदूरों और कामगारों की ओर खींचता। उनकी आर्थिक कठिनाइयों तथा शारीरिक बीमारियों के बारे में सुनकर उसका दिल भर आता। छुआछूत के प्रति उसके मन में बहुत घृणा थी। किसी तरह भी उसका बाल हृदय ये मानने को तैयार नहीं था कि जन्म के कारण ही समाज में कुछ लोग छोटे और कुछ बड़े हो सकते हैं।

उसके स्वभाव की दूसरी विशेषता थी प्रकृति से प्यार। पेड़ पौधों, जंगलों, नदियों तथा पशु पक्षियों के प्रति उसके हृदय में अगाध प्यार था। वो दिन भर जंगलों में भील गोंडों से परिचय करता और उनसे बातचीत कर प्रसन्न होता। उनका सरल स्वभाव, सच्चाई, निशानेबाजी तथा स्वतंत्र जीवन मुरलीधर को विशेष रूप से आकृष्ट करता। युवावस्था में मुरलीधर पर महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव पड़ा। मुरलीधर हर समय सेवा कार्य के लिए तत्पर रहते। स्वतंत्रता संग्राम में वे दो बार जेल भी गए। वे सच्चे अर्थों में गांधी जी के अनुयायी बन गए। बापू ने उन्हें अभय साधक कहकर पुकारा था। उन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ समय वकालत भी की, परंतु उनका मन केवल आजीविका कमाने में नहीं लगा। उन्होंने सोच लिया कि उनका जीवन किसी बड़े कार्य के लिए अर्पित होना चाहिए। यह कार्य था गरीब दुखियों की सेवा। उन्होंने अपने त्याग, तपस्या और सेवा भाव से मुरलीधर के स्वप्नों को साकार करने में बहुत सहायता दी। सन 1948 में मुरलीधर वरोंस्की नगर पालिका के उपाध्यक्ष चुने गए। वे सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी थे। इसी पद पर रहकर उन्हें इन लोगों की वास्तविक दशा का पता चला। उन्होंने सोचा, जब तक मैं स्वयं इन लोगों का कार्य नहीं करता, मुझे इनकी कठिनाइयों का ज्ञान नहीं हो सकता। उन्होंने भी सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। एक बार की बात है, रात्रि का समय था, घनघोर वर्षा हो रही थी। सिर पर मैले की टोकरी रखे जैसे ही मुरलीधर ने पांव उठाया कि उनकी नजर एक कुष्ठ रोगी पर पड़ी। जहां मन भयभीत रहे वहां प्यार कैसा, और जहां प्यार नहीं वहां ईश्वर नहीं। मुझे अपने मन से भय को भगाना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी ने अपने हाथों से कुष्ठ रोगी की सेवा की, फिर मैं अपने कर्तव्य से क्यों पीछे हटूं? बस इसी संकल्प के साथ वे अपने कार्य में लग गए। उन्होंने कोलकाता जाकर कुष्ठ रोग की चिकित्सा में विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। सैकड़ों कुष्ठ रोगी प्रतिदिन उनके पास आने लगे और अपना इलाज कराने लगे। पहले मां उन्हें बाबा कहती थी, अब सभी उन्हें बाबा पुकारने लगे। कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा करते हुए बाबा ने देखा कि उनकी समस्या केवल उस भयंकर रोग से छुटकारा पाने की ही नहीं, अपितु मानसिक भी है। इस रोग को इतना घृणित समझा जाता है कि परिवार वाले भी रोगी के पास नहीं फटकते। रोग से छुटकारा पा लेने पर भी समाज के लोग उसे स्वीकार नहीं करते और उसे अपना जीवन भिखारी के रूप में ही बिताना पड़ता है। लोगों को यह भ्रम है कि इस रोग का इलाज नहीं हो सकता और यह छूत का रोग है, किंतु ऐसा नहीं है। अब इसका इलाज भी संभव है। बाबा अधीर थे कि कैसे
इन पुनः स्वस्थ हुए लोगों को बसाया जाए। उन्होंने अपने प्रयत्न से 250 एकड़ जमीन इस कार्य के लिए जुटाई और स्वस्थ हुए व्यक्तियों को उस पर खेतीबाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया। सबसे पहले बनी बाबा आमटे और साधना ताई के लिए बांस की एक झोपड़ी और फिर बनने लगे उसके आसपास इन रोगियों के लिए आवास, अस्पताल और विद्यालय। बाबा की झोपड़ी तो कई वर्षों बाद अब भी कुछ कुछ वैसी ही है, परंतु आसपास के भवनों को देखकर चकित हुए बिना नहीं रहा जाता। ये सब हैं बाबा की लगन और परिश्रम के साकार रूप। कुष्ठ रोगियों में किसी के हाथ नहीं, किसी के पांव की उंगलियां नहीं और कोई देख नहीं सकता, पर सभी लगे हैं अपना भविष्य बनाने में। कोई केवल पैरों से मशीन चलाता है तो कोई अंधा होते हुए भी फुर्ती से कुर्सी बुनता है। जो व्यक्ति जिस काम के उपयुक्त है वो उसी में लगा है। बाबा आमटे नहीं चाहते कि इन लोगों की सहायता दान से की जाए। बाबा का विश्वास है काम से आदमी का निर्माण होता है। वे प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को कोई ना कोई हुनर सिखाकर उसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं।

विकास और प्रकाश दोनों डॉक्टर हैं। विकास आनंदवन के स्वास्थ्य केंद्र का अध्यक्ष है। यहां रोगियों की चिकित्सा तो की ही जाती है, उन्हें स्नेह और सहानुभूति भी मिलती है, उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया जाता है और उन्हें फिर से स्वावलंबी बनाया जाता है।

आज आनंदवन के आसपास लहलहाते खेत हैं, फलों के बगीचे हैं, मुर्गी घर और पशु घर हैं। आसपास की चप्पा चप्पा भूमि इन लोगों के पसीने से सींचकर सोना उगल रही है। आस पड़ोस की मंडियों में यहाँ की उगाई साग सब्जी बिकने जाती है। दूध, घी और मक्खन का व्यापार होता है। यहाँ के खेतों में उत्पन्न बीजों की नई किस्में भारत के कोने कोने में पहुंचाई जाती हैं। आनंद वन में कहीं बच्चों के लिए विद्यालय हैं, कहीं खेल के मैदान। छोटे छोटे कारखाने हैं, कहीं मनोरंजन के कार्यक्रमों के लिए सभागृह। यहां रहने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। आनंद वन सचमुच आनंद का वन है।

बाबा आमटे बच्चों से अगाध स्नेह करते हैं। एक बार एक दृष्टिहीन बालक ने गुलाब का फूल छूकर देखने की इच्छा प्रकट की। बाबा उसे फूलों के बगीचे में ले गए। बालक ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसकी उंगली में कांटा चुभा। उसने हाथ पीछे खींच लिया। बाबा आमटे उसी दिन से कांटों रहित गुलाब के पौधों की खोज में लग गए और अंत में आनंद वन में वो पौधा लग गया जिस पर गुलाब तो है पर कांटे नहीं। वास्तव में बाबा का संपूर्ण जीवन ही दूसरों के मार्ग से कांटों को हटाने में और फूल खिलाने में लगा है।

बाबा के कार्यों की सफलता से प्रेरणा पाकर अनेक स्थानों पर ऐसे आश्रमों की स्थापना हुई जिनसे असहाय व्यक्तियों को सहायता मिली। अब बाबा की कीर्ति फैलने लगी। उन्हें जगह जगह से सम्मान पत्र भेंट किए जाने लगे। भारत सरकार ने उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। '78 का जमनालाल बजाज पुरस्कार तथा 1985 का मैग्सेसे पुरस्कार भी बाबा आमटे को प्रदान किए गए। ऐसे अनेक अन्य पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुए। बाबा इन पुरस्कारों से प्राप्त समस्त धनराशि आश्रमों में लगा देते हैं। अपने देश में शांति तथा राष्ट्रीय एकता का वातावरण बनाए रखने के लिए बाबा हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। भारत जोड़ो अभियान भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाया गया है। बाबा आमटे उन व्यक्तियों में से हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज,
1: रेलगाड़ी।
2: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? हाँ, पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे, तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
3: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
4: अरे संजू, वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
5: अरे हाँ, गाड़ी रोको गाड़ी रोको।
4: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
5: हाँ, अब बन गई रेल।
3: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
4: अरे अरे, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए।
5: दादाजी, आप भी हमारे संग खेलिए ना।
6: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं, तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
5: हाँ दादाजी, ये ठीक रहेगा।
6: चलो।
3: रेल चली भाई रेल चली,
6: एक के पीछे एक आओ, रेल बनाओ रेल बनाओ, इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। अरे अरे भाई, मैं तो थक गया, अब रेल गाड़ी रोकनी पड़ेगी।
4: हाँ दादाजी, हम भी थक गए।
6: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
4: अच्छा
6: अच्छा, अब ये बताओ, तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
5: दादाजी, मैंने देखी है।
6: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
5: जब माँ के साथ नाना जी को लाने स्टेशन गया था, तभी देखी है बस।
6: अच्छा तो चलो, मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
4: अरे वाह,
6: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
4: हाँ, आज तो बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
6: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
7: अरे दादाजी, स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
6: अरे भैया, तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देखाएंगे।
7: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में।
6: बैठो बैठो, जल्दी करो जल्दी करो, बैठो बैठो बैठो। चलो चलो चलो, उतरो बच्चों, जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है। उतरो उतरो।
5: रानी जल्दी चलो, नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
6: हाँ हाँ, उतरो बेटी।
2: बच्चों, रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफार्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
4: दादाजी, यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
6: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और कुछ जाने वाले हैं।
4: अच्छा, तो ये बात है।
6: अच्छा बच्चों, वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
8: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
4: हो हो हो, रेलगाड़ी आ गई, रेलगाड़ी आ गई।
5: अरे वाह दादाजी, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
6: हाँ बच्चों, देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
4: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
6: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
4: अच्छा। अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल रही। दादाजी अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
6: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
4: हाँ हाँ दादाजी, चलिए।
8: छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है। छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है। कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु सीटी बजाती है। कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु।
0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, और मैं हूँ आप सभी के बीच में आपकी रेडियो साथी आरजे भावना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा आप सभी के बीच में हाजिर होती हूँ लेकर समुदाय के चर्चा में एक नया विषय, और आज भी एक नए विषय के साथ में मैं आरजे भावना हाजिर हूँ आप सभी के बीच में लेकर ये बहुत ही खास और बेहतरीन जानकारी जो है नशा मुक्ति भारत अभियान पर। और आज के इस चर्चा के विषय में चर्चा में शामिल होने हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्म कुमारी से ज्योति बहन। ज्योति बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, कृपया अपना परिचय दीजिए हमारे श्रोताओं को।
9: ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय झाबुआ से मैं ब्रह्म कुमारी ज्योति बहन, जो कि विगत 25 वर्षों से झाबुआ आदिवासी क्षेत्र में आध्यात्मिकता के द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हूं।
0: दोस्तों, तो आपने जाना ज्योति बहन का परिचय, इन्होंने अपने बारे में बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण जानकारियां दी, और अब हम चर्चा के विषय पर आते हैं। तो ज्योति बहन, आप ये बताइए कि नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए क्या कहना चाहेंगी हमारे श्रोताओं से?
9: आज का हमारा विषय है, जो कि भारत सरकार और ब्रह्म कुमारी के MOU से एक बहुत सुंदर अभियान चल रहा है, नशा मुक्त भारत अभियान। इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि जो झाबुआ जिला है, हम सभी को ज्ञात है कि इस झाबुआ जिले में नशा बहुत मात्रा में फैला हुआ है। हम ये कहेंगे कि सुबह की शुरुआत और पूरे दिन का अंत अर्थात रात तक अधिकतर मनुष्य आत्माएं शराब में डूबी हुई रहती हैं, तंबाकू पाउच का सेवन करती हैं, और इस गिरफ्त में आज के छोटे छोटे बच्चे भी अछूते नहीं रहे हैं, वो भी इस गिरफ्त में आते जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि हम सभी परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान हैं, और परमात्मा ने हम सभी को एक बहुत सुंदर उपहार दिया है, और वो उपहार है हमारा शरीर। वैज्ञानिकों ने हमारे शरीर का आकलन करके इसकी कीमत लगाई है जो है 220 करोड़ रुपए। आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि आज यदि हम एक 10 लाख की मारुति कार खरीदते हैं तो भी हम उसका कितना रखरखाव करते हैं, उसमें पेट्रोल डालना है तो पेट्रोल ही डालते हैं, समय प्रति समय उसकी सर्विसिंग कराते हैं। ऐसे नहीं कि आज हमारे पास पेट्रोल नहीं है तो हमने डीजल डाल दिया, नहीं, हम उस गाड़ी का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है और उन्होंने हमें 220 करोड़ रुपए का ये शरीर दिया है। आज मनुष्य आत्मा ने उसकी क्या हालत बना ली है। आज का मानव अपने शरीर के अंदर शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, गुटखा आदि डालकर अपने शरीर को डस्टबिन अर्थात कचरे का डब्बा बनाते जा रहा है। आज हम परमात्मा के सामने भी इन चीजों का भोग अर्थात नैवेद्य कभी नहीं लगाते हैं। परमात्मा के सामने भी हम बहुत सुंदर चीजों का भोग रखते हैं और हम परमपिता परमात्मा को रोज याद करने वाले अपने घर में हमने उनकी तस्वीरें लगा रखी है, लेकिन हम अपने शरीर में कितना गंदगी डाल रहे हैं और उसके कारण जो है शरीर इतना कमजोर होता जा रहा है।
10: जी बहन जी, मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी आपसे कि ठीक है नशे की वस्तुएं हैं, लेकिन इंसान नशे का शिकार होता ही क्यों है, या फिर अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, कृपया इसके बारे में बताइए।
9: अब हमें ये जानना होगा कि व्यक्ति नशे का शिकार क्यों होता है। आज तक हमने जितना भी सर्वे किया या जो जो नशीली चीजों का सेवन करते हैं उनसे यदि हम पूछते हैं तो उनका एक ही उत्तर होता है कि दीदी हम बहुत छोटे थे और हमारे दोस्तों ने हमें ऑफर किया कि पाउच खा लो या तंबाकू खा लो या थोड़ी सी शराब पी लो या गांजा ले लो, और हम उन्हें ना नहीं कह सके। और एक बार हमने बाल्यावस्था में ही उस चीज को लेना शुरू किया और धीरे धीरे हम जो है उसके आदि बन गए हैं।
10: जी जी मैम, बहुत ही बढ़िया आपने जानकारी दी। अब एक और सवाल था हमारे मन में कि आखिर ये नशा किन किन चीजों से हो सकता है या फिर किन किन चीजों से होता है, कृपया इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
9: तो नशा सिर्फ शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का ही नहीं है। आज एक और नशा इस समाज को अपनी गिरफ्त में लेते जा रहा है और वो नशा है मोबाइल का भी नशा। आज यदि हम देखते हैं कि कई घर परिवारों में सुनने के लिए मिलता है, दीदी बच्चा खाना नहीं खाता है, और उसको जैसे हम मोबाइल दे देते हैं वो आराम से जो है मोबाइल देखता जाता है और भोजन करता जाता है। बच्चा रो रहा है, हमने उसको मोबाइल दे दिया। तो क्या आज हम अपने बच्चों को, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, हम उसको कैसा जीवन हम खुद ही प्रदान कर रहे हैं? तो वर्तमान समय की ये पुकार है कि हम सभी 24 घंटे में से घड़ी दो घड़ी आध्यात्मिकता को अपने जीवन में शामिल करें, आध्यात्म के द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, और आध्यात्म से ही हम सभी का जो जीवन है वो परिवर्तन हो सकता है। आज हमने अपने जीवन में कई परिवर्तन किए हैं जिसके लिए हम सोचते हैं कि हम विकास की ओर जा रहे हैं, लेकिन एकांत में बैठकर के यदि हम घड़ी दो घड़ी चिंतन करें तो हम अपने आप से यदि बातें करें या अपना आत्मविश्लेषण करें तो हमें ये पता चलेगा कि हम विकास की ओर नहीं बल्कि आज हम विनाश की ओर जा रहे हैं।
10: जी मैम, हमने सूक्ष्म रूप से ये जाना है कि नशे के कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब हम संपूर्ण रूप से जानना चाहेंगे कि आखिर ये नशे के कारण क्या क्या है और इसका निराकरण कैसे किया जा सकता है या फिर इसके निवारण क्या है, कृपया इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
9: नशे के कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, जैसे किसी घर परिवार में बच्चों को स्नेह नहीं मिलता है और इस कारण जो है बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करता है, तो वो जब बाजार में जाता है तो वो सुंदर पाउच यदि किसी पान की दुकान पर लगे हुए हैं तो उनकी ओर वो अपने आप आकर्षित होता है, और एक बार यदि वो खाना शुरू करता है तो वो उसको बड़ा अच्छा लगने लगता है और वो उसका आदि हो जाता है। कहीं कहीं व्यापार में असफलता है या कहीं किसी को अपने प्यार में धोखा मिलता है तो भी हमने देखा है
10: कि व्यक्ति जो है शराब का या सिगरेट का सहारा लेते हैं, या फिर आर्थिक परेशानियां हैं, या व्यक्ति कोई बीमार है वो भी जो है फिर इस नशे की तरफ बढ़ता है। और वो नशा जब करते हैं तो थोड़ी देर उनको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर जैसे ही नशा उतर जाता है तो फिर वही स्थिति होती है, फिर वो नशा करने लगता है, इस प्रकार वो इस चीज का आदि हो जाता है। जी मैम, अभी आपने आध्यात्मिकता के बारे में बताया, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आध्यात्मिकता का प्रयोग करके नशे से दूरी कैसे बनाई जा सकती है, इसका क्या रोल हो सकता है इसमें, कृपया इसके बारे में बताएं।
9: देखिए, नशे से दूर होने के लिए इसे व्यक्ति कहता है ना, आज मेरा शराब पीने का मन है, या कहते हैं कि मेरा सिगरेट पीने का मन कर रहा है, तो सबसे पहले हमें जो है अपने मन को पावरफुल अर्थात शक्तिशाली बनाना होगा। और मन शक्तिशाली दवाइयों से नहीं बनेगा, उसके लिए हमें थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर मुड़ना पड़ेगा। तो जैसे कि ब्रह्मा कुमारीज में खास हम सिखलाते मेडिटेशन, जैसे एक डिस्चार्ज मोबाइल की बैटरी है, और जैसे हमने उसको पावर हाउस से कनेक्ट किया तो हमारे मोबाइल की बैटरी रिचार्ज होने लगती है और मोबाइल हमारा कार्य करने लगता है। इसी प्रकार हमारा शरीर एक मोबाइल है और इसके अंदर एक बहुत सुंदर सिम है, वो है आत्मा, और इसके अंदर जो मन है वो बैटरी है। परमात्मा से अपने मन को कनेक्ट करना, उसकी एक बहुत सुंदर विधि है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन से हम परमात्मा से सीधा कनेक्ट होकर के धीरे धीरे अपने मन को पावरफुल बनाते, मन को शक्तिशाली बनाते हैं। दूसरा, हम नशे को दूर करने के लिए दूसरा हम सहारा लेते हैं, बुद्धिमत्ता का विकास। मान लीजिए हमारे पास में कोई व्यक्ति आता है सिगरेट पीकर के आता है, तो हम उससे घृणा करते हैं, आपके पास से बदबू आ रही है, आप दूर हो जाइए, मेरे पास मत बैठिए। या कोई व्यक्ति शराब पीकर आया तो हम उससे नफरत करते हैं, आपने बहुत शराब पिए, आप हमारे पास मत बैठिए। नहीं, हमें उनसे सबसे पहले स्नेह से प्यार से उनके साथ में पेश आना है कि देखिए आप शराब को कम कीजिए, सिगरेट को पीना कम कीजिए। और धीरे धीरे जैसे उसके बुद्धि में ये उतरेगा कि मुझे इससे दूर होना है, और मान लीजिए अगले दिन व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति एक दिन में 10 सिगरेट पीता है, लेकिन उसने अगले दिन 9 सिगरेट पी, उसने एक सिगरेट कम पी है, तो हमें उसको प्रोत्साहित करना है, शाबाश, वेरी गुड, आज आपने बहुत अच्छा किया, आपने एक सिगरेट को कम किया। इससे उसके अंदर उमंग उत्साह आएगा कि ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे फिर इस नशे को छोड़ने का प्रयास करेगा और उसमें सफलता मिलेगी। तीसरा, नशे को दूर करने के लिए होम्योपैथिक दवाइयां, जो कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी से भी हम निशुल्क ही प्रदाय करते हैं, जिसमें सिगरेट, तंबाकू और शराब को छोड़ने के लिए होम्योपैथिक दवाई देते हैं। और चौथा प्रकार है, कुछ घरेलू उपाय भी है, छोटे छोटे नुस्खे बनाकर उसका प्रतिदिन कई दिनों तक नियमित सेवन करने से भी हम नशे को पूर्णतया छोड़कर एक बहुत सुंदर शांतिमय जीवन बना सकते हैं। जो व्यसन का आदि व्यक्ति, उसको आत्मिक स्नेह की बहुत आवश्यकता है, लेकिन जैसे वो मेडिटेशन करता है तो उसको आत्मिक स्नेह के साथ साथ परमात्मा के प्रति भी वो आकर्षित होने लगता है। और जो जो मनुष्य आत्मा नशे का आदि व्यक्ति परमात्मा की ओर आकर्षित होता है, तो धीरे धीरे उसका जो ये नशा है वो छूटने लगता है, उससे एक रूहानी नशा, एक आध्यात्मिक नशा चढ़ने लगता है कि मुझे श्रेष्ठ कर्म करना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ जीवन बनाना है, श्रेष्ठ कर्म करना है।
10: जी मैम, आपने अभी अभी कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में बताया, तो हम जानना चाहेंगे और साथ ही जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे वो सभी भी जानना चाहेंगे कि आखिर कौन से वो घरेलू नुस्खे हैं जिसका इस्तेमाल करके हम नशे से दूर हो सकते हैं, या फिर नशे को खुद से दूर किया जा सकता है। तो प्लीज मैम, वो घरेलू नुस्खे के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
9: हाँ, नशे को छोड़ने के लिए हम सौंफ, मिश्री, अजवाइन, तिल्ली, इन चारों को बराबर मात्रा में लेकर के अच्छा मिक्सर में पीस के उसका चूर्ण बना के, और उसका दिन भर में 4 या 5 बार उसका सेवन करें। तो जो बार बार जो व्यक्ति का मन करता है मुझे गुटखा खाना है, पाउच खाना है या शराब पीना है, तो वो जो है धीरे धीरे उसका जो है मन उधर से हटने लगता है। दूसरा, एक अदरक का टुकड़ा, अदरक को छील कर उसका ऐसा स्लाइस बना करके भी व्यक्ति मुंह में रख करके उसको चूसता रहे, चबाता रहे और उसका रस अंदर लेता रहे, तो भी जो है
11: पीने की या जो गुटखा खाने की वो धीरे धीरे तमन्ना जो है वो कम होने लगती है।
10: जी मैम, आपने बहुत ही बढ़िया और अहम जानकारियां दी हमारे श्रोताओं को नशे को लेकर, और साथ ही हमारे झाबुआ जिले के जो श्रोता सुन रहे होंगे वो शायद इसे समझ भी रहे होंगे कि नशा कितना खतरनाक है और हमारे दैनिक जीवन में, हमारे शरीर पर और आर्थिक जीवन में उसका क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो इसे वो सुनेंगे, समझेंगे और साथ ही हम आशा करते हैं कि वो नशे से आज ही दूरी बनाना शुरू करेंगे। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे श्रोताओं को इतनी अहम जानकारियां प्रदान की, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दोस्तों, आज आपने जाना नशे से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसी परेशानियों से अगर आपको सामना नहीं करना है तो कृपया नशे से दूरी बनाए। नशा कोई अच्छी चीज नहीं है, नशा एक बहुत ही गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है और वो बीमारी हमारी जान भी ले सकती है। इसलिए कृपया नशे से दूरी बनाए और जितना हो सके खुद को इससे दूर रखें और भी लोगों को समझाएं कि नशा न करें। नशा मुक्त रहेंगे तभी तो स्वस्थ जीवन जिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
12: हूँ से आरजे राकेश
13: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
12: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत से तमारो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। हूँ से आरजे राकेश अने रोज नी जेम तमारी वस मा आज फेर कार्यक्रम खेतीवाड़ी लेने हाजिर थायो से। અને કિસાન ભાઈઓ, હું રોજ તમારી વસમાં ખેતીવાડી દેખા જોડાયેલા મુદ્દા, ખેતીવાડીની સમસ્યાઓ અને તેના સમાધાનની વાતો લઈને રોજ હાજર થતો રહું છે એના સમય પર। અને કિસાન ભાઈઓ, આજના કાર્યક્રમમાં આપણો ચર્ચાનો વિષય રહેવાનો છે પાલતુ પશુઓના બારામાં। જેવી રીતે કિસાન ભાઈઓ, આપણા કિસાન ભાઈ હારું ખેતીવાડી જે ત્રી આવશ્યક અને મહત્વપૂર્ણ છે એ ત્રો ખેતીવાડીમાં પશુપાલનનો પણ ઘણો મહત્વ છે। તો કિસાન ભાઈઓ, જબ આપુ પાલતુ પશુ આપણે ઘેર પાળી તો જેવી રીતે મનખું બીમાર થાય તેવી રીતે પશુઓમાં પણ તરહ તરહની બીમારીઓ આવે, અને આજ એવી અલગ અલગ પ્રકારની જો બીમારીઓ પશુઓમાં આવે તેનું નિદાન કેવી રીતે કરવાનો, અલગ અલગ બીમારીઓ પર કેવી રીતની આપણને દેખભાલ કરવાની, કેવી રીતે આપણ ડાક્ટર સાથે સંપર્ક કરીને દવા ખવડાવવાની, એ બધી વાતો આજ એના કાર્યક્રમમાં આપુ સાંભળવાના છે। અને એ બધી વાતો આજ આપણ વતાડે સ્ટુડિયોમાં મારા સહયોગી ભાઈ કમતા ડામોરજી। તો કમતાજી આવો અને આપણા ઝાબવા જિલ્લાના કિસાન ભાઈઓને વતાડો કે પશુઓમાં ખાદ્યજન વિષક્તાના કારણ અને એના નિદાનની વાતો, એ શું કહેવાય, એ બધી વાતો ભીલીમાં આપણા કિસાન ભાઈઓને સમજાડો।
14: તો કિસાન સાથીઓ, ખેતીવાડી કાર્યક્રમના માધ્યમથી કિસાન ભાઈઓને હું આજ પશુઓમાં ખાદ્યજન્ય વિષાક્તા રોગના કારણ અને તેના નિદાનના બારામાં જાણકારી સંભળાવવા જઈ રહ્યો છે। તો કિસાન સાથીઓ, પશુપાલન વ્યવસાયમાં આહાર અને આહાર પર સૌથી જ્યાદા ખર્ચો થવાને કારણ હસ્તો અને સંતુલિત આહારનો વિશેષ મહત્વ છે। હરા ચારાના ન્યૂનતમ દર પર પોષક તત્વોની આપૂર્તિના કારણ એમાં સૌથું અસલ પશુ આહાર માને ગયે છે। પૂર્ણ હમણે અકાલની ભીષણ સ્થિતિને કારણ ઇહોની ઉપલબ્ધતા ઘણી કમ છે। સારાની ફસલીઓની બુવાઈના ટાઈમ પર પાણીના અભાવને કારણ ફસલીઓમાં બઢોતરી રોકાઈ જાય છે અને સારો સિમાઈને હોકવા લાગે છે, અને એની પ્રકારથી અવિકસિત અને સિમાઈ અને સારાના વિષાક્ત તત્વો રહેશે ત્યાં તેઓના સેવનથી પશુઓમાં ખાદ્યજન્ય વિષાક્તા રોગ થઈ જાય છે। અકાળના ટાઈમ પર લીલો સારાના અનુભવમાં પોષક તત્વોની આપૂર્તિ હારું કૂટું અને અન્ય હુકેલા રેસાદાર સારાને યુરિયાથી ઉપચારિત કરીને પશુઓને ખવડે જાય છે। યુરિયા ઉપચારિત થૂકેલો સારો તૈયાર કરતા વખત અસાવધાનીથી યુરિયા ઉપચારિત સારાની જ્યાદા માત્રાથી સેવન કરવાથી વિષાક્તા થઈ જાય છે। પશુઓમાં ખાદ્યજન્ય વિષાક્તા કઈ કારણોથી થઈ જાય છે અને તેમાં ઝેર ફેલે છે અને જેના પર પશુપાલકોનો કોઈ નિયંત્રણ નહીં હોય તેઓ કુછ વિષાક્તાને જો હંમેશા પશુપાલનની જાણકારીના અભાવમાં ઈ રહી જાય છે અને પશુપાલક કુછ સાવધાનીઓ રાખે અને પશુઓને ઈઓના પ્રભાવથી વસાડીને રાખી શકે તો એ વિષાક્તા એવી રીતે છે. સમય નાઇટ વિષાક્તા, નાઇટ્રેટ વિષાક્તા અને યુરિયા વિષાક્તા, સાયનાઇટ વિષાક્તા યા વિષાક્તા મુખ્ય એવા સારા સેવન કરવાથી થાય છે જેનમાં સાયનોજેનિક ગ્લુકોસાઇડ રહેશે અને એના ગ્લુકોસાઇડ પર સારા ન અને રૂમેનમાં મોજૂદ એન્ઝાઇમની ક્રિયાથી હાઇડ્રોસાયનિકનો અમ્લ નીકળે છે ત્યાં વિષાક્તા રહેશે ઝેરીલા. અને સાયનાઇડ વિષાક્તામાં ઓક્સિજનના વાહક એન્ઝાઇમ્સ પ્રભાવિત થવાને કારણે શરીરના ઉત્તકોમાં ઓક્સિજન નિપુગવા દે તેથી તેમાં દમ ઘોટવાથી પશુ

0: नाइट्रोजन हानिकारक नहीं रह से, जबकि 0.45% ज्यादा मात्रा ज्यादा जहरीली रह से। इना तरह थी पीवाना पानी में 100 ppm नाइट्रेट अने नाइट्रेट 10 ppm नाइट्रेट नाइट्रेट ने हानिकारक नहीं रह से। पुन 300 ppm नाइट्रेट नाइट्रोजन युक्त पड़वा थी सेवन थी विषाक्तता अने जहर वाल जहरीली थाई जैसे। तो किसान साथियों इना लक्षण नाइट्रेट विषाक्तता रेवा पर पशु नी हाह अने नाड़ी दर बढ़ी जाए से, हाह लेवामां कठिनाई अने मांसपेशियोमां ऐठन अने कमजोरी आवी जाए से। पशु आपणा शरीरने पेटनी तरफ घुमाड़ीने लटकाड़ नाखे से अने मों खुल्लुं राखीने हाह ले से। ऑक्सिजननी कमी थवाने कारण आँख नाक अने श्लेमा झीली गहरा रंगनी थई जाय छे। विषाक्तानी तीव्र अवस्थामां खूननो रंग रातो अने चॉकलेटी भूरो थई जाय छे अने इनथी पशुनी एक थी चार घंटामां मोत थई जाय छे। तो किसान साथीओ इनो उपचार मेथिलिन ब्लू ना 1% क्यूलियन नी 50-100 ml मात्रा हुदो ही नस मा आल देवी जोई। एस्कार्बिन एसिड 5 mg प्रति किलोग्राम शरीर ना भार ना अनुसार नस मा आल वी जोई। वसाओ तो किसान साथियों नाइट्रेट युक्त सारा नी थोड़ी थोड़ी मात्रा आलतू रहू अने लगभग 1 महीना मा इहुनी मात्रा बढ़ाई जाई सके। नाना हुकीन एठ्यो पर पीला मुरझायला अने पौधा ने सारा ना रूप में उपयोग नहीं करवो जोई। यूरिया विषाक्तता तो किसान साथियों लीला सारा ने दाणा नी कमी ने कारण पशुओं ना निर्भरता हुकेला रेशेदार सारो पर बढ़ी जाए से। इना प्रकार थी सारा नी पौष्टिकता बढ़ावा हारू सबथी बढ़िया हस्ती सरल अने कारगर विधि से यूरिया उपचारित सारो। यूरिया उपचारित करता समय किसान भाई ने यूरिया ना घोल ने ठीक तो नहीं मिलाई जाए अने पशु ने द्वारा यूरिया नो घोल भी पी जाए से अने यूरिया उपचारित सारो ज्यादा मात्रा में खाई जाए से अने पशु ने यूरिया विषाक्तता तीना कारण खाई जाए से। यूरिया विषाक्तता नो रक्त में अमोनियम नी मात्रा बढ़ी जाए से तीने कारण यूरिया रूमेन में पूगी ने अमोनिया में बदली जाए से। तिनथी रूमेन में मौजूद जीवाणु उपयोग में ली ने जीवाणु प्रोटीन बनाई ले से। पुन यूरिया नी ज्यादा मात्रा थी सेवन करवा थी ज्यादा मात्रा में बनेलो अमोनिया पूरी तरह थी जीवाणु प्रोटीन बनावा में उपयोग में नहीं आई पाए। रूमेन द्रव में अमोनिया नी मांग बढ़ी जावा थी रूमेन नो पीएच बढ़ी जाए से अने अमोनिया नो अवशोषण भी बढ़ी जाए से। तिनथी रूमेन द्रव मा अमोनिकल नाइट्रोजन बढ़ी जाए से अने रूमेन मा जीवाणु प्रोटीन प्रोटील ना संश्लेषण हारू अमोनिकल नाइट्रोजन मात्रा 5-7 mg थी लगाड़ीने 1000 mg रेवी जोई। पुन विषाक्तानी स्थिति में रूमेन द्रव में यो 80 mg थी लगाड़ी ने 100 mg रक्त में 0.7 थी लगाड़ी ने 0.8 mg 100 mg थाई जाए से। तो इना लक्षण तो किसान साथियों यूरिया विषाक्तता थी पशु बेचैन रहे अने सुस्त थाई जाए, मोथी ज्यादा मात्रा में लाल टपकवा लागे अने मांसपेशियों में ऐठन थावा लागे अने पशु लड़खड़ावा लागे लथड़वा लागे। तो किसान साथियों पशुओं ने आफरो थाई जाए अने हाह लेवामां भी काफी कठिनाई आवा लागे। पशु बार बार पेशाब अने गोबर करतो रहे अने यूरिया ज्यादा मात्रा में सेवन करवाथी पशुनी वेगी मृत्यु थाई जाए छे। उपचार तो किसान साथियों यूरिया विषाक्तताना लक्षण प्रकट थाता ही पशु ने सबतु पहेलू 25-30 लीटर टाडू पानी पीवाड़ू जोईए। पानी में थोड़ो गोल अने शीरा मिलावाथी पशु आसानी तो पानी पी ले से। होथी 200 ml एसिटिक एसिड सिरका 2-5 लीटर पानी में मेलवी ने पीवाड़ू जोईए। વિષાક્તના પ્રભાવના અનુસાર સિરકાની માત્રા ભી બઢાઈ જાય શકે. તો કિસાન સાથીઓ, વસાવ અગર વસાવ કરવો હોય તો ચારા ઉપસારિત કરવા હારું ઉપયોગમાં લઈ જવાવાળા યુરિયાના ઘોળને પશુથી સેટી રાખવાનું અને સારાને યુરિયા ઉપસારિત કરતા વખત સાવધાની બરતવાની અને યુરિયાની નિર્ધારિત માત્રાનો ઉપયોગ કરવાનો. સારામાં યુરિયાના ઘોળને ભલી ભાતિ મેળવી દેવાનું. ઉપસારિત સારાને થોડી થોડી માત્રામાં અને સામાન્ય સારાને હાથે મેળવીને ખવાડવાનો. ઉપસારિત સારાની હાથે પશુઓને પર્યાપ્ત માત્રામાં પાણી મેળવીને આલવાનું. ઉપસારિત સારાની હાથે પશુઓને પર્યાપ્ત માત્રામાં પાણી પીવાડવાનું. પશુપાલક ભાઈ ધ્યાન રાખવાનું કે તીહુના પશુ કમ બળેલી અને હુકેલી જુવાર, બાજરા, સરી, મકઈ આદિની ફસલીઓને ખવાડવાનું. યુરિયા ઉપસારિત કરતા વખત યુરિયાની સહી માત્રાનો પ્રયોગ કરવાનો અને યુરિયા ઉપસારિત સારાની માત્રા આહારમાં ધીરે ધીરે બઢાવતું જવાનું. તો કિસાન સાથીઓ, મેં હમણાં તમને પશુઓમાં ખાદ્યજન્ય વિષાક્તા કારણ અને તેના નિદાનની જાણકારી હમણાવી.
1: હું છે આરજે રાકેશ
2: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર.
1: તમે સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી, આપણા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર. તો સાલો કિસાન ભાઈઓ, હાવ લઈએ એક નાનો બ્રેક અને સાંભળી લઈએ આપણા ઝાબવા જિલ્લામાં આદિવાસી સમુદાયમાં જે લાડ લાડિયા પહેણે અને તીનમાં જો ગાવે ત્યું ઘણું મજાનું અને અસલ ગીત સાંભળીને પાછા ભેળા થા હું કાર્યક્રમ ખેતીવાડીમાં. જાજોમતી કિસાન ભાઈઓ કઈ થા હમલતા રેજો ઝાબવાની આવાઝ પર સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM.

Oh, my God.

0: आज यादों के सफर पर चलते हैं और बुलाते हैं डॉक्टर दीपा वंजानी को। तो डॉक्टर दीपा वंजानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग पेट्स के संग पे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
1: थैंक यू मच। आई एम फीलिंग वेरी नाइस। टॉकिंग अबाउट पेट्स इज ऑलवेज, यू नो, बहुत दिल के करीब है ये टॉपिक, तो हैप्पी टू बी हियर।
0: हमारी यही कोशिश होती है कि हम पेट पेरेंट्स से कनेक्ट करें, आप जैसे पैशनेट पेट पेरेंट्स से कनेक्ट करें, जिनके लिए पेट्स सिर्फ एक क्रीचर नहीं है, वो सच में उनके बच्चे हैं। मेरी आवाज एको हो रही है, मेरी आवाज एको हो रही है। हेलो, मैं दोबारा कॉल करूं? ये मेरी आवाज एको हो रही है। हाँ, और पीछे घड़ी की टिक टिक आ रही है, पता नहीं।
1: तो मैं टिक टिक हटा देती हूँ घड़ी की।
0: हाँ, और अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ तो नहीं हो रही, बीच में हो रही थी एको।
1: ओके,
0: मैं दोबारा कॉल करती हूँ।
1: ओके
0: ओके ओके। तो डॉक्टर दीपा वंजानी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज हमारे SN रेडियो पर कनेक्ट होकर, हमारे नए प्रोग्राम जिंदगी के रंग पेट्स के संग पर?
1: हेलो तनुषा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। क्योंकि ये प्रोग्राम जो है पेट से रिलेटेड है, एनिमल है, दे ऑलवेज माय हार्ट, सो आई एम वेरी हैप्पी बीइंग हियर टुडे।
0: वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी होस्टिंग यू मैम, बिकॉज हमारी यही कोशिश रहती है हमारे स्पेशल सेगमेंट में, जिसमें जिंदगी के रंग पेट्स के संग में हम उन पेट पेरेंट्स से कनेक्ट होते हैं जो बहुत पैशनेट है अपने पेट्स को लेकर और बहुत प्यार करते हैं, प्यार करा है उन्होंने अपने पेट्स को, और उनका जीवन हमेशा एनिमल से सराउंडेड रहा है, और उनके पास एक सोच है, एक समझ है पेट्स को लेकर, एक एनिमल्स को लेकर, जो हम चाहते हैं कि हमारे लिसनर्स तक पहुंचे, ताकि वो उनकी तरफ थोड़े और संवेदनशील हों, थोड़े और समझ आए उनको, और थोड़े और यू नो सिंपथेटिक हो। अगर आप पेट ओन नहीं कर सकते, कम से कम इन जीवों को, इन जानवरों को आप रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं और उन्हें हार्म ना करें, ये कोशिश तो कर सकते हैं। तो यही हमारी कोशिश रहती है जिंदगी के रंग पेट्स के संग पर। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। डॉक्टर दीपा, आपके पास कौन से पेट्स रहे और उनके नाम क्या थे?
1: मेरे पास दो पेट्स रहे। एक डैशंड था जिसका नाम मैंने नेस्टर रखा था, वो मेरा फर्स्ट डॉग था, एंड एक जर्मन शेफर्ड जिसका नाम शेरी था।
0: तो आपके जीवन में नेस्टर और शेरी किस तरह से आए? क्या कोई कॉन्शियस डिसीजन था, या बाय फ्लूक था, या कौन सी किस तरह की जर्नी रही नेस्टर के आपके जीवन में आने की, एंड देन शेरी के आपके जीवन में आने की, अगर आप थोड़ा सा शेयर कर सकें हमारे साथ एक्सपीरियंस?
1: मुझे डॉग्स बचपन से बहुत पसंद थे, और मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे। जिस भी जगह हमारा ट्रांसफर होता था, एक स्ट्रीट डॉग को मैं खाना दे देके और घर के आसपास गेट पर, वरांडे में, गार्डन में, ऐसा धीरे धीरे ले आती थी। तो ऐसा करते करते, बिकॉज मेरी मम्मी को बहुत पसंद नहीं थे डॉग्स, फाइनली 1998 में आई रिमेम्बर कि मैं बहुत जिद पर थी कि आई वॉन्ट अ डॉग, एंड स्टिल मम्मा पुट अ फुट डाउन एंड उस समय मैंने जॉब जस्ट स्टार्ट किया था कॉलेज में पढ़ाना। मेरे एक कॉलीग थे बॉटनी डिपार्टमेंट में, जिन्होंने मुझे एक दिन कहा कि एक डैशॉन्ड है, उनकी एक फ्रेंड है मिस्टर जेम्स करके, वो सेल कर रहे हैं। मैं कॉलेज से बिना सोचे शाम को उनके साथ चली गई, नेस्टर को पिकअप किया और मैं घर ले आई। और फिर जो घर में हुआ वो यू कैन इमेजिन, दैट सिंपल किया तुम रहोगी या नेस्टर, दोनों बाहर हो जाओ टाइप्स ऐसा। तो नेक्स्ट डे फिर ये रोना धोना करके मेरी फ्रेंड को बोला गया कि इसको साथ ले जाओ और इसे वापस कराओ।
0: ओहो।
1: तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड काइनेटिक पे नेस्टर को एक बास्केट में डालकर ले जाने लगे वापस, एंड आई वॉज अ लिटिल नॉटी हियर, सॉरी। आधे रास्ते पे हम, मैंने और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम घर जाते हैं वापस, और ये बोलते कि मिस्टर जेम्स तो हमें मिले ही नहीं, और वो तो लंबे समय के लिए बाहर गए, और ऐसा करके हम नेस्टर को वापस ले आए।
0: वाओ।
1: सो फाइनली ही केम, एंड फिर ग्रेजुअली ऑफ कोर्स मम्मी को भी उससे प्यार हो गया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया
0: जी।
1: और शेरी का ऐसा हुआ कि मेरे घर पढ़ने आती थी एक लड़की और उनके घर में रॉटवाइलर और जर्मन शेफर्ड दोनों मेल फीमेल पले हुए थे। उनका बहुत बड़ा गार्डन था, उन्होंने बहुत स्पेस क्रिएट की हुई थी उनके लिए। तो उन्होंने मुझे

0: वापस उसको देने का मन नहीं हुआ, तो फिर शेरी आ गई घर. इस तरह से शेरी वो आप बोले तो नीलम नाम था उनका, नीलम भाभी की गिफ्ट थी.
1: वाह, कितनी खूबसूरत कहानियाँ और कितनी प्यार भरी शरारत भरी कहानियाँ. नेस्टर का आना तो मैं सोच सकती हूँ किस तरह से, जब मम्मी नाराज थी, मम्मी नहीं मान रही थी, तो कैसा माहौल रहा होगा. मैं बहुत पर्सनली इस एक्सप्रेशन को समझ सकती हूँ, इस एक्सपीरियंस को समझ सकती हूँ. तो खैर अच्छा हुआ कि आपने वो नॉटीनेस दिखाई उस समय, वरना शायद आपकी पेट पेरेंट बनने की जर्नी शुरू नहीं होती. एंड शेरी ऑफकोर्स वो तो ऐसा लगता है जैसे उसने आपको चूज किया. And she was the chosen one and she had to come and land in your house. तो बहुत ही खूबसूरत बातें हो रही हैं. इन्हीं एहसासों के साथ दोस्तों सुनेंगे हमारा पहला गीत. कुछ रिश्ते बिना कहे दिल में बस जाते हैं, उतर जाते हैं और रह जाते हैं, और फिर जिंदगी जिंदगी भर हमारा साथ देते हैं. चलिए सुनते हैं वो साथ ही चल.

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक दीपा जी।
1: यस तनुषा,
0: आगे चलते हैं। आई एम श्योर, क्योंकि जब आपका पहला पेट आपके घर में आया तो आपकी मदर रेडी नहीं थे, घर का एनवायरमेंट रेडी नहीं था, एंड देन इवेंचुअली दूसरा पेट भी आया, जैसे आपने बताया फ्लैट में आप रहते हैं, तो किस तरह के आपको चेंजेस लाने पड़े अपने जीवन में इन पेट्स को अपने घर में एक सेफ स्पेस देने के लिए, और क्या कोई ऐसा वाक्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहें दोनों पेट्स के साथ जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपसे भूले नहीं भुलाया जाता और आज भी जब वो आपके जहन में आता है तो आप हंस पड़ते हैं और खुशी के आंसू आ जाते हैं।
1: मैं क्योंकि वर्किंग पर्सन हूं तो मुझे ये थोड़ा स्ट्रेस होता था इनिशियली, कि पहले जब नेस्टर था तो नेस्टर अकेला घर में, जब मेरी मम्मी पास्ट हुई तो फिर नेस्टर को अकेला घर में छोड़ के जाना मेरे लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल होता था। मैं जब जॉब पे जाती थी तो थैंकफुली मेरी मेड बहुत अच्छी थी और उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मेरे एब्सेंस में वो लंबे समय तक घर में रुकती थी और नेस्टर की देखभाल करने के लिए। और जब शेरी आ गई तो ये रहा कि नेस्टर ने धीरे से शेरी को एक्सेप्ट भी कर लिया क्योंकि, और फिर डिस्पाइट द डिफरेंस इन साइज दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई तो दोनों एक दूसरे की कंपनी में हैप्पी रहते थे। और फिर भी माय मेड मेड इट अ पॉइंट कि वो ज्यादा समय घर में रुककर उनकी देखभाल करके और फिर शी इज टू लीव। तो इस तरह से थोड़ा ये चेंज करना पड़ा कि मेड के वर्किंग आवर्स मुझे बढ़ाने पड़े और गर्मी के मौसम में घर को प्रॉपर ठंडा रखना, क्योंकि मैं अगर आफ्टरनून में बाहर हूँ कॉलेज में तो जिस रूम में नेस्टेशरी बैठे हैं उसको सफिशिएंटली कूल रख के जाना कि वो कंफर्टेबल रहे, डिस्कम्फर्ट नहीं हो, क्योंकि फिर आजकल गर्मियां बहुत होने लग गई तो ये इंश्योर करना, ये पानी सफिशिएंट भर के जाना उनके वेसल्स में, ये जरूर था, ये मैं बहुत ध्यान रखती थी। और विंटर्स के लिए भी जस्ट दी रिवर्स, कि उनकी दोनों की बेड्स थे सोने के लिए तो उसमें प्रॉपर ब्लैंकेट बिछा के जाना ताकि वो वार्म रहे, सोते रहे। तो ये छोटे छोटे जो है ये बातें ध्यान में रख के थोड़ा, क्योंकि एटीट्यूड बचपन से ऐसा रहा कि पसंद थे डॉग्स तो ऐसा नहीं था कि मैं कोई मेरे लिए लायबिलिटी है या एक्स्ट्रा है, मैं बहुत खुशी से रियली एंजॉयड व्हाटएवर आई डिड फॉर देम, बट मेरा बेस्ट ये एफर्ट था कि मैं उनको कंफर्ट देना चाहती थी हर तरह से। और मुझे ये याद है कि नेस्टर क्योंकि डैशॉन था तो वो हाइट में छोटे से रहते हैं एंड नेस्टर पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट तो, और वो बहुत चूजी था खाने के लिए तो उसको चिकन और रोटी चाहिए, उसको पपीता और रोटी चाहिए, बहुत डायमेट्रिकली ओपोज, कहाँ चिकन और रोटी और कहाँ पपीता रोटी, पर उसको यही चाहिए और मैं वेजिटेरियन तो पर इन दोनों को रोज एक बॉइल्ड एग देना, चिकन लेकर आना तो मैं देती थी नेस्टर को। और फिर नेस्टर जो है वो थोड़ा सा ये दिखाता जरूर था कि बहुत रोबिला है पर था नहीं। एक्चुअली क्या होता था, हमारे घर में बिल्ली आती थी फिर बिल्ली, उसका नाम मैंने जेबा रखा था और वो इवेंचुअली जेबा के बच्चे भी हुए तो अपने दो बच्चों को भी ले आई, उनका नाम मैंने इंकी और पोंकी रखा था
0: जी।
1: अब ये रोज खाना खाने आते थे, अब नेस्टर का जस्ट मैंने खाना रखा था और जेबा आई और उसने मुंह डाला नेस्टर के कटोरे में, नेचुरली चिकन रोटी थी और नेस्टर ने थोड़ा सा गुस्सा भी किया, पर जस्ट इमेजिन कि एक बिल्ली एक डॉगी के सामने उसके खाना खा जाती है, और जब नेस्टर उसको मना कर रहा है खाने के लिए तो जैसे कि बिल्ली होती है ना स्पैंकिंग करती है, शी लिटरली स्पैंक्ड नेस्टर, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। एंड नेस्टर जस्ट दिस इज गिवन यू नो
0: आई
1: एंड
0: नो
1: मजे से सेबा ने उसका पूरा खाना खाया एंड देन शी लेफ्ट। तो
0: जी
1: ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें, सम ऑफ देम आर रियली फनी।
0: ओह माय गॉड
1: नेस्टर एंड शेरी की साइज में क्योंकि डिफरेंस था, नेस्टर से शेरी का 1/4 भी नहीं था साइज में,
0: जी जी
1: वो रेड रॉटवाइलर और जर्मन शेफर्ड की क्रॉस थी। अब जब मेरे को आदत सोफा पे लेटने की हॉल में टीवी चला के, तो नेस्टर हॉप करके मेरे साथ बैठ जाता था। जब शेरी आई तो नेचुरली वो भी हॉप करके चढ़ जाती थी। अब आप सोचो कि एक सोफा पे एक जर्मन शेफर्ड, एक डैशन और एक मे,
0: मैं जी
1: और होना उनको मेरे साथ।
0: जी
1: तो अब वेन नेस्टर रियलाइज की ये स्पेस अब शेरी भी शेयर करेगी,
0: जी
1: ही वुड ग्राउल एंड हर एंड टेल हर कि तू जाके पैर के पास बैठ, जो बाकी जगह है वो मेरी है। तो
0: जी
1: उसका फिक्स्ड स्पेस था और वो वहीं बैठता था, पर उसने शेरी को पुश करके उसकी जगह वहां फीट के
0: ओ
1: पास जाके बैठा। ऐसे दोनों गोलमोल होके बैठ जाते थे।
0: जी
1: हाँ
0: बताइए कितना क्यूट और कितने अमेजिंग इंस्टेंसेस हैं ये. मैं पूरा इमेजिन कर सकती हूँ ये सीन, जैसे कोई एक एनिमेटेड फिल्म चल रही है एंड द कैट कम्स एंड टेक्स द डॉग्स फूड एंड स्पैंक्स द डॉग एंड डैशन बीइंग डैशन दे आर सो अडोरेबल. एंड अगेन शेरी कितनी गिविंग थी कि बीइंग डबल ट्रिपल द साइज वो फिर भी मान गई और वो नीचे आके आपके पैरों पे सोने को मान गई, वरना तो कोई और डॉग होता वो शेयर साइज से ही डराने की कोशिश करता. तो आई थिंक शेरी वॉज अ वेरी गिविंग डॉग एंड नेस्टर वॉज दिस माचो मैन. सो बहुत ही प्यारे इंस्टेंसेस है मैम. इसी से आगे चलते हैं मैम थोड़ी सी सीरियस टॉपिक पर, कि आपके हिसाब से बिकॉज आपने पेट्स आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आपके पास पेट्स रहे, काफी समय आपके साथ, अगर आप शेयर कर सकें कि नेस्टर और शेरी रिस्पेक्टिवली आपके साथ कितने समय तक रहे.
1: नेस्टर वॉज देयर फ्रॉम 1999 टू 2013 तक, और शेरी 2005 से लेके 2016 तक।
0: वाओ दैट्स क्वाइट सम टाइम. एंड उसके
1: क्वाइट सम
0: अलावा
1: टाइम।
0: भी आप जी उसके अलावा भी आप काफी स्ट्रे एनिमल्स को भी, स्ट्रे डॉग्स को भी फीड करते हैं, कैट्स को भी फीड करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं. और बिकॉज आप इतना जुड़े हैं पेट केयर से, इतने आई थिंक आप पेटा के भी मेंबर हैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दैट आई हैव नोन यू. यू बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ पेटा, PFA एंड अदर सच NGOs. तो आपके हिसाब से पेट केयर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें.
1: हाँ, स्ट्रे एनिमल्स के साथ तो बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है। एज आई टोल्ड यू, चाइल्डहुड में भी आई यूज टू डू, और दिस इज वेरी फनी स्टोरी आई वॉन्ट टू शेयर अबाउट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेज। तो कि जब हम लोग जबलपुर में थे, मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में थी, और वहां एक डॉगी हमारे गार्डन में, उसको मैंने जगह दे दी थी। वो एक क्यारी में बैठी रहती थी और खाना वाना खाती थी, और उसको जब पपीज हुए तो उसको दो ही पपीज हुए, वन ऑफ देम डाइड और एक ने सर्वाइव किया। और वो बहुत एक्सट्रीमली क्यूट पपी था, मतलब लिटरली आप ऐसा एक टेडी बेयर को उठा के कैसे रोली पोली टाइप्स, तो वैसा। अब वो घर में उसको खाना अच्छा मिलता था, तो वो अच्छा काली भी अच्छी हेल्दी हो गई थी, पपी भी हेल्दी था। एंड देन वन फाइन डे किसी ने उस पपी को स्टील कर लिया। तो मैं स्कूल से लौटी तो वो नहीं था, और फिर मेरा रोना धोना एज यूजुअल एनिमल्स को लेके स्टार्टेड। एंड देन माय फादर केम बैक फ्रॉम ऑफिस एंड ही सेड कि क्या हुआ। देन मैंने सारी स्टोरी जब नरेट की, तो वो एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, दिनों तक
0: जी
1: गाड़ी उठाकर मुझे बिठाकर शाम में ऑफिस से आके उसको ढूंढवाने के लिए आसपास मुझे ले जाते थे।
0: जी
1: और हमारे घर काम करने के लिए, जैसे बाहर के काम, गार्डन वगैरह एक आते थे व्यक्ति,
0: जी
1: वो कई बार उनको भी हम साथ में ले जाते थे। और वन फाइन डे उन्होंने आके बताया कि एक घर उन्होंने स्पॉट किया है जहाँ पे उन्होंने इस पप को देखा है। आई थिंक 5-6 दिन तक हो चुके थे
0: जी।
1: और फिर वहां से जाके पापा और वो दोनों जाके उस पपी को वापस घर ले आए।
0: वाओ।
1: तो हाँ जी, तो ऐसा सपोर्ट मेरे फादर ने भी दिया मुझे। आई थिंक वो बहुत एक बड़ा फैक्टर था कि एक स्ट्रे डॉग के पप के लिए उन्होंने इतना एफर्ट किया।
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो वहां से ये इतने दिनों तक, तो आई थिंक वो जो एम्पथी ऑलरेडी थी वो और डीप सीटेड हो गई। और फिर वो लाइफ लॉन्ग है, अब तो आई गो आउट लाइक एवरी डे, 35-40 डॉग्स है मेरे रोज के।
0: वाओ।
1: तो आई फीड देम एवरी डे, इट्स बीन इयर्स। उनकी भी अब 3rd, 4th, 5th जनरेशन हो गई। बट आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग। या और बीच में ऐसा मुझे एक एपिलेप्टिक डॉग मिला था सड़क पे, एंड बहुत बुरी कंडीशन में जब वो मुझे पड़ा मिला तो उसका मैंने ट्रीटमेंट करवाया। और फिर पता चला कि उसको एपिलेप्सी है। तो लंबा ट्रीटमेंट होने पर उसकी कंडीशन बहुत अच्छी हो गई, पर उसके फिट्स बंद नहीं हुए आना। तो वो भी करीब 1.5-2 साल घर में रहा। उसका नाम मैंने ब्राउनी रखा था।
0: जी।
1: या
0: जी।
1: एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन की पेट केयर के लिए कौन सी बातें, तो पेट केयर, पेट्स का टेम्परमेंट जो है वो अलग अलग होता है। एंड ब्रीड के हिसाब से भी इट्स डिफरेंट।
0: राइट।
1: समटाइम्स जेंडर का भी, मतलब फीमेल मेल सेक्स का भी फर्क पड़ता है।
0: राइट।
1: तो वी हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि इनकी भी एक साइकोलॉजिकल सेटअप है और एक इमोशनल सेटअप भी है। तो दे डोंट लाइक बीइंग लेफ्ट अलोन।
0: राइट।
1: दे डोंट लाइक बीइंग सॉर्ट ऑफ यू नो निग्लेक्टेड।
0: राइट।
1: इनको भी जैसा फैमिली का मेंबर कैसे होता है कि हम बच्चे को, व्हेन वी आर ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड, तो हम उसकी कंडीशनिंग करते हैं।
0: Right.
1: वैसे हमें उस पेट को भी कंडीशन करना पड़ता है। तब वो हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट बन जाता है।
0: राइट।
1: इसमें कोई डॉग ट्रेनर की जरूरत नहीं हमें। केवल हमारा खुद का हमारे पेट के साथ जो रिलेशनशिप है, जिसमें पेट को ये पता होना चाहिए कि ये गलत किया मैंने तो मुझे यहाँ पे डांट पड़ेगी।
0: राइट।
1: ये उसको क्लियर कट पता होना चाहिए। एंड देन यू सी दिस बिकम्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप।
0: राइट।
1: मेरे को याद है शेरी को अगर गुस्से में मैं सिर्फ देखती थी तो उसको ये पता होता था कि ये उसने गलत किया है। वो डाइनिंग टेबल के नीचे जाके छुप के बैठती थी जब तक मैं उसको आवाज दे के बाहर नहीं बुलाती थी। तो ये अंडरस्टैंडिंग पेट में होती है। ये बहुत सटल है पर ये उनके मेंटल मेकअप को हमें समझने, इट्स नॉट जस्ट एन एनिमल यू नो कि वो तेल वैक करेंगे और यू नो हम उनको थोड़ा सा खिलाएंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे तो इट्स डन।
0: राइट।
1: इट्स नॉट दैट वी आर नॉट ओब्लाइजिंग देम एक्चुअली।
0: राइट।
1: हम उसको क्योंकि घर लेके आए हैं तो हमें ये तो करना ही पड़ेगा, खिलाना, घुमाना, वैक्सीनेशन करवाना। वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लापरवाही कभी नहीं करना चाहिए। जो डॉक्टर बुक बना के देता है वैक्सीनेशन कार्ड, उसमें ध्यान रखना रह चाहिए कि 7-in-1 आजकल 9-in-1 लगता है। तो एंटी रेबीज कब लगा, बूस्टर कब लगाना है, डीवर्मिंग कब करानी है, डीवर्मिंग टाइम से करवाना। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दी स्मॉल थिंग्स, यू कांट लेट देम गो। और कोई भी सिम्टम ऐसा जो लगे कि ये सीरियस प्रॉब्लम है,
0: राइट,
1: स्ट्रेट अवे वेटनरी को अप्रोच करना चाहिए। एंड अपने नुस्खे ही घर में कर लेंगे ये टाइप, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी टैबलेट का साइड इफेक्ट हमारे पेट को होगा।
0: बिल्कुल।
1: सो ये थोड़ा सा केयरफुल होके, या तो हम फोन करके अपने वेट से पूछ लें कि ये, या अगर ले जा सकते हैं तो ले जाएं, और पानी सफिशिएंट क्वांटिटी में, साफ क्लीन वाटर, एंड मौसम के हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट जहां आपका पेट बैठता है, नॉट टू मच वार्म्थ, नॉट वो टॉलरेंस के लेवल के बियॉन्ड वाला टेम्परेचर, या वो नहीं चाहिए। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें उनकी वेलबींग के लिए, हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हाँ जी,
0: बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपने हमारे साथ साझा की. और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे लगी कि हाँ, कई बार हम लोग सिर्फ इतना ही समझते हैं कि पेट का मतलब है कि उसको दो टाइम का खाना दे दिया, कोई घुमाने ले गया, कभी घुमाने नहीं ले गया. बट उसके साथ जो टाइम स्पेंड करना है, जो उसको कंडीशन करना है, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना है, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया. साथ ही कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें अपने पेट का, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस तरह से कौन सी मेडिसिन वर्क करेगी. सेल्फ मेडिकेशन वैसे ही बहुत खराब चीज है, और अपने पेट के साथ तो आप ये बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं. ह्यूमंस झेल लेते हैं, बट शायद पेट नहीं झेल पाए. मैम, आगे चलते हैं. आजकल बहुत सारे लोग पेट्स अडॉप्ट भी करते हैं और पेट ओनर्स भी बनते हैं, एंड एक तरह से एक फैशन फैड हो गया है. और इंस्टाग्रामेबल पिक्चर्स के लिए लोग पेट्स ओन करते हैं, ये जाने बिना, ये समझे बिना कि एक पेट को घर में लाना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो एक एक तरह से एक बच्चे को घर में लाना जैसा एक एक्सपीरियंस है, आपके लिए भी और पेट के लिए भी. तो आप कोई अगर एडवाइस देना चाहें इन नए पेट पेरेंट्स को, और क्या आपको लगता है कि घर में जब बच्चे होते हैं तो पेट्स के आने से कुछ बेनिफिट्स होते हैं? किस तरह से पेट्स आसपास जो बच्चे हैं घर में, उनको पेट्स घर में होने से उन पे फर्क पड़ता है, उनकी ग्रोथ, उनकी साइकी में चेंजेस आते हैं? तो ये अगर आप एड्रेस कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं कि पेट्स अनसेफ हैं बच्चों के लिए, एलर्जीज एक्सेट्रा, बहुत सारे मिथ्स भी हैं, कुछ चीजें सच भी हैं. तो आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है, पेट्स और बच्चे साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं?
1: आई थिंक अगर हम हमारा पेट जो है, हम उसको बहुत क्लीन रखते हैं, एक क्लीनलीनेस रेजीम होता है एक पेट का भी, तो उसका बेदिंग का डे और टिक्स वगैरह, क्या क्लीनिंग करना, ये जो भी पेट्स रखते हैं, ये सब बेसिक बातें उनको शायद पता भी होंगी कि उनका कोट क्लीन रखना और बग्स एंड टिक्स एंड लाइस से फ्री रखना, और बेडिंग कितना इम्पोर्टेंट करके, और फिर उनको ड्राई रखना। अगर हम अपने पेट को क्लीन रख रहे हैं तो, और वो प्रॉपर कई कई आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीबॉडीज दिस थिंग, बट कई बार ऐसा है कि पेट जब निग्लेक्टेड होता है, हम घर के बाहर उसको बांध के रख देते हैं या वॉचमैन के साथ उसको बिठा देते हैं, तो वो एक गार्ड साहब का जो कमरा रहता है किसी भी बंगलो के में, उसमें डॉग बैठा रहता है या गेट पर रहता है, फॉर वॉट एवर रीजन उसको घर में एंट्री नहीं होती, तो मतलब आई पर्सनली फील कि मैं एक शो पीस ले आई और मैंने उसको शो के लिए घर के बाहर, क्योंकि या तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए थी मेरे बंगलों की इसलिए, या मे बी स्टेटस सिंबल समझ के या फैशन समझ के, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, तो इसमें फिर बॉन्ड स्टैब्लिश नहीं होगा। तो बॉन्ड, पेट तो बेचारा लॉयल है, वो तो फिर भी मुझे देखकर खुश होगा, मुझे ग्रीट करेगा, पर मेरा एक अटैचमेंट उसके साथ नहीं होगा। फिर ऐसे में जब किड्स हैं घर में, तो मैं किड्स को फिर वो पास ऑन नहीं

0: कर पा रही हूँ बॉन्डिंग,
1: राइट
0: क्योंकि वो डिस्टेंस वो बचपन से देख रहा है ना कि वो तो आउटसाइडर जैसे बाहर है,
1: राइट
0: तो वो एक जो केयरिंग, एक एम्पथी, एक अटैचमेंट वो डेवलप नहीं हो पाता।
1: राइट
0: तो पेट अगर है तो उसको फैमिली के मेंबर जैसा क्लीन रखिए, उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन करवा के, उसकी डाइट अच्छी हेल्दी रखिए, उसको हम अच्छा घर में रखें, अच्छा एनवायरमेंट दे।
1: राइट
0: वो किड्स के साथ बहुत जेल करते हैं एंड बहुत नर्चरिंग एटीट्यूड बच्चों में डेवलप होता है पेट्स के साथ जब वो ग्रो होते हैं, तो
1: ट्रू
0: क्योंकि वो गिविंग सीखते हैं।
1: ट्रू
0: समटाइम्स यू नो सिंगल चाइल्ड होता है फैमिली में, और ऐसे में ये और भी अच्छा है कि घर में पेट है तो वो एक कंपेनियन भी है और एक शेयरिंग वाला बॉन्ड भी बच्चों से डेवलप कर लेता है।
1: राइट
0: तो बहुत सारे इमोशंस शायद जो अपने सिबलिंग के साथ शेयर कर रहा होता वो पेट, बट समहाउ वन वे और दी अदर वो शेयरिंग एंड केयरिंग वाला एटीट्यूड डेवलप होने लगता है।
1: राइट
0: पेट्स इतने अनकंडीशनल गिविंग करते, सारे पेट लवर्स को ये वन कॉमनली रिपीटेड लाइन है शायद,
1: राइट
0: वो अनकंडीशनल गिविंग एंड लव है। तो ये जब हम इम्बाइब करते हैं अपने अंदर और बचपन से अगर करें तो आई थिंक इट्स वेरी गुड, क्योंकि ये बहुत रिच ह्यूमन इमोशन है।
1: बिल्कुल,
0: और ऐसा टेंडर हार्टेड क्लीन हार्टेड गिविंग जो एक डॉग आपको देता है,
1: राइट
0: वो अगर हम भी अपने अंदर इम्बाइब कर रहे तो आई थिंक इट्स वंडरफुल, क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बना रहे हैं।
1: करेक्ट।
0: थोड़ा सा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें यू नो समटाइम्स यू नो कुछ हेरिडिटरी हेल्थ इश्यूज होते हैं घरों में एंड फॉर व्हाटएवर रीजन अगर किड्स वो हेरिडिटी वाला कोई भी डिजीज या डिसऑर्डर लेके बॉर्न हुए हैं तो उस सिचुएशन में फिर देन वी हैव टू बी केयरफुल एंड टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस, क्योंकि फिर ये फैक्टर्स जो हैं वो सबका कॉम्प्लिकेशन का लेवल अलग अलग हो सकता है। तो क्या चीज वर्क करेगी या क्या नहीं फिर ये थोड़ा पर्सनल हो जाता है। क्योंकि समबडी, मुझे याद है कि मेरी एक स्टूडेंट वो जिसके यहाँ से मुझे शेयरी आई थी वो सिवियरली एस्थमेटिक थी
1: जी
0: एंड बचपन से बाय बर्थ थी
1: राइट
0: तो वो एस्थमेटिक होने के बाद भी शी हैड टू पेट्स एंड अ कैट एट होम। कैट घर के अंदर ही घुमा करता था, डॉग्स का ये था क्योंकि दे हैड अ बिग स्पेस तो उन्होंने गार्डन में ही दो रूम्स बनवाए हुए थे उनके लिए।
1: राइट
0: तो वो उसकी एस्थमा को ध्यान में रखते हुए दे हैड नॉट दैट कि पेट नहीं था, पेट था, वेरी वेल लुक्ड आफ्टर एंड केयर्ड। वो एक टाइम था जब बच्चे भी उनके साथ खेलते थे गार्डन में जाके, पर थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हुए ये देखते हुए कि घर में एक एस्थमेटिक बच्चा है ऐसा, तो थोड़ा सा ये बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। फैमिली टू फैमिली में बी द सिचुएशन डिफर्स।
1: बिल्कुल
0: या
1: बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि कई बार यू नो जब एक ही बच्चा होता है, और आजकल बहुत सारे लोग नहीं रखते, मतलब दे गो इन फॉर वन चाइल्ड, तो उस वन चाइल्ड को बहुत सारी वैल्यूज जो सिबलिंग ना होने की वजह से जो नहीं आ पा रही हैं, वो एक पेट बहुत इजीली और बहुत ही एफर्टलेसली सिखा सकता है, क्योंकि आप केयरिंग सीखते हो, शेयरिंग सीखते हो, एम्पथी आती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप रिस्पॉन्सिबल बनते हो। तो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपने रेज किए मैम। इसी के साथ मैं आपके एक्सपीरियंस में, कभी ऐसा हुआ कि आप सैड हैं या आप लो हैं या घर की एनर्जी किसी के कारण, किसी चीज की वजह से लो है, और उस मोमेंट में आपके पेट्स ने आपको आके चीयर किया हो, वो कोई ऐसे इंस्टेंसेस अगर आपको याद आते हो? क्योंकि एक बहुत स्पेशल बॉन्ड होता है, और मैंने देखा है स्पेशली डॉग्स बहुत रिसेप्टिव होते हैं एनर्जीज की तरफ। तो किस तरह से, अगर आप अपने पेट्स के साथ कोई ऐसा इंस्टेंस बताना चाहें, शेयर करना चाहें?
0: ये बिल्कुल सच है कि पेट्स आर वेरी रिसेप्टिव, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो एपिसोड्स रहे, पर एक बात तो आई कैन नेवर फॉरगेट, एंड उस समय सिर्फ नेस्टर था घर में, शेरी अभी आई नहीं थी. माय मदर पास्ड अवे इन 2004,
1: जी
0: एंड उस समय जब मेरी मम्मी का हेल्थ जो है डिटोरिएट हुई और फिर उनको हॉस्पिटल ले गए, तो आई वॉज नॉट इन द सिटी, आई वॉज ट्रेवलिंग. पर माई सिस्टर टोल्ड मी कि एक रात पहले नेस्टर बहुत रो रहा था जोर जोर से, एंड नेक्स्ट डे दिस हैपेंड. तो व्हेन आई गॉट बैक, एंड फिर नेचुरली सब रिलेटिव्स वगैरह का आना, तो हम लोग सब हॉल में बैठे थे एंड मैं रो रही थी बहुत. तो एवरी टाइम आई वुड स्टार्ट क्राइंग, नेस्टर आता था, वो लिटरली अपने दोनों पांव खड़े करके मेरे शोल्डर्स तक और मेरे टीयर्स को लिक करता था, एंड देन ही वुड सिट लैप में मेरे. और ये जितने भी मेरे रिलेटिव्स आए हुए थे जिन्होंने ये विटनेस किया, दे कुंट बिलीव दिस. उनमें से कुछ आज भी लोग जो है वो मुझे मिलते हैं, वो नेस्टर उनको याद है, और वो बोलते नेस्टर कैसे तुम्हारा मुंह चाटता था जब तुम रोती थी तुम्हें चुप कराने के लिए, वो कितना सेंसिटिव था.
1: सच में.
0: ये बहुत उन लोगों ने जो बहुत एल्डरली लेडीज जिन्होंने कभी पेट नहीं रखा, जो बहुत एनिमल लवर नहीं भी रहे, उन्होंने भी ये ऑब्जर्व करके ये कमेंट किया.
1: बताइए.
0: हाँ, तो पेट्स रियली कैन बी वेरी अमेजिंग, एंड ये समझ पाना कि ये रो रही है, ये मतलब मेरे तो बियॉन्ड वर्ड्स था कि
1: बिल्कुल.
0: एक डॉग को भी ये समझ में आता है कि कोई जब रोता है तो उसको चुप कराना है.
1: राइट. हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ प्योर. ये बॉन्ड कितना प्योर है, कितना अनकंडीशनल है. सच में उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बट फिर भी वो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, जबकि उनको कुछ मटेरियलिस्टिकली आपसे नहीं चाहिए सिवाय आपके प्यार के. कई बार वो प्यार भी ना मिले, फिर भी वो आपके साथ खड़े रहते हैं और आपको दुखी देखकर आपके लिए ऐसे जेस्चर्स करते हैं जैसे आपने अभी बताया. तो बहुत ही आंखें नम होने वाला एक वाक्य आपने हमारे साथ साझा किया. इसी एहसास के साथ दोस्तों, कुछ लोग, कुछ साथी हमारी जिंदगी में आते हैं और फिर हमेशा के लिए हमारे दिल में, हमारी रूह में बस जाते हैं. चलिए सुनते हैं हमारा अगला गीत. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं.

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं। दीपा जी, मेरा अगला सवाल हमारे आखिरी सेगमेंट से ये है कि आपने इतने सारे एनिमल्स के साथ अपना जीवन बिताया, इतने सारे पेट्स आपके साथ रहे, इतने सारे स्ट्रेज के लिए आप रोज आप उनको फीड करते हैं, उनको सर्विस कर देते हैं, और क्या कोई ऐसा लेसन है? आई एम श्योर एक तो यही लेसन है कि सर्विस का जो लेसन है, द एटीट्यूड ऑफ सर्विस, सर्विटिट्यूड जिसको हम कहते हैं, वो बहुत स्ट्रांगली इम्बाइब हो जाता है। इसके अलावा अगर आप बता सकें कि आपके पेट से आपने कोई लेसन, लाइफ लेसन अगर सीखा हो तो वो क्या है, और बिना पेट्स के अगर आप या बिना स्ट्रेस के आप अपना जीवन इमेजिन कर सकते हैं? कभी एक एक मोमेंट के लिए अगर आप सोचें कि आपकी लाइफ में कोई पेट, कोई एनिमल आपके आसपास नहीं है तो जीवन कैसा होगा, तो अगर इमेजिनेटिवली आप हमें बता सकें और कोई लेसन अगर आप शेयर कर सकें।
1: बिना पेट के तो घर में अब पेट नहीं है एक्सेप्ट द कैट्स जो आती हैं खाना खाने, एटलीस्ट फोर ऑफ देम। पर या पर पेट अगर आसपास नहीं हूं तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा वॉइड है एंड आई नीड माय टाइम एवरी डे विद देम।
0: राइट,
1: हाँ, बिकॉज वो मैंने देखा है कि वन थिंग बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट अ लेसन, समटाइम्स ये भी बीमार होते हैं तो बहुत समय अपन उनका जो ट्रीटमेंट होता है, अगर इंजरी है, वुंड है, अलग तो अपन ट्रीटमेंट करवाते हैं पर कई बार एक एनिमल होता है वो बहुत लंबा टाइम भी लेता है रिकवर करने में।
0: राइट,
1: और वो कभी कभी सिर्फ वेदर कंडीशन से भी होता है, ऐसी कोई बीमारी जैसी बीमारी नहीं होती। पर अगर मैं कार का हॉर्न बजाती हूँ तो मैंने देखा कि वो खाना खाने नहीं आया, क्योंकि वो नॉट फील लाइक ईटिंग टाइप्स है वो पर्टिकुलर डे या टू डेज। पर फिर भी वो जहां भी सो रहा होगा या सो रही होगी वो उठ के आएंगे, मिलेंगे मुझसे, मैं कितना भी कोक्स करूंगी कि खा लो, नहीं खाना, दिल गो बैक, पर वो मिलने आते हैं। ये परसों की ही बात है, एक जगह जहां मैं खाना देने जाती हूँ उस फीमेल को भी पप्स हुए हुए हैं 15-20 दिन से एंड उस दिन गर्मी भी थी तो शी वॉज नॉट लाइक फीलिंग लाइक ईटिंग। मैंने हॉर्न बजाया, वो कहां से दौड़ के अंदर से आई, वो एक बस स्टैंड काइंड है, बच्चों को छोड़ के वो आई, मेरे पास आई, मिली, मैंने बहुत बोला, उसने नहीं खाया और फिर वो मिल के अंदर चली गई। तो इट वॉज लाइक कि
0: सिर्फ ग्रेट करने
1: हैं। यस, तो ये कितना टेम्परमेंट जो है, आप देखो एक डॉग का वो कितना सेल्फलेस है, वो ये कि सिर्फ मिलना है क्योंकि उनको भी तो प्यार है।
0: बिल्कुल,
1: इट्स नॉट जस्ट कि वो खाना सिर्फ मुझसे चाहते हैं।
0: राइट,
1: तो ये मैंने उनसे सीखा है कि किसी भी रिलेशनशिप में सिर्फ एक्सपेक्टेशन रखना और उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना कि आई एम डूइंग माय पार्ट, काइंड ऑफ इट गेट्स ओवर देयर, इट्स बियॉन्ड दैट।
0: राइट,
1: एंड सिंप्लिसिटी से, साफ मन से केवल एक दूसरे को इम्पोर्टेंस महसूस कराना कि यू आर वांटेड।
0: राइट, राइट,
1: इच अदर फील लव्ड एंड वांटेड, छोटे छोटे जेस्टर्स से वो बहुत वैल्यूएबल है, वो हम ट्रेजर करते हैं
0: और वो शायद ह्यूमन इमोशंस में कहीं ना कहीं लुप्त हो चुका है। सेल्फलेस बॉन्ड्स तो रहे ही नहीं, तो एनिमल से हम ये बहुत बड़ी चीज आपने बताया हम सीख सकते हैं। अगर सीख ना भी पाए तो कम से कम कोशिश कर सकते हैं कि कुछ एक या दो बॉन्ड्स हमारे जीवन में ऐसे हों जो सेल्फलेस हों, जो सिर्फ साफ मन से निभाए जाएं। और खैर, उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है, और इसी इसी एहसास के साथ मैं आज का ये सेगमेंट, ये लास्ट सेगमेंट क्लोज करना चाहूंगी और आपसे आखिरी एक मैसेज आपसे लेना चाहूंगी कि पेट केयर और एनिमल्स की तरफ बिहेवियर के लिए, आप पेट पेरेंट नहीं भी हैं तो भी ओवरऑल आपका एनिमल्स की तरफ बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए, उसके लिए अगर कोई सलाह, कोई मैसेज आप देना चाहें जो हमारे श्रोता सुन के शायद उसे गुन सकें, बुन सकें और अपना सकें अपने जीवन में।
1: पेट्स के प्रति या इवन स्ट्रे डॉग्स के प्रति अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, भले स्ट्रेस के लिए नॉट नेसेसरली, पर बस हम थोड़े से उनके प्रति कैलिस न होके थोड़े केयरफुल हो जाएं गाड़ी चलाते हुए स्पेशली, क्योंकि इतने ज्यादा व्हीकल्स हैं आजकल सड़कों पे, ट्रैफिक इतना है, और स्ट्रे डॉग्स अगर हैं तो कई बार हम ध्यान नहीं देते, हम उनको हिट करके निकल जाते हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर, पर वो एक हिट उसकी लाइफ लॉन्ग डैमेज कर देता है। उस वो पैर जब टूटा या बैकबोन में इंजरी हुई, वो फिर कभी वापस ठीक नहीं होती कई बार,
0: बिल्कुल करेक्ट।
1: तो वो डॉग उस हैंडीकैप के साथ फिर लाइफ लॉन्ग रहता है। तो ये कई बार डॉग्स हमारी गर्मी के मौसम में हमारी कार के नीचे सो रहे होते हैं,
0: बिल्कुल
1: ये रिसेंटली हुआ है अभी मेरे साथ, जब मैं खाना देने जाती हूँ, द
0: बिल्कुल
1: पर्सन डिडंट रियलाइज, उसने रिवर्स करी और वो व्हील से उसको इंटरनल इंजरी हुई डॉग को, एंड ही डाइड द नेक्स्ट डे।
0: बिल्कुल
1: तो हम बहुत जल्दी में होते हैं माना, पर कभी थोड़ा ध्यान दें कि एक बार चेक कर लें कि गाड़ी के नीचे
0: करेक्ट
1: कोई एनिमल तो नहीं है
0: करेक्ट, स्पेशली इन मौसमों, मौसम
1: इस
0: यू नो।
1: मौसम में।
0: हाँ जी हाँ जी
1: यस, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, क्योंकि इतने ज्यादा ट्रीज कट चुके हैं तो वो जगह ढूंढ रहे होते हैं कारों के नीचे, ऑटो रिक्शास के नीचे,
0: राइट
1: तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं। और पटाखे जब हम दिवाली पर जलाते हैं तो वी हैव टू बी लाइक, थोड़ा सा पेट्स तो बहुत डरते हैं घर वाले,
0: बहुत
1: मैंने शेरी यूज टू ट्रेम्बल, और 5 दिन खाना उसका खत्म हो जाता था, खाना खाना, तो उनको नॉइस से क्रैकर्स की बचा के रखना है। हम स्ट्रे डॉग्स को तो नहीं बचा सकते, वो क्या अंडरगो करते हैं विच वी कैन नॉट इवन इमेजिन। मैंने शेरी को देखा है क्लोजली, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस का क्या हाल होता होगा जब क्रैकर्स हम लोग बर्स्ट करते हैं।
0: राइट, अनदिनों तक बर्स्ट करते हैं।
1: हाँ, क्योंकि ये लोग नॉइस, इनका जो वो है कैपेसिटी डेसिबल्स की, वो हमसे बहुत ज्यादा है, तो अगर घर में पेट है और हमें क्रैकर्स बर्स्ट करने का बहुत ही शौक है, तो अपने हम इंश्योर करें कि वो प्रॉपरली रूम क्लोज्ड में एनिमल बैठा है शाम को रात को, और इतना आवाज उस तक ना पहुंचे, बहुत डिफिकल्ट है ये कर पाना, पर ये थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। और
0: बिल्कुल
1: मैंने देखा है कि होली का रंग लोग स्ट्रे डॉग्स को भी
0: लगाते हैं।
1: हाँ, तो एनिमल्स का कलर वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल है, भगवान ने उनको बहुत सुंदर बनाया है, सो लेट्स नॉट डू दिस विद देम,
0: बिल्कुल
1: सो स्पेयर देम,
0: बिल्कुल
1: समटाइम्स दे वो अपने रक्षा नहीं कर पा रहे होते हैं, या यू नो, तो हम समझते हैं कि हम कुछ भी कर
0: कुछ भी
1: लेंगे,
0: कर सकते हैं जी, बिल्कुल
1: एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग एंड इट्स वेरी डार्क थिंग टू शेयर, बट फीमेल डॉग्स के साथ रेप भी होता
0: राइट राइट राइट
1: है। तो हम अपनी जो टेंडेंसीज हैं वो मूक प्राणियों पर हावी ना हो,
0: बिल्कुल
1: थोड़ी सी हम ह्यूमंस हैं, वी हैव टू रिमेम्बर
0: यस
1: कि हम ह्यूमंस हैं, वी आर फार फार मोर इवॉल्व्ड इमोशनली,
0: बिल्कुल
1: हमारा तो हमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पेट का भी एक इमोशनल लेवल है, एक लैंग्वेज है, वो हमारी तरह भाषा नहीं बोल रहा है पर उसकी भी लैंग्वेज है,
0: राइट
1: peaceful. Let's respect that.
0: Right. Right. बहुत ही सटीक और बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज आपने रेज किए जो शायद पहले हमारे किसी भी पेट शो में हमने नहीं बात की इन इन कॉजेस के बारे में कि कैसे फेस्टिवल्स पे भी हम ओवर द बोर्ड चले जाते हैं, चाहे वो दिवाली हो, फटाके की नॉइसेस हो, या होली हो, होली के रंग हो, और जिस तरह से आपने बताया कि ये इंस्टेंसेस होते हैं फीमेल डॉग्स के साथ, और मतलब हम एक्चुअली ये तरह से आपने बताया कि ये इंस्टेंसेस होते हैं फीमेल डॉग्स के साथ और मतलब हम एक्चुअली ये भूल जाते हैं कि हमारी इंस्टिंक्ट्स और हम किस तरह से भगवान ने हमें ब्लेस किया है टू यूज आवर विजडम व्हेन वी आर हैविंग पेट्स अराउंड अस, वी आर हैविंग दीज एनिमल्स एंड क्रिएचर्स अराउंड अस, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम से कम एक बेसिक ह्यूमन कैलिबर रख के, एक ह्यूमन टेंडेंसी रख के बिहेव करें और हार्मलेस रहें इनके अराउंड, हार्म ना करें, और कुछ नहीं कर सकते, कुछ एफर्ट नहीं कर सकते, कुछ दे नहीं सकते इन्हें, तो कम से कम ऐसी हरकतें तो ना करें. एंड यस, इस मौसम में, समर्स में बहुत सारे पेट्स आपकी कार के नीचे शेड के लिए बैठे होते हैं, क्योंकि जैसे दीपा मैम ने बताया कि ट्रीज अब रहे नहीं है, शेल्टर की जगहें रही नहीं है. पहले मुझे याद है जब हम बड़े हो रहे थे तो बहुत सारी टंकियां होती थी जिसमें बहुत सारे डॉग्स जाके बैठ जाते थे, अब वो टंकियां भी लुप्त हो गई हैं, वो दिखती ही नहीं है मुझे. तो बहुत सारी चीजें विद टाइम्स विद अर्बनाइजेशन चेंज हो गई हैं और हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब चीजों के लिए. तो कम से कम इतना तो ध्यान रखें कि जब आप गाड़ी मूव करें तो चेक कर लें एक बार कि कहीं कोई पेट, कोई डॉग, कोई पप आपकी गाड़ी के नीचे तो नहीं है, क्योंकि वो बहुत बहुत ही एक गिल्ट में डालने वाला एक एक्सपीरियंस होता है. तो उसे अवॉइड करें और अपने लिए नहीं, उस पेट के, उस स्ट्रे एनिमल के लिए सोचें. और इसी एहसास, खैर ये बातें चल सकती हैं, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट हम ऑलरेडी समय को थोड़ा सा क्रॉस कर चुके हैं, तो इन्हीं बातों पे हम विराम लगाएंगे और आज का हमारा इस एपिसोड को हम क्लोज करेंगे. थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपा आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. हम नेस्टर, शेरी और ब्राउनी इन सभी के लिए बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, वो जहां भी हैं आई एम श्योर वो हेवन में हैं. हम उन्हें, हम और हमारी एसएन रेडियो की पूरी टीम बहुत सारा प्यार भेजते हैं नेस्टर, शेरी एंड ब्राउनी के लिए. थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इम्पोर्टेंट बातें साझा करने के लिए.
1: थैंक यू सो मच तदुषा, इट वॉज लवली बींग हियर, आई एम ग्लैड कि वी कुड हैव दिस कन्वर्सेशन.
0: जी तो दोस्तों,

0: मिस्टर शेरी और ब्राउनी जैसे साथी हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनते, वो हमारी जिंदगी को पूरा करते हैं, उसे पूर्ण बनाते हैं। उनके जाने के बाद घर वही रहता है लेकिन एहसास बदल जाता है। लेकिन शायद प्यार का मतलब यही है कि वो कभी खत्म नहीं होता, वो बहता रहता है, वो बस यादों में बस जाता है। डॉक्टर दीपा वंजानी जी का ये सफर हमें ये सिखाता है कि हर पल को जी लेना चाहिए और हर रिश्ता दिल से निभाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सफर और एक नए पेट पेरेंट के साथ। तब तक के लिए प्यार बांटते रहिए और जिंदगी के रंगों को महसूस करते रहिए। साइनिंग ऑफ, बाउवाओ।
1: तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे इन प्यारे साथियों से जुड़ी हुई ये बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प हमारे साथी के साथ जो हमसे बेहद प्यार करता है। तब तक अपने इन खास साथियों का ख्याल रखें और खुश रहें। नमस्कार।

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरणादायक गीतों के साथ, प्रेरणादायक बातों के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में। सपने देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बने रहिए आरजे समीर के साथ। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है। और तब

अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें परियों की कहानियां सुनाएं। यदि आप उन्हें और भी बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें और ज्यादा परियों की कहानियां सुनाएं।

आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाएगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: अगर आपको सभी महिलाओं से डर लगता है तो जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर एक ही महिला से डर लगेगा और बाकी सारी अच्छी लगने लगेंगी।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा होता है दोस्तों। अगर ये विश्वास आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

आगे बढ़ा हिम्मत के कदम, एक बार मर्द बन के तेरे पांव पड़ेंगी चट्टाने, ठोकर की गर्द बन के, ठोकर की गर्द।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: वैज्ञानिक चाहे जितनी खोज कर लें, ये बात कभी नहीं पता लगा पाएंगे कि लोग जब उदास हो जाते हैं तो व्हाट्सएप से अपना डिस्प्ले प्रोफाइल क्यों हटा लेते हैं।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। दोस्तों, हार यानी कि पराजय वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है, तो इसलिए हार से घबराएं नहीं।

तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आज इतना ही। भूलिएगा नहीं, सपने देखते रहिए।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में हम बात करेंगे साधना जी की, जिनका पूरा नाम साधना शिवदासिनी था। साधना शिवदासिनी का जन्म 2 सितंबर 1941 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। अपने पिताजी और माता की इकलौती औलाद होने की वजह से साधना शिवदासिनी की बाल्यावस्था बहुत ही लाड़ प्यार में गुजरी। तो आइए शुरुआत करते हैं उनकी फिल्म के इस गीत से।

वर्ष 1947 में भारत देश से पाकिस्तान अलग होने की वजह से उनके परिवार को कराची शहर छोड़ना पड़ा। वहां से उनका परिवार मुंबई आया। गुजरे हुए जमाने की खूबसूरत और बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक साधना बेहद मशहूर थी। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गाना।

लड़कियों के बीच चूड़ीदार सलवार का फैशन मशहूर करने में साधना का ही हाथ था। उनका हेयर स्टाइल साधना कट नाम से मशहूर है। इस हेयर कट की भी बड़ी मजेदार कहानी है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये कहानी बताऊं, सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

दोस्तों हम बात कर रहे थे साधना कट बालों की। दरअसल साधना ने अपने चौड़े माथे को छुपाने के लिए इस तरह का हेयर स्टाइल अपनाया था कि उनके बाल माथे पर ही रहें। लेकिन ये स्टाइल इतना मशहूर हुआ कि 60 और 70 के दशक में हर लड़की साधना की तरह हेयर स्टाइल रखने की कोशिश करने लगी। है ना मजेदार बात। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

साधना खूबसूरती और टैलेंट का बेजोड़ संगम थी। उन्हें बचपन से ही हीरोइन बनने का शौक था, तो चली आई फिल्मों में। उन्हें पहला ब्रेक 1955 में आई फिल्म श्री 420 से मिला। फिल्म हिट रही और इसमें साधना के काम को भी नोटिस किया गया। तो हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत।

लव इन शिमला, प्रेम पत्र, एक मुसाफिर एक हसीना, वो कौन थी और मेरा साया जैसी कई ऐसी फिल्में रहीं जिनमें साधना के काम को काफी सराहा गया और वो सुपरहिट भी रहीं। चलिए पेशे खिदमत है उनकी फिल्म का ये नगमा।

साधना ने लव इन शिमला के डायरेक्टर रामकृष्ण नैयर से 1966 में शादी की थी। दोनों की मुलाकात फिल्म के सेट पर ही हुई थी। उस समय साधना सिर्फ 16 साल की थीं और नैयर 22 साल के। साधना के पेरेंट्स उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन राज कपूर की मदद से दोनों की शादी हुई। तो हो जाए उनकी फिल्म का एक और नगमा।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

बिस्वजीत चटर्जी, जो सिंपल बिस्वजीत के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 14 दिसंबर 1936 में हुआ था। ये हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर और पॉलिटिशियन भी बने। चलिए शुरुआत करते हैं इनकी फिल्म के इस गीत से।

बहुत ही स्वाभाविक अभिनय और बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे बिस्वजीत चटर्जी। इन्होंने बंगाली फिल्मों और हिंदी फिल्मों के दर्शकों के दिलों पर सालों साल राज किया। चलिए हो जाए इनकी फिल्म का ये गीत।

बिस्वजीत कोलकाता में पले बढ़े और इनके एक्टिंग की सफर की शुरुआत बंगाली फिल्मों से हुई। माया, मृग और दुई भाई जैसी सफल बंगाली फिल्मों में एक्टिंग करने के बाद बिस्वजीत ने हिंदी फिल्मों का रुख किया। चलिए इनकी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

सुजीत कोलकाता से मुंबई आए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने बंगाली फिल्मों की तरह इस सफल अभिनेता को सर आंखों पर लिया। परिणाम स्वरूप बेहद कम समय में विश्वजीत की झोली हिंदी फिल्मों से भर गई। चलिए उनकी फिल्म का एक और नगमा सुनते हैं।

1962 में बिस्वजीत चैटर्जी की पहली फिल्म 20 साल बाद प्रदर्शित हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। देखते ही देखते बिस्वजीत हिंदी फिल्मों के तेजी से उभरते हुए अभिनेता बन गए। हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत।

विश्वजीत के चाहने वालों ने उन्हें किंग ऑफ रोमांस की उपाधि दी। है ना मजेदार बात। विश्वजीत पर फिल्माए गए गीतों की लोकप्रियता ने उनके फिल्मी करियर में चार चांद लगा दिए। चलिए हो जाए उनका ये खूबसूरत सा गीत।

बिस्वजीत चैटर्जी ने कई यादगार फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई, जिनमें मेरे सनम, शहनाई, अप्रैल फूल, दो कलियां और शरारत खास हैं। हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत।

विश्वजीत को उस समय के लगभग सभी हीरोइनों के साथ एक्टिंग करने का मौका मिला, खास करके आशा पारिख, मुमताज, माला सिन्हा और राजश्री के साथ उनकी रोमांटिक जोड़ी हमेशा बहुत पसंद की गई। तो सुनिए उनकी फिल्म का ये गीत।

हिंदी फिल्मों में मिली सफलता के बाद भी विश्वजीत ने बंगाली फिल्मों में अभिनय करना नहीं छोड़ा। वो कोलकाता आते जाते रहते थे और चुनिंदा बंगाली फिल्मों में अभिनय करते रहे, जिनमें सुपरहिट फिल्म चौरंगी उल्लेखनीय है। चलिए उनकी फिल्म का ये गीत।

अभिनय के बाद विश्वजीत ने फिल्म डायरेक्शन की तरफ भी कदम बढ़ाए। 1975 में फिल्म बनी कहते हैं मुझको राजा, जिसका निर्माण और निर्देशन दोनों इन्होंने ही किया। इस फिल्म में थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा बिजनेस किया।

बिस्वजीत की अनगिनत फिल्में आईं। उन्होंने 2002 तक फिल्मों में काम किया। चलिए बिस्वजीत की इस फिल्म का एक और नगमा सुनते हैं।

0: करते हैं।
1: दोस्तों ये प्रोग्राम पेश
0: आप जब है तो मेरे पास मेरा सब कुछ है, जान क्या चीज़

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। और फिर हजारों शेर मेरे सो गए, कागज की कब्रों में। अजब माँ हूँ, कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता। नमस्कार, आदाब। 90.8 FM की तरंगों पर SN रेडियोज और रेडियो टांटिया भील से मैं हूँ आरती रॉय, और आप मुलायजा फरमा रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, जब अल्फाज सीधे रूह को छू लें तो वो महज लफ्ज नहीं रहते, वो एक गहरा एहसास बन जाते हैं। और जब उर्दू अदब में सबसे ज़्यादा, सबसे सादा, सहज और पाकीज़ा एहसासात की बात होती है तो एक नाम जहन के पर्दे पर सबसे पहले उभरता है, और वो है डॉक्टर बशीर बद्र, जिनका हाल ही में 91 साल की उम्र में इंतकाल हुआ था। उनका जन्म 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर अयोध्या में हुआ था। सैयद मोहम्मद बशीर, जिन्हें दुनिया डॉक्टर बशीर बद्र के नाम से जानती है, उन्होंने उर्दू गज़ल को रिवायती और भारी भरकम बंदिशों से आज़ाद किया। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल की, PhD की, और बतौर प्रोफेसर खिदमत भी अंजाम दी। लेकिन उनका असली मुकाम तो आवाम के दिलों में था। पद्मश्री और साहित्य अकेडमी जैसे मोतबेर अवार्ड से नवाजे गए बशीर साहब ने रोज़मर्रा की बोलचाल के लफ्ज़ों को शायरी में इस तरह पिरोया कि हर मुसाफिर और हर तन्हा दिल को लगा कि ये कलाम सिर्फ उसी के लिए तख्लीक किया गया है, यानी लिखा गया है। तो चलिए, आज अल्फाज से एहसास तक के इस खास सफर में हम और आप मिलकर सुनते हैं डॉक्टर बशीर बद्र की वो अमर गज़लें जिन्हें मौसीकी के बड़े बड़े उस्तादों और गुलुकारों ने अपनी जादुई आवाज़ों से हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यादों और एहसासों का ये कारवां अब रवां दवां है। दोस्तों, बशीर बद्र साहब की शायरी की यही तो खूबसूरती है वो हिजर यानी जुदाई के दर्द को भी एक अजीब सी मासूमियत और पाकीज़गी अता कर देते हैं। इस मिसरे में वो मोहब्बत का एक ऐसा सच बयां कर रहे हैं जहां बिछड़ने के बाद महबूब दुनिया के सामने खुश होने का दावा तो करता है मगर शायर उसकी आंखों का सूनापन पढ़ लेता है और बड़े प्यार से उसको टोकता है कि तुम भी मेरी ही तरह झूठे हो, अंदर से उतने ही उदास हो। बशीर साहब की इस गज़ल में मोहब्बत की यादें इतनी पाकीज़ा हैं कि कुदरत की हर चीज़ में महबूब का अक्स नज़र आता है। वो लिखते हैं, एक टहनी पे चांद टिका था, मैं ये समझा तुम बैठे हो, उजले उजले फूल खिले थे बिल्कुल जैसे तुम हंसते हो। और मोहब्बत का ये रूहानी तसव्वुर तो देखिए कि दूर रहने के बाद भी महबूब के होने का एहसास इस कदर हावी रहता है कि वो कहता है, मुझको शाम बता देती है तुम कैसे कपड़े पहने हो। इश्क की ये बहुत खूबसूरत इंतहा है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इस बात से वही इत्तफाक करेगा जिसने कभी वाकई सच्चा इश्क किया होगा। और दोस्तों, इन बे इंतहा नाजुक और रूहानी जज्बात को जब जगजीत जी की पुरसोज और मखमली आवाज़ का साथ मिला तो फिर ये सिर्फ गज़ल नहीं रही बल्कि हर तन्हा दिल की धड़कन बन गई। आइए सुनते हैं, मुझसे बिछड़ कर

दोस्तों, बशीर बद्र साहब की शायरी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो महबूब के हुस्न, उसकी पाकीज़गी और बेरुखी को भी इतने हसीन लफ्ज़ों में ढालते हैं कि सुनने वाला बस अश्कबार हो जाए या फिर झूम ही उठे। हुस्न की इसी मासूमियत को बयां करता और बशीर साहब के बेहद मारूफ बयां करता बशीर साहब का एक बेहद मारूफ शेर याद आता है। इस शहर में एक लड़की बिल्कुल है गज़ल जैसी, इस शहर में एक लड़की बिल्कुल है गज़ल जैसी, बिजली सी घटाओं में, खुशबू सी अदाओं में। इसी मिजाज इसी हुस्न और इसी खूबसूरत कश्मकश की जब गज़ल की शक्ल में जब ढाला गया तो उर्दू अदब को एक नायाब तोहफ़ा मिला, एक ऐसा तोहफ़ा कि जिसे जब शहनशाह गज़ल उस्ताद ग़ुलाम अली साहब ने अपने मखसूस शास्त्रीय अंदाज और हरकतों से सजाया तो ये कलाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। इस गज़ल का एक एक मिसरा महबूब के बदलते रंगों और उसकी बेपरवाही की मुकम्मल तस्वीर खींचता है। जैसे शायर फरमा

0: सो ही जाओ। सोया हुआ मंजर कहूँ या जागता सपना कहूँ। फिर कहते हैं, चंदा की तू है चांदनी, लहरों की तू है रागनी, जाने तमन्ना मैं तुझे क्या कहूँ क्या ना कहूँ। पेशे खिदमत है गुलाम अली साहब की आवाज़ में ये खूबसूरत सी गज़ल, ऐ हुस्न बेपरवाह तुझे शबनम कहूँ या शोला कहूँ।
1: ऐ हुस्न

अर्ज किया है वक्ते रुखसत कहीं तारे कहीं जुगनू आए, वक्ते रुखसत कहीं तारे कहीं जुगनू आए, हार पहनाने मुझे फूल से बाजू आए। उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान बना दिया। उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान बना दिया। मुद्दतों बाद मेरी आंखों में आंसू आए। बहुत दिनों से मैं इन पत्थरों में पत्थर हूँ। बहुत दिनों से मैं इन पत्थरों में पत्थर हूँ। कोई आए जरा देर तो रुलाए मुझे। दोस्तों, डॉक्टर बशीर बद्र की शायरी की ये वो खूबी है कि जहाँ वो मोहब्बत के नाजुक से नाजुक तरीन जज्बात को सीधे आवाम के दिलों में उतार देते हैं। इस मिसरे में आशिक अपनी मोहब्बत पर गहरा एतबार और यकीन मांग रहा है। वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी वफा पर कोई शुबा है, शक है, तो मुझे आजमा के देख लो। अगर तुम आईना कहते हो तो मेरी आंखों में अपनी साफ तस्वीर देख लो। लेकिन दोस्तों, इस कलाम की असल खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब हम साल 1992 के उस सुनहरी दौर का जिक्र करते हैं जब संगीत की दुनिया में एक तारीखी एल्बम तख्लीक हुई, यानी क्रिएट हुई, जिसका नाम था हाजिर। इस एल्बम की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये महज एक रिकॉर्डिंग नहीं थी बल्कि दो अजीम फनकारों की रूहानी जुगल बंदी थी। एक तरफ थे अपनी मखमली और शास्त्रीय गायकी के उस्ताद हरिहरन साहब, जिन्होंने इस कलाम को बहुत ही धीमे और दिलकश सुरों में कंपोज किया, और दूसरी तरफ उनका साथ दे रहे थे दुनिया के सबसे अजीम तबला नवाज उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। जाकिर साहब के तबले की हर थाप, हर एक बोल हरिहरन साहब की आवाज़ के साथ इस तरह बातें करते जैसे दो पुराने दोस्त आपस में दिल का हाल बयां कर रहे हों। जॉली मुखर्जी साहब का खूबसूरत म्यूज़िक और अरेंजमेंट था इस पूरे माहौल को एक ख़ास संजीदगी दे देता है। इस गज़ल का एक और मिसरा जो इंसान की बेबसी और उसकी तन्हाई की मुकम्मल दास्तां सुनाता है। बशीर साहब ने कुछ यूं लिखा है, अजब चराग हूं दिन रात जलता रहता हूं, अजब चराग हूं दिन रात जलता रहता हूं, मैं थक गया हूं हवा से कहो बुझाए मुझे। और जरा इस मिसरे की गहराई मुलाहजा फरमाएं, जहाँ टूटने और बिखरने का दर्द किस शिद्दत से बयां हुआ है। मैं जिसकी आंख का आंसू था उसने कद्र ना की। बिखर गया हूं तो अब रेत से उठाए मुझे। दोस्तों, जाकिर साहब की उंगलियों का जादू, हरिहरन साहब की सुरों की रूहानियत जब बशीर साहब के इन अल्फाजों से मिलती है तो वक्त ठिठक कर ठहर जाता है। गज़ल के बोल हैं, अगर यकीन नहीं आता तो आजमाए मुझे, अगर यकीन नहीं आता तो आजमाए मुझे, वो आईना है तो फिर
आईना दिखाए मुझे, मुलाहिज़ा फरमाएं।

बशर साहब फरमाते हैं, कुछ तो बोलो पत्थर के जिगर वालो, कुछ तो कहो बेजान किताबों के पन्ने तो ना पलटो तुम। फिर कहते हैं, क्यों चांदनी रातों में दरिया में नहाते हो, क्यों चांदनी रातों में दरिया में नहाते हो, बहते हुए पानी में क्या आग लगानी है। एक ज़हने परेशान हूँ, एक ज़हने परेशान हूँ, ये फूल सी गजलें हैं, पत्थर की हिफाजत में शीशे की जवानी है। और फिर ये कि रोने का सबब दिल को रह रह कर सताता है, रोने का सबब दिल को रह रह कर सताता है, आंसू कभी शीशा है, आंसू कभी शीशा है, आंसू कभी पानी है। और मक्ता पेशे खिदमत है, एक ज़हने परेशान हूँ ये फूल सी गजलें हैं, पत्थर की हिफाजत में शीशे की जवानी है। दोस्तों, बशर साहब की शायरी की ये एक बहुत बड़ी ख़ासियत रही है कि वो दर्द को भी ज़ुबान दे देते हैं, जिसे अक्सर इंसान अपने अंदर ही छुपाए रखता है। इस गज़ल में वो दुनिया की बेरुखी और इंसान की खामोशी पर गहरा तंज कर रहे हैं। जब बशीर साहब इन जज्बातों बयां करते हैं तो ये सीधे दिल पर असर करते हैं, और जब इन अल्फाजों को सुरों से सजाने की बात आई तो गज़ल की दुनिया के एक और बेहद मकबूल और मखमली फनकार सामने आए, तलत अज़ीज़ साहब। तलत अज़ीज़ ने बशीर बद्र के कलाम को लेकर एक पूरा एल्बम तैयार किया था। उनकी आवाज़ में जो एक अजीब सा ठहराव है वो इस गज़ल के मिजाज के साथ बिल्कुल मेल खाता है। और जब तलत अज़ीज़ की बात चली है तो एक याद मैं भी आपसे साझा करती हूँ। ये शायद 2009 या 10 की बात है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के होटल जिंजर में मैं अपने हस्बैंड के साथ रुकी हुई थी। तकरीबन 3 महीने हम होटल में रहे, क्योंकि बिशु जो कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से थे तो वहाँ एक प्रोजेक्ट के तहत बुलाए गए थे। जनवरी या फरवरी के महीने में वहाँ पर लोकल कोई फेस्टिवल होता था, बुक फेयर भी लगता था और मशहूर फनकारों को दावत दी जाती थी। अब उस वक्त वहाँ पर वही एक होटल स्टार कैटेगरी का था, तो बहुत से सेलिब्रिटीज़ वहाँ रुकते थे। अब उस फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए जानते हैं कौन आया? तलत अज़ीज़ और शोभा मुटगिल। सुबह जब कॉफ़ी शॉप में मैं ब्रेकफास्ट करने गई तो इन दोनों को हूबहू अपने सामने टेबल पर बैठे देख हैरान ही हो गई, यू नो, लाइक प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। और बिना सोचे समझे उनकी टेबल पर जाकर अपने इंट्रोडक्शन देते हुए बैठ गई। किसी सेलिब्रिटी से इतनी बेतकल्लुफ और खूबसूरत मुलाकात का ये मेरा शायद पहला मौका था, और मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि ये दोनों मुझसे इतने प्यार से मिले जैसे पहले से ही जानते हों। खूब देर बातें की, ब्रेकफास्ट किया, शाम को शहर में उनका प्रोग्राम था सो वो भी जाके अटेंड किया। तलत अज़ीज़ साहब का कमरा हमारे ही फ्लोर पर 2 रूम छोड़कर था,
दोस्तों, ब्रेकफास्ट करने के बाद दिन भर वो अपने कमरे में रियाज करते रहे और मैं सुनती रही। मैं वो दिन कभी नहीं भूलती। आज ये बात मुझे भी याद आ ही गई जब मैंने उनकी गज़ल को सिलेक्ट कर रही थी, तो ज़िंदगी के कई पन्ने इस प्रोग्राम को पेश करते हुए एक एक करके खुलने से लगे हैं। ये उनमें से एक था। तो मुलाहिज़ा फरमाएं तलत अज़ीज़ की खूबसूरत आवाज़ में बशर साहब का ये खूबसूरत तरीन कलाम। पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा, बहता हुआ पानी है। आज से पहले मैं इस बात की तर्जुमानी ना कर पाई जो बशर साहब ने सालों पहले कर दी, कि गम में वो रवानी है कि वो खुद ही राह बना लेगा, बहता हुआ पानी है। ना बिशु मेरे साथ है, ना ही कहीं होटल्स में जाकर ठहरने का कोई जवाब। आज बहुत कुछ याद आ गया। आप सुने ये खूबसूरत गज़ल पत्थर के जिगर वालों, तलत अज़ीज़ की आवाज़ में।

0: दोस्तों, ज़रा इस ख्याल की पाकीज़गी और इसकी गहराई मुलाहिज़ा फरमाएं। मोहब्बत की इंतहा ये है कि आशिक अपने महबूब को अपनी आँखों में इस तरह बसाना चाहता है कि खुद उसकी अपनी नज़र को भी इसकी भनक ना लगे।
1: वाह,
0: यानी मोहब्बत में दिखावे और गुरूर की कोई गुंजाइश नहीं, सिर्फ और सिर्फ रूहानी इबादत है। वो कहता है, मुझे अपने गम की खबर नहीं, मुझे अपने गम की खबर नहीं, मुझे अपने दिल का पता नहीं। मैं बहुत दिनों से हूँ लादवा, मुझे ठीक होने का डर नहीं। इस गज़ल का एक एक मिसरा वफा और दीवानगी का एक समंदर हो जैसे, बिछड़ने के बाद या इस तन्हाई से ठीक ना होने की जो ख्वाहिश है, यही बशर साहब की शायरी का वो जादुई एहसास है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। महबूब की यादों का साया इस कदर हावी है कि शायर कहता है, वो जो रात दिन मेरे साथ था, वो जो रात दिन मेरे साथ था, वो जो मुनसफे शबे तार था, उसे ढूंढती है मेरी नजर, वो कहीं सरे रह गुजर ना हो। और फिर महबूब से बिछड़ने के ख्याल से ही तड़प कर शायर कहता है, मेरे पास यूं मेरे हबीब आ, मेरे पास यूं मेरे हबीब आ, जरा और दिल के करीब आ, तुझे धड़कनों में बसा लूं कि बिछड़ने का कभी डर ना हो। और फिर तन्हाई जब अपनी आखिरी हदों को छूती है तो बशीर साहब का ये मिसरा सीधे दिल के पार हो जाता है। वो कहते हैं, उसे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब ना हो सकी, वो तो नक्श है मेरे दिल में यूं कि मिटाए से भी मिटा ना हो। दोस्तों, इन तमाम जज्बातों को जब जगजीत जी ने अपनी पुरसर आवाज़ और तिलस्मी सुरों में सजाया तो ये गज़ल हर तन्हा दिल की आवाज़ बन गई, जो मोहब्बत में रूह के मिलन की जस्तजू रखता है। जगजीत साहब की गायकी का वो अंदाज़ जिसमें एक अजीब सा सोज़ और एक अजीब सा ठहराव है, बशीर साहब के लफ्ज़ों के साथ मिलकर एक मुकम्मल कैफियत पैदा कर देता है। तो आइए, अल्फाज से एहसास तक के इस बेहद नाजुक और हसीन पड़ाव पर सुनते हैं ये बेहद रूहानी गज़ल, कभी यूं भी आ मेरी आंख में, कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नज़र को खबर ना हो, तुझे ढूंढता हूँ चारों सुर, मुझे अपने घर की खबर ना हो, आपकी नज़र।

दोस्तों, यादों, धुनों और एहसासों का ये खूबसूरत कारवां जो आज डॉक्टर बशीर बद्र के आंगन से गुजरकर अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला है। आज हमने बशीर साहब की शायरी के कुछ रंगों को महसूस किया जिन्हें संगीत की दुनिया के महान फनकारों ने अपनी रूह से सींचा। जगजीत सिंह जी के दर्द से गुजरकर गुलाम अली साहब की क्लासिकी हरकतों के बाद हरिहरन साहब और उस्ताद जाकिर हुसैन की बेमिसाल जुगलबंदी, तलत अजीज साहब की सोज और आखिर में उस्मान अली के इस नए अंदाज तक हर पड़ाव पर अल्फाज जैसे सीधे दिल में उतरते ही चले गए। कहते हैं कि महफिलें ख़त्म हो जाती हैं मगर उनकी खुशबू हवाओं में तैरती रहती है। बशीर साहब का ही एक मिसरा जहन में आ रहा है, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो बस इसी उम्मीद के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, मुझे यानी आपकी दोस्त और आपकी हमसफर आरती रॉय को दीजिए इजाज़त। आप सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन 90.8 FM पर SN रेडियोस और रेडियो तांत्या भील। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ।

दूषित करे से अने नाइट्रेट नो अन्य वाहक पानी से। उच्च नाइट्रेट युक्त पानी ना सेवन थी भी पशुओं में विषाक्तता थाई जाय से अने पशु नाइट्रेट युक्त सारा पानी ने ज्यादा मात्रा में सेवन करवा थी नाइट्रेट नो नाइट्रेट में परिवर्तन थाई जाय से त्यो अत्यंत घणो जहरीलो रहे से अने यो खून में पूगी ने हिमोग्लोबिन ने हिमोलोबिन में बदली जाए से। तो किसान साथियों जेवी रीते तीनथी शरीरना कई एवा ऊतकों में ऑक्सीजन नहीं पूगवा दे से अने सारा में शुष्क आधार पर 0.15% नाइट्रेट नाइट्रोजन हानिकारक नहीं रह से जबकि 0.45% से ज़्यादा मात्रा ज़्यादा जहरीली रह से। इना तरथी पीवाना पानी में 0 ppm नाइट्रेट अने नाइट्रेट 10 ppm नाइट्रेट नाइट्रेट ने हानिकारक नहीं रह से पुन 300 ppm नाइट्रेट नाइट्रोजन युक्त पड़वा थी सेवन थी विषाक्तता अने जहर वाल जहरीली थाई जैसे। तो किसान साथियों इना लक्षण नाइट्रेट विषाक्तता रेवा पर पशु नी हाह अने नाड़ी दर बढ़ी जाए से हाह लेवा में कठिनाई अने मांसपेशियों में ऐठन अने कमजोरी आवी जाए से। पशु अपना शरीर ने पेट नी तरह घुमाड़ी ने लटकाड़ नाखे से अने मोह खुलू राखी हाह ले से। ऑक्सीजन की कमी थावाने कारण आँख नाक अने श्लेमा झिल्ली गहरा रंगनी थाई जाय छे। विषाक्तानी तीव्र अवस्था में खूननो रंग रातो अने चॉकलेटी भूरो थाई जाय छे अने इनथी पशुनी एक थी चार घंटामांथी मौत थाई जाय छे। तो किसान साथियों इनो उपचार मेथिलिन ब्लू ना 1% क्यूलियन नी 50-100 ml मात्रा हुदो ही नस मा आल देवी जोई। एस्कार्बिन एसिड 5 mg प्रति किलोग्राम शरीर ना भार ना अनुसार नस मा आल वी जोई। वसाओ तो किसान साथियों नाइट्रेट युक्त सारा नी थोड़ी थोड़ी मात्रा आलतू रहू अने लगभग 1 महीना मा इहुनी मात्रा बढ़ाई जाई सके। नाना हुकीन एठियो पर पीला मुरझायला अने पौधा ने सारा ना रूप में उपयोग नहीं करवो जोई। यूरिया विषाक्तता तो किसान साथियों लीला सारा ने दाणा नी कमी ने कारण पशुओं ना निर्भरता हुकेला रेशेदार सारो पर बढ़ी जाए से। इना प्रकार थी सारा नी पौष्टिकता बढ़ावा हारू सबथी बढ़िया हस्ती सरल अने कारगर विधि से यूरिया उपचारित सारो। यूरिया उपचारित करता समय किसान भाई ने यूरिया ना घोल ने ठीक तो नहीं मिलाई जाए अने पशु ने द्वारा यूरिया नो घोल भी पी जाए से अने यूरिया उपचारित सारो ज्यादा मात्रा में खाई जाए से अने पशु ने यूरिया विषाक्तता तीना कारण थाई जाए से। यूरिया विषाक्तता नो रक्त में अमोनियम नी मात्रा बढ़ी जाए से तीना कारण यूरिया रूमेन में पूगी ने अमोनिया में बदली जाए से। तिनथी रूमेन में मौजूद जीवाणु उपयोग में ली ने जीवाणु प्रोटीन बनाई ले से पुन यूरिया नी ज्यादा मात्रा थी सेवन करवा थी ज्यादा मात्रा में बनेलो अमोनिया पूरी तरह थी जीवाणु प्रोटीन बनावा में उपयोग में नहीं आई पाए। रूमेन द्रव में अमोनिया नी मांग बढ़ी जावा थी रूमेन नो पीएच बढ़ी जाए से अने अमोनिया नो अवशोषण भी बढ़ी जाए से। तिनथी रूमेन द्रव मा अमोनिकल नाइट्रोजन बढ़ी जाए से अने रूमेन मा जीवाणु प्रोटीन प्रोटील ना संश्लेषण हारू अमोनिकल नाइट्रोजन मात्रा 5-7 mg थी लगाड़ीने 1000 mg रेवी जोई। पुन विषाक्तानी स्थिति में रूमेन द्रव में यो 80 mg थी लगाड़ी ने 0 mg रक्त में 0.7 थी लगाड़ी ने 0.8 mg 0 mg थाई जाए से। तो इना लक्षण तो किसान साथियों यूरिया विषाक्तता थी पशु बेचैन रहे अने सुस्त थाई जाए
મોંથી જ્યાદા માત્રામાં લાળ ટપકવા લાગે અને માંસપેશીઓમાં એઠન થવા લાગે.

और उठेली इरे विजयी तकिसान साथियों पछेती अंगमारी यो रोग नो नाम से अने यो रोग पौधा ना पायडा अने कैनी भी अवस्था में यो थाई से भूरा अने काला बेंगनी रंगना पायडा ऊपर धब्बा बनी जाए देखाई दे से अने तीने कारण आखरी में पायडा पूरी रूप थी झुलसी जाए से अने कोकड़ाई जाए से। तो किसान साथियों ना नियंत्रण करवा हारू मेनकोजे 2 ग्राम अने कापर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम रीडोमिल एम झेड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनावीने छिड़काव करवाथी आपू इना रोग नो नियंत्रण करी सकी। तो किसान साथियों एक और रोग है पायड़ा न धब्बा रोग तिनाने वेक्टेरियल धब्बा रोगजनक पौधा थी हगला भागों पर घावों नो उत्पादन जगह जगह घाव पड़ेला टमाटर में करना कैसे अने तीना पायड़ा थूड़ फूल अने फल शुरुआती पायड़ा अने लक्षण एक पीला रंगना प्रभामंडल तो घेराई जाए से अने त्या नाना गोल थी अनियमित गहरा घावों जेवी रीते देखाई दे से घाव पायड़ा थी जो किनारा से तीना आगाड़ीना भागों पर 3-5 मिलीमीटर व्यासना आकार में बढ़ोतरी करवा लागे से प्रभावित पायड़ा पर एक झुलसन जेवी देखाई दे से अने अनेक स्पाट थाई जाए से अने इन्हा पायड़ा पीला पड़ी जाए से अने बाद में यहाँ रंग बदली जाए अने इहोना निचला पौधाना जो निचला जो हिस्सो रहे से त्या पायड़ा झड़वा लागे से अने पौधो बाद में मरी जाए से। तो किसान साथियों इना नियंत्रण करवा हारू नवसरी नी बेड तैयार करवा तो पहलू मिट्टी धूप में तड़काम तैयार करवी जोई ताकि ऊपर ज्यादा सीहड़ो नहीं रहेवो जोई अने बीज ने स्ट्यूडोमोनास क्लोरोसेस 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज थी उपचारित करवाथी इना रोग नो नियंत्रण किसान भाई करी सके से। तो किसान साथियों कीट प्रकोप नो नियंत्रण तब टमाटर में किसान भाइयों ने पायड़ा सुरगक कीट लीफ माइनर या कीट पायड़ा में सांदी हरका सुनहरा सुरंगियो बनाई नाखे से इना रंगनियो अने इहुन मा मैथा पायड़ा या खावा लागे से। तो किसान साथियों ना नियंत्रण करवा हारू जो आपड़ो पौधो इनी बीमारी तो ग्रसित थाई गयो हती ना पौधा ने निकाली ने खत्म कर देवानो डाइमिथोएट 2 मिलीलीटर मिथाइल डेमिटोन 30 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी ना हिसाब थी मेलवी ने छिड़काव करवा थी आपू इहुनो नियंत्रण करी सकी। तो किसान साथियों टमाटर पर जो फल छेदक जो टमाटर ऊपर काणो कर नाखे से तो तीना हारू किसान भाइयों इना ने यो कीट टमाटर मा सब तो पहलो ज्यादा थी ज्यादा नुकसान पहुंचाड़ वालो कीट से अने मादा कीट पायड़ा ना निचला जो सतह रहे से पायड़ा नी बूंदे नी परत मा निशा ईंडा मिले से अने जो जाड़ीदार रहे से तीन मा ईंडा मिले अने इना टमाटर अने फळो ने काणा करीने जो फल जो टमाटर नो अंदर नो महीनो गुदो गाप खाई जाए से। तो किसान साथियों इना नियंत्रण करवा हारू टमाटर नी हरेक 16 पंक्तियों पर ट्रेप फसल ना रूप मा अने एक पंक्ति गेंदा लगाड़वा जोई तो एक ओळ मा गेंदा लगाड़वा जोई अने जेवी रीते आपू ओळिया काढी थोवर ना। तो किसान साथियों जरूरत पड़वा पर लीमड़ा नो बीज नो अर्क 5% या NPHV 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टर इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG 1 ग्राम 2 लीटर स्पेनोसेड 50 SC 1 मिलीलीटर 4 लीटर या डेल्टा मेथ्रीन 2.5 EC 1 मिलीलीटर पानी नो इस्तेमाल करवानो इनथी आपू इनो नियंत्रण करी सकी। अने किसान साथियों बीजो रोग से सफेद मक्खी अंग्रेजी में इना व्हाइट फ्लाई ना नाम थी जाने से या कीट पायड़ा नो रो सूई जाए से अने वायरस जनित रोगों नो प्रसार करे से। तो किसान साथियों इना नियंत्रण हारू रोपाई तो पहलू पौधा ने जेड़ियों ने आधा घंटा हारू इमिडा क्लोरोपीट 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोड़ी ने इना ने डुबाड़ी राखवानो। नवसरी में 4 मेष नी नायलॉन कशकड़ा नी नेट ने ढाकी ने राखवानो।

0: तो किसान साथियों, लिमड़ा नो अर्क 4% या डाइमिथोएट 30 EC नी 2 मिलीलीटर या मिथाइल नी डेमिटोन 30 EC 2 मिलीलीटर अने प्रति लीटर पानी ना हिसाब थी मेलविन छिड़काव करवाथी आपु इना पर नियंत्रण करी सकूं। टमाटर नी उन्नत खेती नो मुख्य उद्देश्य, तो किसान साथियों, उन्नत खेती नो मुख्य उद्देश्य लगातार उपज लेवा हारू, अनुकूल स्थिति ने बनाई रखवा हारू, संरक्षित संरचना अने ज्यादा या कम लागत ना पाली हाउस, नेट हाउस ने टनल, सुरंग आदि किसानों हारू उपयोगी से। उन्नत खेती हारू स्थान सुलभ रहेवो जोईए, जातर पर्याप्त धूल आवती होय अने पानी भेळू निथाव जोईए। तो किसान साथियों, रोगों ने कम करवा हारू नवा जगानो चयन करवो जोईए अने मिट्टी जल निकासी बलोई मिट्टी ने हाथे कार्बनिक पदार्थ 2.0% थी ज्यादा रहेवो जोईए। तो किसान साथियों, हर प्रकार ना कीटों अने प्रकोप नी प्रारंभिक अवस्था में लीमड़ानु तेल 5 मिलीलीटर पानी में घोली ने छिड़काव करवानो। तो किसान साथियों, हाव ये बात थई कीटनाशक अने तीहुनी दवाइयों नी अने हाव इहुनी तोड़ाई। टमाटर नी तोड़ाई नी अवस्था में कई प्रकार ना एवा उग्या जावाला उद्देश्य, जैसे बजार नी मांग ना अनुसार अने तीहुना आपड़ा भाड़ा किराया जिनान बोली आपू परिवहन नी दूरी पर निर्भर करे से। अगर आसपास ना बजार में अगर किसान भाइयों ने वेचवो होय तो फल पाकवाथू पहलू तोड़ लेवा जोईए अने इनाने सेटी बजार में ली जावा होय तो किसान भाई इनाने केरेट में भरी ने आधा कासा जो पूरी तरह थी टमाटर बनी गयो है अने तीना बीज पक्का थाई गया है एवी अवस्था में किसान भाई ने तीना ने असली छटनी करी ने नाना नाना और मोटा मोटा अलग अलग करी ने किसान भाई तीना ने आसानी थो मंडी तक ले जाई सके से। तो किसान साथियों, ये बात थाई टमाटर ना जो मंडी नी बात है अने तोड़वानो तरीको। तो किसान भाई ने टमाटर तोड़ता वक्त घणी ध्यान राखवी जोईए ताकि तीहुना बीजा आववाला फूलू भी नहीं करवा जोईए अने तोड़ता वक्त तीना ने हाथे केरेट में तोड़वू जोईए अने एवा प्लास्टिक ना नरम बर्तन में नहीं तोड़वा जोईए जाकी त्या आपू तोकवा जाईए अने जेवी रीते टोपलू नमी जाए शब्दाई जाय से तो तीनी हारू इना ने केरेट भी किसान भाई ने राखवू जोईए। तो उपज अगर देखी जाए किसान भाइयों, तो फसल नी उपज बुवाई नी विधि अने समय पर खातर अने उर्वरक अने मिट्टी परीक्षण ना आधार पर कई प्रकार ना एवा पोषक तत्व तिनमा देख्या बाद मा तीहुनी उपज, तीहुनी दवा सेवा साकरी पर निर्भर करे से। अने टमाटर नी औसत उपज 300 થી 350 ક્વિન્ટલ प्रति हेक्टर तक मळे से। तो किसान साथियों, असली उत्पादन तकनीक अने उन्नत प्रभेद अपनावा हारू 700 થી 1000 ક્વિન્ટલ प्रति हेक्टर तक उत्पादन किसान भाई ने मळी जाय से। तो किसान भाइयों, भंडारण बजार में अगर मांग कम थावा पर टमाटर ने थोड़ा दिनों तक आप भंडारण भी करी सकी, जेवी रीते परिपक्व लीला फळों ने 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 दिनों तक किसान भाई इना ने आराम थी अवेरी सके, जहां पर तीनों 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 40 दिनों तक इना रखी जा सके से। तो किसान साथियों, 10 दिनों तक इना रखी जा सके से। तो इना ने उपरोक्त भंडारण ना टाइम पर अपेक्षित आर्द्रता 65 થી 70% तक इहुनी रेवी जोई। तो किसान साथियों, मैं आज तमुने टमाटर नी खेती करवानी कई प्रकार नी घणी एवी जानकारियों हामळाव्यो अने एवी खेतीवाड़ी नी असल जानकारियों हामळवा हारू तमु हामळता रहेजो रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज।
1: હું છે આરજે રાકેશ
2: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર,
1: તમે સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી, આપડા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર। તો સાલો કિસાન ભાઈઓ, હવ સાંભળી આપું આપડા ઝાબવા જિલ્લામાં આદિવાસી સમુદાયમાં જે લાડલાડિયા પૈણે અને તેમાં જો ગાવે ત્યું ઘણું મજાનું અને અસલ ગીત સાંભળીને પાછા ભેળા થાઉં કાર્યક્રમ ખેતીવાડીમાં।

0: बहुत खूबसूरत गायकी, बहुत ही प्यारी शुरुआत। संतोष जी, जब आप छोटे थे, बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: बचपन में मैं स्वप्नदर्शी और महत्वाकांक्षी तो था ही। मैं अपने जीवन में सफल और कामयाब इंसान बनना चाहता था। कभी भी मैं नौकरी, लोग जो नौकरी करते थे वो नौकरी मुझे करने की इच्छा नहीं होती थी। मैं हमेशा ये देखता था कि बॉलीवुड स्टार्स, स्पोर्ट स्टार्स, बिजनेस टाइकून्स, जब उनके जीवन शैली को मैं देखता था तो बस एक ही तमन्ना रहती थी कि इनके जैसे लाइफस्टाइल मेरे भी हो जाए। यार, जिस मंजिल की तलाश में मैं चल पड़ा था उसका पहला पड़ाव आज मेरे सामने है। आज इस 90.8 FM का जो पहला पड़ाव है वो मैंने अपनी पहली सीढ़ी डिसाइड किया था आज से एक साल पहले, आज वो हो गया। काफी मेहनत मैं कर रहा हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का साथ, आप लोगों का अगर दुआ मेरे साथ है तो आई थिंक वो दिन भी दूर नहीं होगा जब मैं भी एक बहुत बड़ा बॉलीवुड एक स्टार बन चुका हूंगा, सिंगिंग स्टार। थैंक यू सो मच।
0: तो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से संतोष जी हमेशा अपनी ताकत को बटोर के चलते हैं, अपने को सफल बनाते हैं चलते हैं। तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत संतोष जी की आवाज में।
2: I don't know what it is. Just can't. I just can't.

0: बहुत बढ़िया संतोष जी, क्या आपके जहन में ऐसा कोई सवाल है जो शायद आप चाहते हो कि मैं आपसे पूछ लूं और आप उसका कुछ उत्तर दें? ऐसा कोई सवाल है आपके जहन में?
1: हाँ हाँ सर, क्वेश्चन तो है। क्वेश्चन है, आप ये मुझसे पूछ ले कि आपके सपने क्या हैं
0: ओके
1: और
0: तो संतोष
1: ड्रीम्स आर
0: जी,
1: नॉट। यस सर,
0: क्या सपने हैं आपके? आप क्या बनना चाहते हैं? क्या सपने देखते हैं आप?
1: मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ, एक प्लेबैक सिंगर, रिनॉन प्लेबैक सिंगर, और इसके लिए मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। हर वो डेडिकेशन, हर वो डिवोशन मैं करने के लिए तैयार हूँ सर, और वो मैं करूँगा, क्योंकि क्योंकि पागल तो बनना पड़ेगा, पैशनेट तो होना पड़ेगा, और वो मैं हर हाल में, क्योंकि मैं अपने माँ को ये वचन दे दिया मैंने कि मैं प्लेबैक सिंगर बन के ही रहूंगा और मैं बनूंगा।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, अपने वचन को निभाइए, हम सब आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। पैशनेट बनना पड़ेगा, पागलपन करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक बेहद बेहद खूबसूरत सा गीत हो जाए फिर संतोष जी की आवाज में।

0: संतोष जी, स्कूल में आपका सबसे प्रिय विषय कौन सा था और क्यों?
1: सर ये विषय तो मेरा मैथमेटिक्स था। लेकिन शुरू में मेरा मैथमेटिक्स में मार्क्स कम आया था। मार खाने के बाद, मेरी शिक्षक से पिटाई होने के बाद, वो जो मेरी कमजोरी थी वो मेरा मेरी ताकत बन गई, और मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स को मैं बेस्ट सब्जेक्ट मानने लगा। और उस जिस जिस समय मैं पिटाई खाया था अपने शिक्षक से, उसके बाद से मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमेशा मैथमेटिक्स में टॉप मार्क्स रहा, 80% प्लस डिस्टिंक्शन मार्क्स, और आज तक वो कैरी ऑन हो रहा है। मैथ्स मैथ्स मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
1: यस
0: दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, लियोनार्डो द विंची, जो इस दुनिया के बेहतरीन बेहतरीन कलाकारों में से एक थे, जिनको 8 कलाएं आती थी, वो आर्किटेक्ट थे, वो मूर्तिकार थे, वो कविता लिखते थे, वो म्यूजिक बजाते थे, वो आर्किटेक्ट थे, हाँ मैंने बताया, वो बहुत बढ़िया कुक थे, और साथ ही साथ सबसे पहले वो एक शानदार मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। तो जो गणित के प्रबुद्ध लोग होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनके हाथ में बहुत कलाएं होती हैं। बहुत खूबसूरत बात कही संतोष भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो चलिए दोस्तों, फिर हो जाए एक मैथमेटिशियन की ही आवाज में ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत खूबसूरत। संतोष जी, आपको क्या लगता है अगले 5 सालों में हमारा विश्व, हमारा, हमारी दुनिया ये कैसी होगी?
1: दुनिया, हाँ, 5 वर्षों में आई थिंक सर ड्रास्टिक चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि अभी सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सामने है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में काफी डेवलपमेंट होने वाला है। इसमें बहुत सारे सर्विसेज, बहुत सारे डिवाइसेस विकसित होने वाले हैं अगले 5 सालों में। एक और चीज होने वाला है, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में भी सुधार होने वाला है, और विश्व के चित्र पटल पे भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने वाला है। राइजिंग इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, और सोने की चिड़िया जो पहले कभी थी वो बनने के दिशा में वो अग्रसर होने वाला है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब इसी की उम्मीद करते हैं कि हमारा भारत वापस से सोने की चिड़िया बने और डेवलपमेंट में आए। तो चलिए इसी रो में बहता हुआ एक खूबसूरत सा गीत हो जाए फिर संतोष जी का ही।

0: बहुत खूब संतोष जी, अगर आप अपने बारे में कोई किताब लिखेंगे, ऑटोबायोग्राफी, तो उसका शीर्षक क्या रखेंगे आप?
1: अपनी किताब अपने बारे में?
0: जी, आपकी किताब आपके बारे में।
1: अगर ऑटोबायोग्राफी लिखने की बात हुई तो मैं अपना अपनी किताब का जो शीर्षक दूंगा वो दूंगा संघर्ष।
0: संघर्ष,
1: संघर्ष की कहानी।
0: वाह, क्या बात है।
1: यस सर,
0: बहुत खूब, बहुत खूब। संघर्ष करते हुए हर इंसान को वैसे भी अपने जीवन में आगे बढ़ना ही चाहिए, और संतोष जी इसकी एक जीती जागती मिसाल हैं। बहुत खूब कहा साहब आपने। तो चलिए एक प्यारा सा जिंदा दिल गीत सुनते हैं संतोष जी की आवाज में।

0: संतोष जी, आगे बढ़ते हुए मुझे बताइए ना, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है और वो रंग आपके बारे में क्या कहता है?
1: रंग रंग तो वैसे अच्छा तो हर रंग लगता है मुझे, लाल पीला सब हर रंग, लेकिन सबसे अच्छा जो पसंद आता है मुझे नीला रंग, क्योंकि मैं शर्ट भी अपना नीला ही पहनना पसंद करता हूँ। कोई भी गैजेट्स खरीदता हूँ तो कोशिश करता हूँ नीला ही खरीदने का, और क्योंकि नीला नीला रंग जो है वो शांति का प्रतीक है, स्थिरता, विश्वसनीयता, स्वतंत्रता, कल्पना से जुड़ा होता है वो। चूंकि हमने समुद्र को देखा, आसमान को देखा, सब नीले रंग का ही है। समुद्र भी गहराई और विश्वास का प्रतीक है, आसमान भी कल्पना स्वतंत्रता का प्रतीक है, तो मैं भी हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, कल्पना में रहना चाहता हूँ। मुझे भी हर किसी पे विश्वास होता है। तो अगर वास्तुशास्त्र में भी देखे सर, तो नीला रंग जो होता है ना, वो उसका एक बहुत बड़ा वो हीलिंग पावर होता है उसके अंदर। अगर आप देखेंगे कि अगर कोई उदास बैठा हुआ है काफी देर से, और अगर उसको नीले रंग की कोई चीज कंटिन्यूस उसको वॉचिंग करा दे, अगर वो देखता रहे, तो वो आदमी खुश हो जाता है। ये वास्तुशास्त्र कहता है, और ये मैंने करके भी देखा है, तो इसलिए नीला रंग मुझे पसंद है सर।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब। दोस्तों, आज हमें एक बात पता चली कि अगर किसी व्यक्ति को उसके दुख से या उसकी मूड खराब है उसे बाहर निकालना हो, तो उसे नीले रंग की चीजें दिखाई जाएं या नीले रंग का वातावरण तैयार किया जाए, तो जिससे उसका मूड ठीक हो सकता है। बहुत खूब। चलिए दोस्तों, एक प्यारा सा गीत हो जाए फिर इसी बात पर।

0: संतोष जी, ये सवाल बहुत बहुत दिलचस्प है, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आपको किसी ऐतिहासिक व्यक्ति, हिस्टोरिकल फिगर के साथ बैठ के बातचीत करने का मौका मिले, चाय पीने का मौका मिले, तो आप किसको चुनेंगे?
1: अरे वाह सर, ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया, मजा आ गया सुन के। अगर ये मौका मिल गया सर तो मैं चाहूंगा लता मंगेशकर जी के साथ,
0: वाह क्या बात है,
1: चाय पीना बहुत बहुत अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि ये मेरा सपना, साक्षात सरस्वती है वो, और उनसे मैं चाय पीने के दौरान संगीत का गूढ़ रहस्य जानूंगा कि आखिर वो जो अपनी म्यूजिकल जर्नी आगे बढ़ाई है उसमें किन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कैसे वो सीखी और क्या गूढ़ रहस्य वो जानूंगा उनके साथ चाय पीते हुए।
0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। संतोष जी, आपने तो इस तरह की हस्ती से मिलने की ख्वाहिश रखी है जिसके पीछे तो लोग तमाम उम्र उम्मीद ही लगाते रहते हैं कि उनसे उनकी मुलाकात हो जाए। बहुत खूब, मजा आ गया साहब सुन के। तो चलिए दोस्तों, एक सुरीला सा नगमा सुनते हैं संतोष जी की आवाज में।

0: संतोष जी, हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह आ गए हैं जहां मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कुछ संदेश दीजिए, कुछ मैसेज दीजिए उनको।
1: यस सर, मैसेज मेरी तरफ से बस ये है कि ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या वजह है जीने में, तूफा भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। एक लक्ष्य बनाइए अपने जीवन का, क्योंकि लक्ष्य विहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। एक लक्ष्य बनाइए, अगर आपको किसी भी फील्ड में कुछ भी बनना है तो वो लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि कब तक बनना है, उसके बाद प्लानिंग कीजिए कैसे उस पर काम करना है, और एक डिसिप्लिन के साथ तब तक लगे रहिए जब तक उस चीज को आप हासिल न कर लीजिए। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, और ये किसी स्टार ने ही बोला है। तो अगर आप दिल से लगेंगे तो पूरी कायनात लग जाएंगी आपको उस चीज को दिलाने में, और वो चीज एक दिन आप हासिल कर लेंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीजें क्यों ना हो। इसलिए मैं तमाम दोस्तों को, तमाम सुनने वाले श्रोतागण को एक मैसेज यही दूंगा कि जिस तरह से मेरे हौसले बुलंद हैं, वैसे ही आप अपने हौसलों को बुलंद करें। अगर गायकी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो पूरी तन्मयता के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ लगिए इसमें। लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता मत कीजिए, लोग तो कभी भी कुछ भी बोलेंगे, लोगों का नहीं सुनिए, क्योंकि लोग हमारे सपने पूरे नहीं करेंगे, लोग मुझे खाना नहीं देंगे। जब आप भूखे रहेंगे तो लोग आपके पेट नहीं भरेंगे, करना खुद से ही होगा। इसलिए लोगों की नहीं सुने, और आप उस जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं उस प्लेटफॉर्म पे डिसिप्लिन के साथ चले, और मैं समझता हूं कि आप अपने सपनों तक जरूर पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच।
0: बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज, और आज हमारे साथ थे संतोष प्रसून जी पटना से। मुझे उम्मीद है बहुत मजा आया होगा। संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको भी मुझे यहाँ पे लाने के लिए, और मैं चाहूंगा सर इसी तरह मैं आपके साथ आऊं और लोगों से रूबरू हूँ।
0: थैंक यू
1: सो मच ऑल।
0: तो दोस्तों, ना तो सुनना भूलिएगा और ना ही पार्टिसिपेट करना, क्योंकि अब हमारा प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में तब्दील होने वाला है, जहां से कितने ही टैलेंट्स प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। बने रहिए हमारे साथ, मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन के साथ।
2: नहीं देखा है तो जाना, नहीं जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी, हारे नहीं हम।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। आइए दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत आज के कलाकार का एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूं। सुभाष कामत साहब आज हमारे मेहमान हैं, हमारी प्रतिभा हैं, हमारे टैलेंट हैं, हमारे सिंगर हैं। मैं उनसे ही आपको आज मिलवाता हूं। सुनिए, उनको जानिए, कौन है वो, क्या शख्सियत है उनकी, क्या पर्सनालिटी है उनकी, और फिर क्या आवाज है उनके पास। सुभाष सर, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो वेरी मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। तो हमारे सुनने वालों के लिए, आज के कलाकार की फैमिली के लिए, जो आपको आज सुनेंगे, आपके साथ संगीत का लुत्फ उठाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, उनको बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं, कौन हैं आप?
1: ओके, दैट वाज टू गुड इंट्रोडक्शन समीर भाई, आई मीन क्या बात है।
0: थैंक यू।
1: ओके ओके, वेल भाइयों बहनों, मैं सुभाष कामत, आयु 72 वर्ष यानी 72 इयर्स यंग आई एम, बेंगलुरु का रहने वाला हूँ। पेशे द्वारा मैं एक अकाउंटेंट हूँ, और लगभग 45 साल का 45 इयर्स का एक अनुभव मेरे पास है, मेरे साथ है, जो मैं अकाउंट्स में है, कॉस्टिंग में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, काफी सब करके मैं अभी आज बेंगलुरु में सेटल हुआ हूँ। मेरी संगीत यात्रा आज से तकरीबन 5 से 6 साल पहले, यानी आई थिंक कोविड के इरा में शुरू हो गई। गाना गाने से, गाना सुनने का शौक मुझे काफी है, काफी था पहले से।
0: ओके।
1: क्योंकि मेरी माँ जो है, अभी नहीं है वो, मेरी माँ जो है वो मेरी मित्र भी थी और बहुत अच्छा गाती थी
0: जी,
1: इसलिए बचपन से घर में एक संगीत का माहौल था, एक वास्तव्य था। वैसे कॉलेज के जमाने में किसी पिकनिक या गैदरिंग में गाने की कोशिश में जरूर करता था, लेकिन बस उतना ही, खास नहीं। लेकिन जहन में समीर जी एक बात थी कि मुझे गाना है और मुझे अच्छा गाना है, अच्छा गाना है और सबको पसंद आना चाहिए, नो दैट टाइप ऑफ सॉन्ग आई वांट टू सिंग, वो एक जहन में बात बैठी थी और शायद भगवान ने मेरी वो बात शायद सुन ली।
0: Okay, that's nice.
1: 6 साल पहले जब कोविड शुरू हुआ, मेरा संगीत का सफर सही मायने में वहीं से शुरू हुआ। बहुत वक्त था कोविड के टाइम में, यू नो, लॉट ऑफ एक्टिव, लॉट ऑफ टाइम यू हैड। तब मैं शायद बंबई में रहता था और हमारे कुछ दोस्तों ने साथ मिलकर एक ऑनलाइन ग्रुप बना दिया और नाम भी रख दिया उसका।
0: Okay.
1: गुरु प्रसाद स्वरमाला GPSM। और सचमुच समीर जी, एक गुरु की माया ही है कि हमें स्टार मेकर जैसे एक गाने का प्लेटफॉर्म मिला और तब शुरू हो गया मेरा संगीत सफर। वैसे कहते हैं ना, सुहाना सफर स्टार मेकर हसी,
0: वाह,
1: हमें डर है हम खो न जाए कहीं, ऐसे। सो आज सचमुच मैं गाने में खो गया हूँ।
0: क्या बात है। सो
1: थोड़ा और, क्योंकि मैं आज बेंगलुरु में हूँ, आज मैं सेटल हुआ हूँ, लास्ट 3 साल से मैं बेंगलुरु में हूँ, और मुझे बताने में बहुत खुशी होती है समीर जी कि हमने बेंगलुरु में भी एक संगीत ग्रुप, एक संगीत सरिता, बेंगलुरु संगीत सरिता नाम का एक ग्रुप बना दिया है, BSS, एक म्यूजिकल ग्रुप बनाया है खास करके वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन। और इसका ब्रीद वाक्य भी ऐसा ही है, लाइक यू नो, एवरीबडी कैन सिंग, कोई भी गा सकता है।
0: श्योर।
1: So, हमारे लगभग 150 मेंबर्स हैं आज हमारे BSS ग्रुप में।
0: Oh my God.
1: और हर महीने में हम प्रोग्राम बना के उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, सो यू नो, पीपल कम एंड सिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म विद ऑडियंस। सो ये मेरा संगीत सफर है आज तक।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। 2-3 बातें मेरे को पता चली हैं, जो मैंने ऑब्जर्व की, जो मेरे को कनेक्ट कर पाई। दोस्तों, आपको भी बहुत सारी बातें सुभाष जी के बातचीत में आई होंगी, तो मैं अपनी बता देता हूं जल्दी जल्दी। नंबर वन, कोविड ने हमारे पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत सारे अपने चले गए, बहुत तकलीफें उठाई, लेकिन ठीक है, जो भी होता है ऊपर वाले के ही खेल है, हमारा उसमें बहुत ज्यादा पार्ट होता नहीं है। तो लेकिन कोविड हमें बहुत सारे प्यारे प्यारे सिंगर्स दे गया, इस बात पे तो मैं जरूर देखना चाहूंगा, यू नो सेकंड फेज ऑफ द कॉइन, सिक्के का दूसरा पहलू, इतने सारे सिंगर्स। दूसरी बात, स्टार मेकर और एस म्यूल शायद उससे पहले से रहे होंगे, लेकिन उस वक्त ही उन्होंने जोर पकड़ा। मैं समाओ विश कर रहा हूं कि काश हमारा रेडियो स्टेशन भी उस वक्त मैंने लॉन्च किया होता तो कितने लोगों के साथ मैं जुड़ पाता। बट नो प्रॉब्लम आज भी मैं ठीक है, उस त्रासदी का फायदा नहीं, लेकिन आज भी मैं लेट नहीं हूं, कोई बात नहीं, आप सब लोग मेरे से
1: देर आए दुरुस्त है।
0: मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूं, एक नई तरीके की फ्लो, एक नई तरीके का फैशन, एक नई तरीके का स्टाइल पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के साथ मिलके। सो विल डू समथिंग, कुछ तो हो जाएगा। नंबर थ्री, जैसा सुभाष जी ने बताया कि बेंगलोर में उन्होंने जो ग्रुप बनाया है वो बुजुर्ग लोगों के लिए है, बहुत खूब। मैं इस बात का बहुत बहुत बड़ा सपोर्टर हूं, क्योंकि मैं भी ऑलमोस्ट उनमें से एक हूं कि इकिगाई हम सबके पास होनी चाहिए। हमें एक उम्र के बाद निराश क्या और ज्यादा पावरफुल हो जाने की जरूरत है। हमारे ही किसी कलाकार ने बड़ी खूबसूरत बात की, साहब मैं रिटायर्ड हूं, टायर्ड नहीं हूं। क्या बहुत बढ़िया बात कही उसने, बड़ा मजा आया सुन के, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बट आई रियली लाइक्ड इट। सो दोस्तों, ये है हमारे सुभाष जी, बाकी हल्का सा गुनगुना के तो उन्होंने दिखा ही दिया, समझ में आपके आ ही गया होगा, फिर भी आइए ना, दो बेहद खूबसूरत मुस्कुराते हुए गुनगुनाते हुए गीतों का जरा आनंद लें और फिर सुभाष जी के पापा पास आएं।

0: बहुत खूब, अमेजिंग, क्या शुरुआत है, बहुत खूब। सुभाष सर, चलिए आपके संगीत को पहले समझते हैं। आपने कहा कोविड के दौरान आपकी इच्छा हमेशा से थी कि आप गाएं और कुछ अच्छा गाएं, आप ही ने कहा। फिर इसके बाद उस जमाने में, चलिए कोविड के टाइम पर आपको मौका मिल गया, आपने एक ग्रुप भी बनाया, बहुत सारे लोग जुड़ गए और इसके बाद एक बस नई जिंदगी की एक्साइटमेंट शुरू हुई संगीत के साथ, और आज आप हमारे पास हैं। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम आपको सुन पा रहे हैं। तो जरा अपने संगीत के बारे में बताइए कि किस तरीके का संगीत आपको सुनने में, आपने कहा ना पहले आपको सुनने का शौक था, सुनने में आपको किस चीज का शौक है, मतलब क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, गजल, भजन, फोक, किस तरीके का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं
1: आप? संगीत तो संगीत है एक्चुअली, बट जैसे आपने बताया उसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं। डिवोशनल सॉन्ग्स, भक्ति गीत, अभंग, भजन, ये मेरे पसंदीदा।
0: वाओ, ओके ओके,
1: या उसमें भजन या अभंग, यानी जो बोलते हैं अभंग इज लिटिल डिफरेंट देन भजन, बिकॉज अभंग का एक थोड़ा फॉर्मेट अलग होता है।
0: क्या चीज होती है सर, हमें बताइए ना। हाँ,
1: या भजन में तबला और हारमोनियम का ज्यादा इस्तेमाल होता है, और अभंग में पखवास करके, और एक जैसे ढोलक जैसे
0: होता है।
1: या करेक्ट, तो अभंग में उसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अभंग थोड़ा वोकल ज्यादा ये है उसको, लाइक यू नो, जैसे फॉर एग्जांपल भीमसेन जोशी का नाम, पंडित भीमसेन जोशी का नाम
0: आपने बोला। जी हां जी हां जी हां,
1: तो वो अभंग आते हैं, उनका अभंग, उनका अभंग वाणी करके उन्होंने एक कंसेप्ट चालू किया
0: जी,
1: एंड देन बहुत बहुत वो चला, लाइक पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में, तो वो कानड़ी अभंग भी, सो कानड़ी अभंग भी गाते थे, महाराष्ट्र का मराठी अभंग भी गाते थे, सो वो अभंग जो है वो मुझे बहुत बहुत पसंद है।
0: वाओ,
1: और उसको मैं काफी गाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट सिंग।
0: बहुत ब्यूटिफुल। देखो दोस्तों, बहुत सारे हमारे प्रतिभाओं से मेरी बातचीत होने का मुझे सौभाग्य मिलता है, और आज मुझे सौभाग्य मिल रहा है सुभाष जी से बात करने का, जिन्होंने एक बिल्कुल ही नई चीज से मुझे इंट्रोड्यूस कराया, परिचय कराया, दैट इज अभंग। और अब जैसे सुभाष जी ने भीमसेन जोशी सर का नाम लिया, तो मुझे याद आ रहा है एक बहुत ही पुराना सॉन्ग जो आप सब ने 100% सुना हुआ होगा, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। ये उस जमाने की बात है जब बहुत सारे टीवी चैनल्स नहीं थे, तब एक आया था मिले सुर मेरा तुम्हारा। दोस्तों याद हो अगर आपको, तो उसमें सबसे पहले भीमसेन जोशी साहब ने ही उस गीत की शुरुआत की थी।
1: Correct.
0: याद कीजिए, उसमें सबसे पहले वो भीमसेन जोशी साहब आते हैं और उन्होंने गाया था मिले सुर मेरा, याद आया दोस्तों?
1: या करेक्ट,
0: तो वो थे वो लेजेंड। क्या बात है, अमेजिंग, मजा आ गया साहब, मजा आ गया, बहुत खूब। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरती से सराबोर होते हुए, डूबते हुए, उतरते हुए, गोते लगाते हुए, आइए ना दो गीत और पेश करता हूं सुभाष जी के, और इसके बाद हम सुभाष जी के पास वापस आते हैं।

जा छुप जा तकियन में, हो खटमल गिर से जाना खटियन में। वीरान थी अपनी जिंदगी और सुना था अपना मकान।

0: आह क्या बात है सुभाष सर। चलिए संगीत के बारे में आपसे बात हो गई, किस तरीके से संगीत शुरू हुआ उस बारे में भी आपसे बात हो गई, किस तरीके का संगीत आपको पसंद है वो भी हमें आज पता चला। थोड़ा अब आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपने अपने बारे में तो बता ही दिया था कि आप अकाउंटेंट हैं रहे, दैट्स वेरी नाइस। आई मीन यू हैड बीन डीलिंग विद नंबर्स, लेकिन नंबर्स किसी व्यक्ति को इतना कठोर नहीं बनाते दोस्तों। आपके सामने उदाहरण है, एग्जाम्पल है, संगीत में डूबा हुआ व्यक्ति, क्या बात है। तो सुभाष सर मुझे ये बताइए कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट, यू नो, जिसको कहेंगे जो आपने जिंदगी भर में सबसे बड़ी चीज अचीव की हो, कोई भी चीज, मतलब इमोशनल भी हो सकती है, मैं मेटीरियलिस्टिक चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब कोई अकॉम्प्लिशमेंट आपका जिंदगी का सबसे बड़ा क्या रहा है, आपको क्या फील होता है कि ना वो एक ऐसी चीज रही जिसमें मैं सबसे ज्यादा खुश रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं तो आपको फीलिंग आ जाएगी, वैसे आप समझ ही रहे होंगे कि मैंने किसी मेरे पर्सनल जिंदगी में 1986 में मेरा IIT में सिलेक्शन हुआ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट था, बहुत बहुत बड़ा, वो आज तक मुझे याद रहता है। तो क्या इस तरीके का कोई अकॉम्प्लिशमेंट बताइए ना।
1: अच्छा, एक ध्यान में आ रहा है
0: जी।
1: मैं गाने की जैसे मैंने शुरुआत की तो मैं ये चाहता था हमेशा कि मेरे गाने से दूसरों को सुख मिले, एंड देन दे शुड एंजॉय इट। नाउ व्हाट दिस पीपल हु कैन एंजॉय, आई मीन मेरे से अच्छा गाने वाले तो बहुत काफी हैं
0: जी,
1: लेकिन वो लोग जो एक एक जगह पे लाइक यू नो लाइक होम फॉर द एजेड जैसे बोलते हैं, जो होम फॉर द एजेड है नहीं, जहाँ सीनियर लोगों को एक दिया जाता है, अरेंज किया जाता है उनका घर वगैरह, तो मैंने वो सोचा कि मैं क्यों ना वहां जाके गाऊं ताकि वो लोग को उनसे थोड़ी बातचीत करूं, एंड दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो माथेरान, मैं तभी बंबई में था, तो लगभग आई थिंक इट इज 2020-21 की। तो माथेरान में एक जगह है शांति धाम करके, तो मैं उनको अप्रोच हुआ, मतलब सब मैं गाना गाता हूँ और मैं थोड़ा वक्त गुजारना चाहता हूँ आपके सीनियर्स के साथ।
0: okay.
1: और मानिए साहब, बाप रे, मैं 3 घंटे था वहाँ, एंड देन द वे दे लाइक माय प्रोग्राम, द वे दे अप्रिशिएटेड, उनकी जो खुशी मुझे उनकी आंखों में जो दिखाई दी वो 3 घंटे में, आई वॉज ब्लेस्ड। मीनिंग खुशी क्या होती है ना, I mean, when old people like they are, most of them were on wheelchair, they could चल नहीं सकते थे, तो वो लोगों ने मुझे नजदीक आके मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बोला आज मैंने कुछ किया है, लेकिन आई मीन सो दैट वॉज माई रियली अ गोल्डन मोमेंट वेन दिस सीनियर्स वर 85-90 ईयर्स who could not walk, you know, but still they were listening to me and they appreciated my presence there. उनके साथ बात करना, उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक कर लेना, that was my, I think, मैं वो सबसे ज्यादा मुझे जहां तक याद है कि that was my great achievement of feeling जैसे।
0: बहुत खूब, बहुत खूब दोस्तों, बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल, भावनात्मक तौर पर सुभाष जी ने कम से कम मुझे तो छुआ है, और मुझे इच्छा है कि आप लोग भी इस बात को बहुत गहराई से महसूस करें। बहुत कुछ होता आया है, हम उसके बारे में बात करते भी रहे हैं दोस्तों एंड नंबर ऑफ टाइम्स, बट जाने दीजिए उस बात को कि ये बुजुर्ग
1: या इट्स अ लिटिल इमोशनल, बट देन यू नो आज भी मुझे वो याद है, लेकिन वो प्यार उनका, जो आशीर्वाद देना उनसे, आई लाइक यू नो दिस कम अगेन, आप वापस आइए, यू नो उनका वापस बुलाना, दैट वाज समथिंग।
0: ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड सर। दोस्तों ये अचानक से मेरे दिमाग में फ्लैश हो रहा है, तो मैं आप सब लोगों के सामने इस चीज को बोल देना चाहता हूं, और कि अचानक से मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्यों ना हम सब मिलके, मतलब मैं, सुभाष जी, आप सब मिलके एक प्रोग्राम बनाएं हमारे रेडियो पर ही, जिसका नाम हम रखें हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, हमारा मतलब प्राइड, हमारे बुजुर्ग हैं वो, हमारा अभिमान है, वो हमें सिखाते हैं, आशीर्वाद देते हैं सेल्फलेसली, कोई कुछ नहीं चाहते, तो इससे ज्यादा पवित्र आशीर्वाद क्या मिलेगा आपको, उनको कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, एंड दे आर यू नो ब्लेसिंग यू, दे आर गिविंग यू देयर ब्यूटिफुल. सो चलिए.
1: और वो जानते भी नहीं थे मुझे, लेकिन उन्होंने पहली बार मुझे देखा.
0: दैट्स द पॉइंट कि वो आपको जानते ही नहीं है, उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है आपसे. They just wanted to be happy. आपने उनको सुख पहुंचाया और वो खुश हैं. तो क्या हम सब लोग अपने अगल बगल अपने बुजुर्गों को जोड़ सकते हैं सो दैट दे कैन फील हैप्पी? उनकी यू नो प्रौढ़ावस्था में, जिस भी अवस्था में वो हैं, इतना तो फर्ज हमारा बनता है ना यार दोस्तों, कि हम उनको सुख पहुंचा दें, छोटा सा ही सही, अपने गीत से ही सही, संगीत से ही सही. कई बार मेरा मन करता है सुबह जी कि अपने किसी भी बुजुर्ग से बात करके उसकी आवाज अगर रेडियो पर सुनाई दे तो सोचिए ना कितना खुश हो जाएगा वो.
1: अरे बहुत, बहुत बहुत
0: कोशिश करते हैं. तो एक विचार आया तो मैंने कह दिया. उसके लिए मैं सुबह जी का शुक्रगुजार हूं. चलिए आगे बढ़ते हुए अब सुबह जी के ही गाए हुए इन गीतों का आनंद उठाएं और उसके बाद सुबह जी के पास वापस आएं.

0: बहुत खूब सुभाष जी, बहुत ही प्यारी सी प्रोडक्टिव फुल ऑफ लाइफ जिंदगी आपने एक्सपीरियंस की। अब उस वैसे ठीक है, हम सब की जनरेशन वाले ये मानते हैं कि आज की जनरेशन को तो सुनना नहीं है हमें, लेकिन ये चीज़ तो हमेशा से रही है। एवरी कमिंग जनरेशन विशेस टू थिंक दैट दे वुड री इन्वेंट द व्हील, वो पहिया दोबारा बनाना चाहते yes. हैं। बट हमारा फर्ज बनता है, हम सिखाएं बेटे, पहिया ऑलरेडी बन चुका है, अब पहिए के ऊपर गाड़ी तुम बनाओ। ओके सो उनको थोड़ा सा टिप्स देते हैं सुभाष जी, जो जनरेशन आज की है, जो जनरेशन आगे आने वाली है, वो जैसी भी है तो हमारी ही ना, उन्हें कितना दोष दे सकते हैं हम, गलत है, हमारा ही गलती है अगर हमने उनके हाथ में मोबाइल पकड़ाया तो, इट्स अवर मिस्टेक, इट्स नॉट देयर मिस्टेक। तो
1: सही है,
0: उनको क्या कहना चाहोगे स्पेसिफिकली म्यूजिक के कॉन्टेक्स्ट में कि बेटा वो म्यूजिक कैसे सीखें या म्यूजिक को कैसे पकड़े सो दैट दे कैन बिकम अ बेटर पर्सन?
1: करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, जहां तक मेरा ख्याल है, क्या हुआ है समीर जी, टेक्नोलॉजी ने आज काफी हमारा जीवन एक अविभाज्य अंग है, टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ आवर अविभाज्य अंग बन गया है टेक्नोलॉजी। उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी
0: है, नुकसान भी है
1: ना। तो उसमें क्या हुआ है कि मेरा एक एक्सपीरियंस और मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन जो है मैं अभी बताता हूँ कि टेक्नोलॉजी की वजह से काफी री रिकॉर्डिंग, सिमुलेशन, ऑर्केस्ट्रेशन उसका काफी चेंज हुआ है। संगीत के बारे में मैं वो बता रहा हूँ, वर्चुअल मिक्सिंग, तो आपको के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती आजकल, दोनों सब बैठे बिठाए मिलता है। सो दिस इज अ बिग डिसएडवांटेज आई फील फॉर टुडे जनरेशन। तो मेरा मशवरा तो यही होगा आज के पीढ़ी के लिए कि अपने जीवन में संगीत को जरूर लाइए, एक हिस्सा बनाइए संगीत को, फिर वो चाहे गाना गाना हो या गाना बजाना हो, लेट देयर बी म्यूजिक इन योर लाइफ। ओके, क्योंकि ये म्यूजिक ही आपके जीवन को समृद्ध बना देगा, एक सार्थक बना देगा। क्योंकि मैं जानता हूं आज हर कोई व्यस्त है, हर कोई बिजी है, आप अपना व्यवसाय, काम, बिजनेस जरूर करें, पूरे ताकत से करें, पूरे मेहनत से करें, लेकिन ये आपको अपना जीवन जीने के लिए काम में आएगा, आपकी मेहनत, आपकी व्यवसाय वगैरह। लेकिन संगीत से दोस्तों आपको जीवन कैसे जीना है ये सीख मिलेगी, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट म्यूजिक शुड बी देयर इन एवरीबॉडीज लाइफ। सो मैं इतना ही कहूंगा कि गाते रहिए, खुश रहिए, और अपनी खुशी को जो संगीत से मिलती है उसको फैलाइए, महकाइए एक खुशबू की तरह। सो दिस इज माय लाइक बिकॉज देयर बी म्यूजिक, और अगर म्यूजिक आता है तो उसके साथ आती है मन शांति, जो पीस ऑफ माइंड जो बोलते हैं ना, सो डेफिनेटली दैट कम्स विद द म्यूजिक। और संगीत से जो शांति प्राप्त होती है उससे श्रद्धा और विश्वास को भी जन्म मिलता है, बिकॉज वंस योर माइंड इज कूल, यू लर्न टू ट्रस्ट, यू लर्न टू बिलीव, श्रद्धा विश्वास ये बढ़ते हैं, और फिर आगे जाके उसको एक ध्यान, एकाग्रचित जो बोलते हैं ना हम लोग, ध्यान में ध्यान करना है, सो दिस दे विल लर्न पर्टिकुलरली टुडे जनरेशन, बिकॉज टुडे जनरेशन इज यूज टू फास्ट थिंग्स, अभी चाहिए, सो दैट्स अ ग्रेट डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, एंड दे शुड लर्न टू हैव दैट कॉम्प्रोम, आई मीन दिस पेशेंस बेसिकली।
0: वाओ,
1: सो दिस, या
0: दोस्तों, ये सुभाष जी की बातों में ना मुझे एक और हिंट मिल रहा है, एक और मैसेज मिल रहा है, आज की जनरेशन दोषी नहीं है, दे आर नॉट एट फॉल्ट, जो भी एनवायरनमेंट चारों तरफ है और हम लोगों ने जो कुछ भी उनको दिया वो थोड़ा सा गलत हो गया है या मे बी हेवाय चला गया है, अब ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें सच्चाई बता दें कि देखिए ये आज की टेक्नोलॉजी दुधारी तलवार है, डबल एज्ड सॉर्ड, गलत चली तो हम कटेंगे, सही चली तो काम हो जाएगा। तो हमें उनको ये सिखाना होगा कि व्हाट इज द लिमिट, रील्स देखने का, फेसबुक पे टंगे रहने का, फोमो का, फियर ऑफ मिसिंग आउट का क्या मतलब है, दे आर डिस्ट्रॉइंग देयर लाइफ बाई डूइंग दैट। सो लेट्स स्टॉप इट। जहां तक सुभाष जी ने कहा था कि म्यूजिक में अगर हम लोग उसको बात करें तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, कैरियोके अवेलेबल है, एंड देन ईज ऑफ सिंगिंग हैज मेड बीन अवेलेबल, फाइन, ओके। इसको मैं इस तरीके से देखता हूं कि ठीक है, अब वो चीज हमारी दुनिया में अवेलेबल है, व्हाई नॉट टू यूज इट इन अवर ओन बेनिफिट, उसको कन्वर्ट कीजिए ना। माना कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं है, बट मिक्सिंग करना सीखिए, गानों को वापस से रिवाइव करना सीखिए, डिजिटलाइज कीजिए, डू समथिंग गुड विद दिस टेक्नोलॉजी विच, जो कि आज की जनरेशन को पसंद आना चाहिए। बस यही मैसेज सुभाष जी दे रहे हैं, बहुत खूब।
1: यस सर, थैंक यू, थैंक यू।
0: चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए, ये बहुत ही प्यारे से गीत पहले हम सुभाष जी के सुने, देन वी विल कम बैक टू टॉक मोर विद सुभाष सर।

0: अमेजिंग सुभाष सर,
1: थैंक
0: बस
1: यू सर, थैंक यू।
0: मुझे अब चलते चलते ये बताइए कि आपके सबसे अच्छे मित्र कौन हैं जिन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया। आप जितने भी चाहे लोगों का नाम ले सकते हैं, हम सभी उनके शुक्रगुजार होंगे। उनको भी अच्छा लगेगा कि उन्होंने आपको याद, आपने उनको याद किया। तो कौन कौन हैं वो लोग जिन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा सहारा दिया, एनकरेज किया? हु आर दे?
1: जैसे मैंने बताया सुनील जी कि मैंने मेरी संगीत यात्रा कोविड के बाद ही शुरू हुई, तो आई वाज स्टार्ट आई मीन आई स्टार्टेड गेटिंग रिकॉग्निशन ओनली आफ्टर दिस 2020, यू नो। सो उसके पहले ऑफ कोर्स मुझे याद है स्कूल में मैंने जब गाना गाया था तो मुझे दो अवार्ड मिले थे, यू नो। ना वाओ, वाओ बोलेंगे नहीं जब मैं अपनी कहानी पूरी करूंगा।
0: बताइए
1: तो
0: ना।
1: एक एक एक एक अवार्ड तो ऐसे इसलिए मिला था कि मैंने गाना शुरू किया, है ना। तभी बहुत छोटा था मैं और वो मैं रुकने का नाम ही नहीं लेता था वो गाना, यू नो। सो आई वाज गोइंग ऑन सिंगिंग, और तो दूसरा मेडल मिला मुझे गाना बंद करने के लिए।
0: अरे वाह,
1: तो किसी ने बोला आपको मेडल मिल रहा है तो आप गाना बंद करो। सो
0: ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सो
1: तो वैसा
0: क्यूट।
1: मेरा वो ये था, आई मीन इट वाज वेरी चाइल्ड था, मैं तो चाइल्डिश। तो लेकिन आपको सही मायने में जैसे रिकॉग्निशन जो दिया है वो मेरी वाइफ ने दिया है, बिकॉज मैं घर में बहुत गाता था। वंस आई स्टार्टेड लाइकिंग स्टार मेकर तो एक पैशन सा बन गया था, और मैं घर में रात दिन मेरा ये चलता था, गाना प्रैक्टिस सुनना। सो यू नो माय वाइफ रियली सपोर्टेड मी इन दिस, नॉट ओनली लिसनिंग बट आल्सो अप्रिशिएटिंग, करेक्टिंग मी बिकॉज शी हैड द म्यूजिकल बैकग्राउंड आल्सो, बट शी नेवर यूज्ड टू सिंग। बट काफी उसने मुझे सपोर्ट किया, सुना मुझे, मुझे मेरी हौसला अफजाई की। जैसे हम लोग गैदरिंग में, फैमिली गैदरिंग्स में हम लोग मिलते थे तो शी इज टू से सुभाष गाता है, सो यू नो लाइक शी इज टू इंट्रोड्यूस मी लाइक अ गुड सिंगर, एंड दैट गेव मी लॉट ऑफ इंकरेजमेंट, एक सपोर्ट, एक कॉन्फिडेंस तो पैदा हुआ। सो माई आई गिव माई क्रेडिट टू माई वाइफ नंबर वन। और मेरे मित्र भी हैं, उनका नाम है नितिन, अनिल, काफी मेरे करीब के दोस्त हैं। वो लोग हमेशा मुझे ये करते, लाइक यू नो दे यूज़ टू ऑलवेज एनकरेज, प्रोत्साहन देते थे कि आप अच्छा गा रहे हो उसमें। उसमें तो अनिल ठाकुर करके मेरा और एक दोस्त है जो शास्त्रीय संगीत जानता है, तो ही स्टार्टेड पुटिंग मी टू इंट्रोड्यूसिंग मी टू हिज सर फॉर शास्त्रीय संगीत, यू नो। ये सर आप थोड़ा शास्त्रीय संगीत सीख लो तो आपकी आवाज बहुत अच्छी हो जाएगी, एंड दैट हेल्प मी क्वाइट अ लॉट। सो आई स्टार्टेड टेकिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी ली मैंने शास्त्रीय संगीत में 1 बरस, तो उससे मेरा आवाज, मेरा गला थोड़ा और स्ट्रांग हो गया, एंड गाने का एक अलग पहलू मुझे मिला। सो ये क्रेडिट मैं उनको देना चाहता हूँ, मेरी वाइफ रेखा और मेरे मित्र अनिल ठाकुर, श्रीनिवास पाध्याय, और दो तीन ऐसे मित्र हैं ऐसे। सो ये दोस्त लोग और मेरी बीवी, सो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू देम।
0: वाह, थैंक यू सो मच फॉर दीज पीपल जिन्होंने सुभाष जी को इतना अच्छा इंसान बनने की मदद की। हमारे सामने आ

सुभाष जी से हमारे बातें की हैं। कितना मजा आया है दोस्तों, आपको भी उनकी शख्सियत समझ में आ ही गई होगी। मैं हमेशा कहता हूं ना, सुनिए तो दिमाग में पिक्चर्स बनती हैं, तो सुभाष जी की पिक्चर आपके दिमाग में बनी गई होगी ना। चलिए आगे बढ़ते हुए इन दो गीतों का प्यार सा मजा लें, उसके बाद वापस आए सुभाष जी के पास।